0: आते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो

0: होते हैं।
1: अरे वाले मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दिवा।

0: हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लूटा
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि आज पूरे विश्व में आज शांति के लिए कोई मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह शांति की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी, इसके बावजूद भी विश्व में शांति नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, तो आइए आज हम इसको समझते हैं। तो आज का हमारा विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सतयुग के पावन आकाश के नीचे देवताओं का निवास था। धीरे धीरे प्रकृति ने पलटा खाया और अभी हम सब काली काल के, काले आकाश के नीचे विचरण कर रहे हैं। परंतु मानव का मन बार बार उसे सतो प्रधान वातावरण, पारंपरिक जो स्नेह है, दिव्य मर्यादाएं, शांतमय, सुखमय विश्व को देखना चाहता है जिसमें बहुत समय वह विचरण कर चुका है। प्रश्न यह उठता है कि इस संसार को फिर से वही मोड़ कैसे दिया जाए। अब हम देखते हैं वातावरण को हमें बदलना, उसे हम कैसे बदले। सतयुग में मनुष्य आत्माएं जो है वो सत्व प्रधान होने के कारण उसके मन के संकल्प भी पावन होते थे, जिसके कारण समस्त विश्व का वायुमंडल जो है वो भी पावन था। एक भी मनुष्य वहां अपवित्र संस्कारों वाला नहीं होता जो वातावरण को दूषित करे। उस पावन वायुमंडल में जो पलने वाले सभी जीव जंतु एवं प्रकृति भी उस स्तर पर थी। धीरे धीरे देव आत्माओं का समापन होना शुरू हो गया और जैसे जैसे उनका समापन होता गया उसी अनुसार वातावरण भी बदलता गया और उसमें रहने वाले जीव प्राणी भी बदलते गए। आज सभी मनुष्य आत्माएं सत्व प्रधान से तमो प्रधान हो गई है, तो उसके विचार भी दूषित हो जाने के कारण सारा ही वातावरण दूषित हो चुका है। अगर कोई मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ कर अपने स्तर को श्रेष्ठ बनाना भी चाहे तो वह अपने को असमर्थ पाती है, क्योंकि वातावरण उसे बार बार अपने संग के रंग में रंगता ही रहता है। अभी आवश्यकता है इस दूषित वातावरण को बदलने की। मनुष्य जब किसी मंदिर में, सत्संग में या पवित्र देवी देवताओं के स्थान पर जाता है तो थोड़े समय के लिए मन जो है वो पावन हो जाता है और वह अपने किए गए विकर्मों का पश्चाताप करने लगता है। अब यही प्रश्न रह जाता है कि हम वातावरण को कैसे बदलें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आके मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग। अब हमें यहाँ पे देखना है कि स्थूल साधनों से वायुमंडल बदल सकता है या नहीं। वातावरण को पावन करने के लिए मनुष्य यज्ञ एवं हवनों का आयोजन किया करते हैं, परंतु विचार करें क्या इस तरह स्थूल साधनों से वायुमंडल बदल सकता है। वायुमंडल तो दूषित हुआ ही है, दूषित विचारों से, पतित संकल्पों से, तो उसे पवित्र भी शुद्ध संकल्पों से ही बनाया जा सकता है। यज्ञ हवन तो हम बहुत पुराने काल से करते आए हैं, परंतु वातावरण तो बदला ही नहीं, तो कैसे आशा की जाए कि इन स्थूल साधनों से वातावरण बदल जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यज्ञ आदि में जो भी इतने द्रव्य पदार्थ स्वाहा किए जाते हैं, संसार में उनका तो अभाव ही होता है। यज्ञ हवन करने से जो थोड़ा बहुत वातावरण शुद्ध होता है, वह तो उसी क्षण मनुष्यों के अशुद्ध विचारों से पुनः दूषित हो जाता है, क्योंकि इतने अधिक यज्ञ तो आयोजित किए ही नहीं जा सकते हैं। सभी मनुष्यों के व्यर्थ संकल्पों से बने वातावरण को शुद्ध कर सके। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि चंद्रमा पर गए यात्रियों का अपना एक अनुभव है कि कुछ समय पहले एक मानव रहित चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा गया, परंतु कुछ दशकों पहले जो यात्री चंद्रमा पर गए थे उनके बारे में छपे एक लेख में बताया गया था कि उन यात्रियों का जीवन एकदम वैराग्य से भरपूर हो गया। कुछ एक एकांत में जाकर निवास करने लगे, क्योंकि उन्हें इस संसार से वैराग्य आ गया। कुछ को विषय विकार से, घृणा से आ गई। कईयों ने धर्म प्रचारक का कार्य अपना लिया, क्योंकि पहले नास्तिक ही थे। इनके जीवन में ये परिवर्तन क्यों आए? इसका कारण यही है कि ज्यों ज्यों वे लोग इस विश्व के दूषित वातावरण से परे होते गए, तो उनका मन भी शुद्ध होता गया, उनके विचार बदल गए, उन्हें विषय विकारों से रक्त जीवन निरस लगने लगा। उन्होंने अपने जीवन को बदलने की ठान ली, अर्थात उस वातावरण का प्रभाव उनके मन पर पड़ा। राजयोग से हम क्या करते हैं? विचारों का शुद्धिकरण करते हैं। तो ऊपर की जो भी घटना अभी हमने बताई, इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे मनुष्य ऊपर जाता है, उसके विचारों में शुद्धता आती है, उसके ऊंचे से ऊंचा स्थान तो आत्माओं की दुनिया ही है, जिसे परमधाम कहते हैं, जहां निराकार परमात्मा का भी निवास है। वह धाम स्वयं भी पवित्र धाम, शांति धाम है। तो अगर मनुष्य वहां का ही यात्री बन जाए, अथवा बुद्धि से वहां की ही यात्रा करने लगे, तो कितना शीघ्र उसके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। इस समय जबकि घोर कलयुग है, परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर राजयोग सिखाया और कहा कि अपनी बुद्धि को परम धाम से जोड़ करके देखो और मुझ निराकार परमात्मा पर स्थित करो, तो तुम्हारे विचार शुद्ध होते जाएंगे। राजयोग का अभ्यास करने से हमारे संकल्प पावन होते जाते हैं, जिनका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है।
तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय की आपाधापी, पैसे कमाने की होड़, धन का संग्रह और उसकी सुरक्षा का भय आदि कारणों से मनुष्य को 2400 घंटे तनाव में वो जीता है और जिससे उसके मन पर अतिरिक्त दबाव बना रहता है। दबाव के कारण वह जीवन की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता। आज मानव अपनी मिसाइलें बम बनाने में सफलता तो प्राप्त कर ली और अभी भी नए नए आविष्कारों में लगा हुआ है, किंतु स्वयं को नहीं खोज पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, वापस कहाँ जाना है। इसी कारण तनाव से ग्रसित होता जाता है। निर्णय लेने की क्षमता प्रायः खत्म हो जाती है। रिश्तों में दरार आ जाती है, रोगों का शिकार हो जाता है। तब वह चिकित्सक के पास दौड़ता है, चिकित्सक उपचार करने का प्रयास करता है, नींद की गोलियां भी देते हैं, गोलियों से मस्तिष्क को आराम देने का प्रयास करता है, पर मन पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को कम नहीं कर सकता। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि यह नहीं है कि मतलब हम चिकित्सक के पास ना जाएं और दवाई ना लें, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि राजयोग का आप जो अभ्यास है उससे मन को हल्का और तनाव से मुक्त करने का एक उपाय है। परमात्मा को याद करते हुए मन में कोई भी परमात्मा की कमेंट्री करे। राजयोग से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो हर समय अपने को प्रसन्न महसूस करता है। राजयोग का अर्थ है जोड़ना या संबंध स्थापित करना, आत्मा और परमात्मा में संबंध स्थापित करने का योग है राजयोग। यह सहज और सरल योग है जिसे प्रत्येक महिला पुरुष और युवा सहज तरीके से कर सकते हैं। ऐसे तो राजयोग का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, पर प्रातः अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में वो समय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो समय है 4 बजे से 4:45 बजे तक। तो इसे करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करे जिन्होंने अमृत वेले में जागने का संबल प्रदान किया है। उसके बाद यदि फर्श पर बैठ सकते हो तो एक दरी बिछाकर और पलथी जोड़कर बैठ जाए, और यदि फर्श पर नहीं है बैठ सकते तो सोफे या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान लगाने से स्वतः ही मन हल्का महसूस करने लगेंगे और इससे मन भी प्रसन्न रहेगा। राजयोग सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक राज्य, जिले, तहसील, मुख्यालय व कस्बों में, गांव में भी सेवा केंद्र बने हुए हैं। वहां निःशुल्क राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। अपने नजदीकी केंद्र में संपर्क कर मात्र 7 दिवस में प्रत्येक दिन 1 घंटे का समय निकालकर इस अभ्यास को सीख सकते हैं। बाद में अपनी सुविधा अनुसार अपने घर में सहज तरीके से राजयोग का ध्यान अभ्यास कर मन को हल्का रखने में निश्चिंत रूप से निश्चिंत रखने में
आप निश्चित रूप से ही सफल हो सकते हैं। राजयोग के द्वारा वातावरण दिनों दिन बदलता जाता है। जब यह वातावरण बहुत अधिक बदल जाएगा तो इसमें रहने वाले मनुष्यों को भी बदलने की प्रेरणा स्वतः ही आएगी और पवित्र वातावरण को पाकर सभी मनुष्य अपने विचारों को विशुद्ध करने में लग जाएंगे, जिससे शीघ्र ही इस विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। विश्व को या वातावरण को बदलने का राजयोगी एकमात्र साधन है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी
1: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। रिश्तों को तलाशते हम एक नए रूप में देखते आ रहे हैं इस श्रृंखला में, और अभी तक जो हमने बातचीत की है उसमें कई रिश्तों को एक नए रूप में देखकर ऐसे लगता है कि अभी तक हम जिस स्वरूप को देख रहे थे उससे कहीं भिन्न है, और जैसे ही नजर देखने का अंदाज बदला जिंदगी बहुत मधुर हो गई। पति पत्नी का रिश्ता सबसे सुदृढ़, सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत रिश्ता, लेकिन आज उस रिश्ते में बहुत सी दरारें नजर आती हैं। किस तरह से विश्वास को कायम रख सकते हैं हम अपने इस रिश्ते में? विश्वास है क्या, उसके सही मायने हमने जाने थे अपनी पिछली कड़ी में। एक बार फिर उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हर बार की तरह बातचीत के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो आपने कहा था कि विश्वास करना या ट्रस्ट करना मेरा अपना अपनी फैकल्टी है, मैं चाहती हूँ तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, अदरवाइज मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही कि मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है। और उसके साथ भी आपने एक और बात ये कही थी कि कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं कह रही हूँ, तो मुझे लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसको थोड़ा सा और एक बार हम रिवाइव करते हैं।
1: इसका एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखें कि सारा दिन में कितनी बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम सोच कुछ और रहे हैं लेकिन बोलते कुछ और हैं, या जिसको हम नाम देंगे लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है। यू नो, नॉर्मली वी विल हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर इट, वी आर वेरी गुड एट जस्टिफिकेशन फॉर आर बिहेवियर, एंड दैट्स व्हाई वी सेड के नोबडी इज रॉन्ग। जो हमने बात की थी कि कभी भी जब हम डील हम इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है उस गलत को भी सही बोलने के लिए। तो हम जो भी इस तरह से अपने मन और वचन में जब डिसइंटीग्रिटी लाते हैं, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन है। मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मैं उस तरह से नहीं कह पा रही हूँ, और उसके लिए मैं जस्टिफिकेशन ये दे देती हूँ, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो फिर मैं आपके लिए सोचना शुरू करती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगेगा, और मैं अपनी थॉट को चेंज करके आपके अच्छे लगने के अनुसार बोलना शुरू करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, विच इज फाइन, जिसको हम शायद वर्ड्स दे देंगे कि दिस इज केयर और दिस इज कंसर्न, बट इट इज चीटिंग, आई एम लाइंग टू यू, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, इट्स प्लेन वर्ड्स, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, चाहे हम उसको कितना भी पॉलिश करने की कोशिश करें कि ये आपके अच्छे के लिए था या आपको, मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, और ये मुझे पता है कि अभी मैं झूठ बोल रही हूँ। आई एम नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट विद माई सेल्फ, आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई एम थिंकिंग। अब जब आप मुझसे कुछ बोलेंगे जो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में डाउट आएगा कि ये मुझे सुनने में तो अच्छा लग रहा है, क्या ये सचमुच फील ऐसे कर रहे हैं? क्या सचमुच सच यही है? और तब मुझे डाउट आने लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, एंड देन हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, क्योंकि एक संकल्प भी ये आना कि आप झूठ बोल रहे हैं इज नॉट अ ट्रस्ट, इट्स अ डाउट कि आप झूठ बोल रहे हैं, एंड देन फिर हमें बार बार वेरीफाई करवाना पड़ता है कि आप सच बोल रहे हैं, क्या सचमुच यही बात
0: आप झूठ बोलते हैं, इट्स नॉट राइट,
1: कोई और बात नहीं है, पूरी बात यही थी, छुपाया तो नहीं है, सो मच डाउट। ट्रस्ट ये होना चाहिए कि इवन इफ आई फील कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार कह दिया ऐसा है, एंड इफ आई क्लेम दैट आई ट्रस्ट यू, देन ऐसा है। तब तक भले मैं अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट से चल रही हूँ कि ऐसा है या नहीं, लेकिन आपने अगर एक बार कह दिया ऐसा है, एंड इफ आई से आई ट्रस्ट यू, देन ऐसा है, बिकॉज आई एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट क्योंकि आई एम नॉट डूइंग दैट। तो जिस तरह मेरा अंदर का मैकेनिज्म वर्क करता है, ऑब्वियसली मैं औरों को भी उसी की परछाई में देखती हूँ कि सबका मैकेनिज्म ऐसे ही वर्क करता हो।
0: इस पे और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों से बीच में एक मेरे को इससे सवाल उपज रहा है कि जब आपने हमने ये कहा कि मैं अगर आपको ये बात कह दूं जो मेरे दिल में है, आप हर्ट हो जाएंगे, तो क्या मैं अपना वो थॉट कन्वर्ट कर सकती हूँ?
1: सी, हर्ट क्या करता है, अगेन हमने देखा कि एनर्जी है, थॉट एनर्जी भी, वर्ड एनर्जी भी, दोनों साउंड एनर्जी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। अब हमारी थॉट एनर्जी तो हर्ट वाली है, क्योंकि मेरे मन में संकल्प तो ऐसा कोई है जो आपको हर्ट करने वाला है। अब आई एम सेइंग कि मैं बोल को चेंज कर देती हूँ ताकि आपको हर्ट नहीं होगा।
0: तो क्या मैं संकल्प को चेंज कर सकती?
1: संकल्प को चेंज करना है, किसके संकल्प को चेंज करना? अपने, कि हर्ट वाले संकल्प को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि वो ही वाली बात आ गई ना, थॉट कुछ और वर्ड कुछ और, एनर्जी ट्रेवल कर रही है ऊपर से, तो हम बहुत अच्छे रिश्ते फिर भी दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में वो बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सोचा कि मैंने बोला तो वो ही जो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने सोचा वो नहीं जो उनको अच्छा लगेगा। तो अगर सच में औरों के बारे में सोचना चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा ही सोचे, देन थिंक प्योर, नॉट ओनली टॉक पॉजिटिव, नॉट ओनली थिंक पॉजिटिव, थिंक प्योर, एब्सोल्यूट प्योरिटी। कि अपवित्रता का अंश भी जब संकल्प से हट जाएगा, तब वो थॉट वर्ड एक्शन में इंटेग्रिटी आ जाएगी। तो अगर कहीं डिसइंटेग्रिटी आ रही है, तो उसको ये झूठ बोल के उसको फिनिश नहीं कर दो, क्योंकि हमने डबल नुकसान किया। जो हर्ट वाली एनर्जी थी वो तो पहुंची गई, वो पहले पहुंची, फिर उसके बाद झूठ बोला, तो भले दूसरे को शब्द अच्छे सुनाई दिए, पर दूसरे को हमारी वाइब्स आ जाती हैं डिसइंटेग्रिटी की, कि ये सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे। जैसे हमें औरों की वाइब्स आती है, तो औरों को भी हमारी वाइब्स आती है, चाहे हम कितनी भी अच्छी तरह से उसको बोल लें। तो डबल नुकसान हुआ ना, एक पेनफुल एनर्जी भेजी, दूसरा डिसइंटेग्रिटी अपनी दिखाई, तो वो हमारे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? एक है कि हम औरों पे ट्रस्ट करें, दूसरा है हम विश्वास के पात्र कैसे बने कि दूसरे हमारे पे ट्रस्ट करें। जितना हमारे अंदर इंटेग्रिटी होगी, दोनों काम हो जाएंगे। एवरीथिंग कम्स बैक टू myself and not to the world.
0: In fact, once I start trusting somebody, the other person will actually care for that trust.
1: It becomes very valuable. विश्वास बहुत वैल्यूबल चीज है। दूसरा कुछ ऐसा गलत करना ही नहीं चाहेगा जिससे उसके विश्वास पर कोई परिवर्तन आए, तो वो उल्टा आप करेंगे। अगर कोई अभी वो विश्वास के लायक भी नहीं है, परमात्मा और आत्मा का संबंध, शिव बाबा इस समय कलयुग के अंतिम समय पर आते हैं, हम आत्माएं बिल्कुल 5 विकारों से पूरी घिरी हुई है, टोटली पवित्रता का अंश भी नहीं है, सुख शांति दिखाई नहीं दे रही है हमारे अंदर। परमात्मा आके हम पे संपूर्ण विश्वास करते हैं कि तुम आत्माएं ही वो 100% जो चार्ज होने हैं उस तक पहुंचेंगे। जब शिव बाबा सबसे पहली बात ये हमें कहते हैं कि यू वर दैट 100% प्योर, यू आर गोइंग टू बिकम 100% प्योर, इवन वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट आवरसेल्फ्स, नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हम इस यात्रा पर कैसे शुरू हुए? ही सेड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू विल डू इट। तो परमात्मा का विश्वास बच्चों पर, तो बच्चे वो करके दिखाते हैं जो उनको खुद नहीं पता था कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। परमात्मा जिस रथ का आधार लेते हैं, जो हमने देखा कि साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा फिर ये विद्यालय स्थापन हुआ, उन्होंने भी यही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया, यही ज्ञान उन्होंने यूज किया के विश्वास करते जाओ। जब बच्चे उनके सामने आते थे, आत्माएं उनके सामने आती थी, उनके अंदर शायद वो विशेषता नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते थे आप कर सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो। दैट एनर्जी, नॉट वर्ड्स, पर वो एनर्जी ट्रांसमिट करना वो उस आत्मा को एम्पावर कर देता है। ट्रस्ट करने से हम एम्पावर कर देते हैं दूसरे को, और डाउट करने से हम डिसएम्पावर करते हैं। कई बार दूसरा कर भी रहा होता है सही राह पर, लेकिन हम इतना डाउट करते हैं, इतना डाउट करते हैं कि वो भी उस राह से हट कर, क्योंकि हम वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन मी, व्हाट एनर्जी आई वांट टू ट्रांसमिट। विश्वास करें, कोई धोखा नहीं देगा।
0: अगेन यहाँ ये विश्वास किया, मैं 100% विश्वास करती हूँ, मतलब कहीं भी अगर हम कहते हो ये करता हूँ, मुझे 100% फेथ है कंप्लीट द वे यू नो इट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूँ। जहाँ धोखा हो गया तब क्या होगा? क्योंकि मैं तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया हूँ ना, मैं पूरी तरह से मान के चल रहा हूँ कि मैंने यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, और बाय चांस गलत हो गया।
1: सी विश्वास अर्थात क्या, कि मैं आप पे ये विश्वास करती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, वही आप सोच रहे हैं, दिस इज विश्वास। विश्वास ये नहीं है कि आप जो कर्म करेंगे उसमें 100% परफेक्शन अचीव करेंगे, दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रस्ट। ट्रस्टिंग इज ट्रस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन, बाकी वो एक इंसान है, उसकी कुछ कैपेसिटीज है, उसकी कुछ कैपेबिलिटीज है, आप उसको टास्क उसकी कैपेबिलिटी देख कर देंगे। ऐसे नहीं कि हाँ आपको ये काम करना है, मैं विश्वास करता हूँ, और फिर उसने वो गलत किया तो हमने कहा आपने वो विश्वास तोड़ दिया। कोई हमारा विश्वास तोड़ नहीं सकता, एज लॉन्ग एज वो आकर हमें ये कह पाए कि मेरे से ये गलती हो चुकी है, तो विश्वास कायम है, चाहे वो बड़ी से बड़ी गलती क्यों नहीं करके आया।
0: अगेन गलती और विश्वास तोड़ने
1: मतलब
0: में
1: आपके
0: है।
1: लिए जो गलती लग रही है,
0: नहीं, that's what I'm saying, कि गलती कर देना और विश्वास टूट जाना, दोनों में फर्क है।
1: मतलब यस एब्सोल्युटली फर्क है। इट्स लाइक लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप या एक पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे से गलती हो सकती है, उस गलती के लिए उसको ये ना कहा जाए कि आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। लेट्स से मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप 90% लेकर आए, और मैं पूरा साल यही सोचती रही एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा 90% लेकर आएगा, और बच्चा 80% लाया या 60% लेकर आया। लेट्स से हम कहते हैं मैंने आप पर इतना विश्वास किया, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया।
0: चलिए, परसेंटेज तो उसके हाथ में नहीं है। उसने कहा मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कभी ऑकवर्ड पे नहीं जाऊंगा, मैं कभी चैटिंग नहीं करूंगा, या मैं कुछ और भी चीज कुछ गलत नहीं करूंगा, और मैंने किया
1: किया तो आपने किया वो विश्वास तोड़ना नहीं होगा, लेकिन अगर आपने किया और सच नहीं बताया तो वो भी विश्वास तोड़ना नहीं होगा, लेकिन वो भी फिर कारण ये है कि मैं शायद आपको राइट तरह से रिसीव ना कर पाती जब आप सच बोलते, इसलिए आपने झूठ बोला। मैंने आप पर विश्वास किया, ये मेरी चॉइस है। अब आप क्या करते हैं वो आपकी चॉइस होगी, फिर आपके कर्म को मैं किस तरह से परसीव करूंगी, अगेन वो मेरी चॉइस है। तो आपने अगर सिगरेट पी या आप चैटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अब मेरी कॉन्शियसनेस उस इमेज को कैसे परसीव करती है। मी एज एन इंडिविजुअल आई वुड गेट हर्ट मोर इफ आई हैव टू गेट हर्ट इज ओनली इफ द अदर पर्सन डजंट टेल द ट्रूथ, नॉट बिकॉज आपने ये कर्म किया, क्योंकि आपने ये कर्म किया कुछ सोच कर किया, पीयर प्रेशर में आके किया या कुछ भी किया,
0: कोई ना कुछ जस्टिफिकेशन। एक्चुअली अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस देती हूँ उस व्यक्ति को
1: तभी
0: कि
1: तो
0: कुछ नहीं होगा। हाँ,
1: रिलेशनशिप ऐसा बनता है जो वो आकर आपको हर बात सच बताएंगे, बड़ी से बड़ी गलती भी आकर सच बताएंगे, अगर उनको पता है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जो गलती की है। तो विश्वास कहाँ टूटा, उल्टा ऐसे इंसिडेंट्स जब होते जाते हैं तो हमारा विश्वास एक दूसरे के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। विश्वास ये चीज है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड मुझे करेंगे। मैं अगर कोई गलती करती हूँ और आपके सामने आऊं, अब मुझे क्या आप पर विश्वास है कि आप मेरी गलती को स्वीकार करेंगे। ये विश्वास है, ये विश्वास चाहिए कि आप मुझे फिर से उसी प्यार के साथ स्वीकार करेंगे। ये अगर है तो मैं आकर आपको गलती बताऊंगी, फिर से अगर आप मेरे से उसी तरह से प्यार से चलेंगे रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग।
0: तो लेकिन फिर मैं बार बार वही गलती करूंगा?
1: नहीं, कभी नहीं। हो नहीं सकता, क्योंकि आपको बहुत प्यार और पॉजिटिव एनर्जी मिली है, आपको एम्पावरिंग एनर्जी मिली है, आपको डिस एम्पावरिंग एनर्जी नहीं मिलती है। आप मेजोरिटी घरों में देखो कब झूठ बोलना पड़ रहा है एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ को कब झूठ बोलना पड़ रहा है एक दूसरे से, जब पता है कि सच को सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा। टुडे इफ अ हस्बैंड गोज आउट फॉर डिनर अपनी कंपनी के बाद, ऑफिस के बाद वो कंपनी के किसी कोलीग के साथ डिनर पे चले गए, ठीक है, घर आके क्या बोलेंगे? घर आ गए 10-11 बजे, दो ऑप्शन है, या तो आप बोल दो कि मैं अपने किसी कोलीग के साथ डिनर पे चला गया, या आप बोल दो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था।
0: तो ज्यादा आसान लगा,
1: तो वो ज्यादा आसान लगा, डिपेंडिंग ऑन सामने वाला उसको कैसे रिसीव करेगा। अगर आपको ये पता है कि आपकी वाइफ बोलेगी अच्छा आप डिनर पे चले गए, वंडरफुल, हाउ वाज द डिनर, यू विल कम एंड से कि आप डिनर पर गए थे। लेकिन अगर आपको ये पता है, सी वी नो आवर रिस्पॉन्सेज ना, क्योंकि हम एक साथ बहुत रहते हैं, कि आपकी वाइफ कहेगी क्यों, क्या, किसके साथ, कैसे, मैं वेट कर रही थी, ऑल दोस्त, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, ये वो, तो आप आकर बोल देंगे कि आई वॉज लेट एट वर्क, मैं बहुत काम था, 10 बजे तक काम कर रहा था। फिर आप वो एक बार बोलेंगे,
0: फिर
1: दो
0: वो नींद
1: बार
0: पड़
1: बोलेंगे,
0: गई, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे साइकिल।
1: अब ऊपर से वो रिश्ता ठीक ही लग रहा है, वाइफ भी बहुत खुश है, हस्बैंड देर तक काम कर रहे थे, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, थके हुए, ऊपर से तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन उस रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं है, और छोटा सा इंसिडेंट उस रिश्ते को शैटर कर सकता, क्योंकि बहुत झूठ एक दूसरे के साथ बोलना पड़ रहा है। अब अगर हस्बैंड ये एक्सक्यूज दे कि मैं इसलिए झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि वो दुखी होगी, या वाइफ ये क्वेश्चन करे तो हमें एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं करना है. हस्बैंड विल हैव टू चेक कि मैंने झूठ क्यों बोला, क्योंकि मेरे अंदर सच बोलने की ताकत नहीं थी, या क्योंकि मुझे लगा कि डिनर पर जाना राइट नहीं था, व्हाटएवर, तब मैं झूठ बोल रहा हूँ. एंड वाइफ अपने पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो मुझे एक्सेप्ट करने की पावर नहीं थी कि आफ्टर वर्क वो कहीं डिनर पर जा सकते. तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरे का राइट एंड रॉन्ग
0: कि उसे सही लगे या वो बहुत चाहेंगी तो इसलिए चलो उनको वो हर्ट ना हो जाए. अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसी पर्सपेक्टिव में, ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव में अगर देखें, आज का वो दौर है जब दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर हैं और देखा ये जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा ही बाहर हैं, ज्यादा हम अपने ऑफिस में वक्त गुजार रहे होते हैं घर की बजाय. तो यहाँ एक इनसिक्योरिटी अगेन, यू नो, कि वो इतनी देर तक बाहर हैं, जैसे कि वाइफ के लिए कि वो किसी और कलीग के साथ है, दैट कलीग कैन बी अ मेल, कैन बी अ फीमेल, एंड देन द क्वेश्चन स्टार्ट्स हैपनिंग, यू नो, दिस फॉर द मेल आल्सो, फॉर द हस्बैंड आल्सो, कि वो इतनी देर तक बाहर हैं, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहीं बाहर कॉफी पीने गई हैं, चाय पीने गई हैं, इतने बजे आ जाना चाहिए था. तो ये सारा जो यहाँ जो मिसट्रस्ट है बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट कि आप लेट आए हैं या नहीं, आप कहाँ किसके साथ हैं, दैट इज अ मेजर, जिसको बहुत टाइम बाद जाके बोला जाता है. यू नो, ये सवाल बहुत पहले से आना शुरू हो जाता है. अगेन आई थिंक वो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा होता है क्योंकि मुंह से बोलना बाद में जाता है
1: लेकिन मन में बहुत पहले से क्रिएट किया होता है. और वो क्यों क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हमने कहा रिश्ते की फाउंडेशन ट्रस्ट है. तो जहां इसीलिए हमने बताया कि शिव बाबा ने कहा अगर एक संकल्प भी संशय का है तो अभी आप संशय वाले साइड पर है, आप ट्रस्ट नहीं बोलो. मतलब आज हम क्या कहते हैं, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, लेकिन दिन में कम से कम 10 संकल्प डाउट वाले क्रिएट करते होंगे उस व्यक्ति पे. तो आई ट्रस्ट यू का भाव क्या, कि एक भी संकल्प मिसट्रस्ट का नहीं. अब जब इस तरह के संकल्प आए तो ये कहीं ना कहीं मेरी फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर है, और कहीं ना कहीं मेरा परसेप्शन उस चीज को देखने का कि आप अपने कोलीग्स के साथ जाते हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट और व्हाट इज राइट इन दैट, आई हैव टू चेक माई सेल्फ. एंड समहाउ एक डायलॉग कि हम अपनी फैमिली में या अपने रिलेशनशिप में डिसाइड करें कि हमारे लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, क्योंकि वी आर नोबडी टू डिसाइड कि समाज के लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, कि किसी को किसी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. नोबडी इज देयर टू गिव, यू नो, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग. मेरे लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, एंड फॉर माई स्पाउस राइट एंड रॉन्ग क्या है, आई नीड टू सिट एंड डिस्कस. एंड वो भी इस भाव से नहीं कि मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए. नो, द अदर पर्सन विल से ठीक है, आई विल कम बैक होम एंड टेल यू कि मैं लेट काम कर रहा था, क्योंकि आई नो कि आपके हिसाब से ये राइट नहीं है. टू पीपल डिस्कसिंग कि इसमें राइट और रॉन्ग क्या है, वो तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम ये सोच के बैठेंगे कि आप भी राइट है, मैं भी राइट हूँ. नाउ डिस्कस एंड क्रिएट अ पैरामीटर फॉर योर हाउस, इवन फॉर अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. हमारे परिवार के लिए वैल्यू सिस्टम जो है उसमें राइट एंड रॉन्ग हमारे परिवार के लिए क्या होगा, वो हमें आपस में डिसाइड करना पड़ेगा, नॉट इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को नहीं डिसाइड करना चाहिए. अभी क्या हो गया, दो लोग अपना राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन अलग क्रिएट कर ली, तो इनके लिए कुछ और राइट है, इनके लिए कुछ और राइट है, और इनको झूठ बोल बोल के इनका राइट सुनाते रहते हैं. पेरेंट चाइल्ड में भी यही है. पेरेंट सोचेगा इंटरनेट पे चैटिंग नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वो राइट है. बच्चा सोचेगा करनी चाहिए, तो वो करता रहता है, इनको बताता रहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ. तो नींव क्या बन रही है, और यही अगर दोनों बैठे और बच्चा उनके साथ डिस्कस करे कि उसके लिए वो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट डज ही गेट आउट ऑफ इट, एंड दे ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फिर वो उसको गाइड भी कर सकेंगे कि इसमें नुकसान क्या होंगे. आप अगर चैट, इट विल बी सो ब्यूटीफुल. वो बच्चा जो जो चैट करेगा वो आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेगा जब उसे पता होगा कि दे डोंट फील इट्स रॉन्ग. वी शुड ऑलवेज हैव अ कॉमन राइट एंड रॉन्ग डेफिनेशन इन द फैमिली. अभी तक क्या हो रहा था, हम अपना राइट एंड रॉन्ग दूसरे पर इम्पोज कर देते हैं, कि जैसे पेरेंट चाइल्ड पर इम्पोज कर देगा या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर इम्पोज कर देते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे राइट एंड रॉन्ग के डेफिनेशन के हिसाब से चलते रहे. तो वो फिर उनके पास ऑप्शन क्या होता है, या तो वो हमें झूठ बोलते रहते हैं, और फिर जिस दिन उनका झूठ पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं आपने हमारे विश्वास को तोड़ दिया, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी आपको उस डेफिनेशन के हिसाब से चलना था, आपकी अपनी क्या चॉइस है उसके बारे में हमने नहीं सोचा. आपके राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन क्या थी?
0: एक्चुअली दैट रियली मेक्स सेंस, यू नो, उससे कोई ऑप्रेस्ड फील नहीं करेगा और यू नो ये सचमुच का लोकतंत्र.
1: यस, एंड एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल टू बी देमसेल्व्स विद ईच अदर. हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी देमसेल्व्स. उन्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, छुपाना नहीं पड़ेगा. यू नो पेरेंट चाइल्ड भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज इसकी वजह से आ जाती है क्योंकि हमें एक दूसरे से कितनी बातें छुपानी पड़ती है.
0: इनफैक्ट आप ये भी हो सकता है कि जब हम बच्चे को ये बता रहे हो कि आप लेट नाइट नहीं आना है, हम सिर्फ एक ये रूल बना दें कि नो लेट नाइट पार्टीज, नो टॉकिंग ऑन फोन. उसकी बजाय इफ यू हैव अ डिस्कशन एंड देन गॉड, इट कैन बी एक्चुअली वेरी गुड.
1: वी हैव टू गिव द फ्रीडम टू ईच अदर टू डिसाइड आवर राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड देन कम टू अ म्यूचुअल डिसीजन कि ठीक है हमारे लिए ये राइट है. ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए जहाँ राइट एंड रॉन्ग अलग अलग है, कि हस्बैंड का राइट वाइफ के लिए रॉन्ग है या पेरेंट का राइट बच्चे के लिए रॉन्ग है या वाइस वर्सा. तब देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चीटिंग cheating with each other in relationships. क्योंकि क्या करें, तब हम बोलते हैं कि we do not understand each other. हम एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपकी right की image अलग है और मेरी right की image अलग है. हमारे पास दो options हम create कर देते हैं, या तो झूठ ही बोल देते हैं एक दूसरे को, या फिर दूसरे की feelings की परवाह नहीं करते. Like बच्चे को कुछ करना है तो बोलेगा मुझे करना ही है, भले आपको गलत लगे. तो जिद, या झूठ बोल देते हैं या जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं. तो इन द प्रोसेस क्या होता है, दोनों में से एक जना तो परेशान रहता है.
0: आज के इस दौर में अगर हम जिस एक ऐसे परिवार को तलाश रहे हैं, एक ऐसे रिश्ते को तलाश रहे हैं जहां ये मुश्किलें ना हो, सो आई थिंक डिसीजन हैज टू बी कंबाइंड, यू नो, क्यूमुलेटिव डिसीजन होना बहुत जरूरी है. तो यहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम क्योंकि इस वक्त बात हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ही कर रहे हैं, देखा ये गया है कि जब तक कम्युनिकेशन जारी रहती है, जब तक बातचीत जारी रहती है, तब तक सब ठीक है. प्रॉब्लम सब शुरू होती है जहां एक चुप हो जाता है. दूसरे व्यक्ति को बहुत देर बाद पता चलता है कि व्यक्ति चुप हो गया, या कहीं ना कहीं वो दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं. सो वो कायम कैसे रखे जाएं, जहां लगे कि मेरा हस्बैंड बात नहीं कर रहा है, डाउट होना शुरू हो जाता है यहाँ वाइफ को कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर, जो इतनी बातें करते थे वो बात क्यों नहीं कर रहे. सो उस बैरियर को कैसे ब्रेक किया जाए.
1: कहीं भी कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए एक रिश्ते के अंदर, क्योंकि वो एक क्रैक जैसे बनना शुरू हो जाता है. पहली बात, ये कम्युनिकेशन गैप शुरू कैसे होता है, जैसे आपने कहा विड्रॉ करना हम शुरू कर देते हैं जब हमें कहीं फील होता है कि दूसरा हमारी पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता, तो हम अपने पर्सपेक्टिव को अपने तक ही रखना शुरू कर देते हैं. कई बार क्या होता है, हम आते हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन आप हमारी बात सुनने के बजाय अपना ही ओपिनियन सारा बोलकर और हमारा अपना ओपिनियन हमारे ऊपर इम्पोज कर देते हो और फिर आपको लगता है आपकी बात हो गई. देन स्लोली स्लोली आई विल मूव अवे कि आप मेरी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हो, तो मैं अपना थॉट अपने तक रखना शुरू करता हूँ. सो द रीजन फॉर दिस इज लैक ऑफ लिसनिंग, एक दूसरे को सुनने की शक्ति. हमारे को ज्यादा आदत बोलने की है कि हम बोलें और दूसरा हमारी बात सुने, और उसमें भी हमारा थॉट ऑलरेडी बना हुआ है कि ये मेरी बात माने. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है. मे बी आई डोंट नो वेदर इट्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री या क्या है, आपने मेरी बात मानी और अगर मैंने आपकी बात मानी तो इट्स लाइक मैं आपको चार बार सुना दूंगी कि मैंने आपकी बात मानी थी ना उस दिन, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी. It shouldn't be there in a relationship. Ideally, it should be what's the best.
0: No, in fact, मैं मानूं तभी ही जब मुझे भी वो सही लग जाए.
1: सही लग.
0: अच्छा, और जब मुझे सही लग जाए तो वो आपकी बात कहाँ रह गई?
1: कहीं नहीं. वो तो एक म्यूचुअल डिस्कशन में निकल कर एक डिसीशन निकला. तो कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. आपके मन में जो भी आए, यू नो, कई बार कम्युनिकेशन गैप इसलिए भी आता है क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ वो शायद आपको अच्छा नहीं लगने वाला है. एंड तब हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं सामने वाले के लिए और हम सोचते हैं बोलूंगी तो इनको बुरा लगेगा.
0: नहीं, और हम चाहते नहीं कि उस वक्त कुछ भी हो. यू नो, वो सिचुएशन अभी ठीक रहे. कितनी बार देखा गया
1: क्योंकि
0: कि रिश्तों में प्रॉब्लम ना आए कि चलो चलो अभी चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, निकल जाने दो, वक्त निकल जाने दो. लेकिन थॉट तो रहेगा,
1: थॉट तो रह जाएगा बिकॉज एनर्जी यहाँ है. तो कहीं अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को बुरा लगने वाली है वो बात, लेकिन अगर वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है तो प्लीज स्पीक इट आउट, डोंट बॉदर. क्योंकि अभी थोड़ा सा बुरा लगना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म वी विल गेट इनटू दिस हैबिट कि ये बात इनको अच्छी नहीं लगती, लेट मी कीप इट टू माय सेल्फ. वो भी ऐसे ही सोचने लगेंगे कि ये बात इनको नहीं अच्छी लगती, लेट मी कीप इट टू माय सेल्फ. धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हो जाएंगी विच वी विल स्टार्ट कीपिंग टू आर सेल्व एंड देन वी हैव मूव्ड अवे. सो शेयर, स्पीक इट आउट एवरीथिंग, चाहे उनको बुरा भी लगे, लेकिन अगर यहाँ ऑनेस्टी होगी तो बुरा नहीं लगेगा.
0: इनफैक्ट एक और बात जो अभी मुझे समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बोलना, लेकिन उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है सुनना.
1: सुनना वही टोटल है कि दूसरा जो कहना, सुनना तो, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, सुनना विद दिस इंटेंशन कि आप सही कह रहे हैं. हम सुनते तो बहुत बार है, अच्छा बोलो बोलो और क्या बात है, बोलो बोलो, जैसे कि हम वेट कर रहे हैं कि आप अपना सारा बोलो और फिर मैं आपको बोलूं कि आप पूरी तरह से रॉन्ग थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आप रॉन्ग है. तो सुने लेकिन विद दिस थॉट कि आप राइट कह रहे हैं, देन इट विल बी अ गुड हेल्दी डायलॉग.
0: अगेन एक अलग पर्सपेक्टिव इस पूरी बातचीत में आज हमारे सामने आया है शिवानी की, किसी भी रिश्ते में, क्योंकि रिश्ते हमारे बहुत नजदीकी हैं, मतलब इतने प्यारे होते हैं रिश्ते, और रिश्तों पर ही हमारी पूरी जिंदगी मुझे लगता है टिकी है. अगर आगे चलेंगे हम प्रोफेशन में भी जाएंगे, वहां पे भी रिश्ते ही होते हैं. सो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वही ऊर्जा का ऊर्जा के साथ जो संपर्क है, या आत्मा का आत्मा के साथ, या फिर हम कहें तो जिस लिबास में है हम उस लिबास के साथ भी एक इंट्रैक्शन है, तो उस इंटरेक्शन को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है. हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो एक नई बात बहुत सुंदर जो समझ के आई है परिवार की, कि डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ शुड बी कॉमन. जो आदर्श या जो बातें सही और गलत मेरे परिवार के लिए हैं, वो सबकी साझा होनी चाहिए और सबके एक मत के साथ होकर सामने बैठी जानी चाहिए. बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ये दिस कैन एक्चुअली चेंज लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. शिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. अच्छा लगता है जब हम उन्हीं रिश्तों को एक नए नजर, एक नए अंदाज से देखते हैं, और जब साथ बैठकर हम खाना खा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तब इधर उधर मुंह करके क्यों बैठे, क्यों कॉन्फ्लिक्ट में रहें, क्यों नहीं हम हारमनी में रह सकते, और उसके छोटे छोटे जो हमें एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं उन्हें हम अगेन इम्प्लीमेंट करके, जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जरूर सोल्यूशन सामने आएंगे. अगर आपके पास कोई बात है, कोई सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में रिश्तों को यूं साथ किस तरह से मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे और मधुर कर सकते हैं, इन्हें जानने का प्रयास करते रहेंगे. फिर होगी आपसे मुलाकात. दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अमचह रेडियो पुणेरी अहो ऐकलत का।
1: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित।
2: नमस्कार एंड अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सजगता या अवेयरनेस की इस जर्नी में कई पड़ाव हमने अब तक तय कर लिए हैं, बहुत कुछ जान लिया है अपने बारे में भी, लेकिन जो टेक्निक्स हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो सचमुच मुझे अपने एक्सपीरियंस से भी पता चल रहा है कि हाँ, ये संभव है। आप भी जरूर इन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज फिर इसी पर कुछ और चर्चा करते हैं कि किस तरह से अवेयरनेस, सजगता और फिर वो जो थॉट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, उन्हें कैच करना है, किस तरह से उन्हें अंडरलाइन करके समझना है कि ये है जो प्रॉब्लम की जड़ है, और उसके बाद स्टॉप करके उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देना है, उन्हें बदल देना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए और इन टेक्निक्स के बारे में ज्यादा हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत करते हैं।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो हम ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गए थे कि किस तरह से हमें कहना है कि भाई अब इसको हम या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर ये नेगेटिव थॉट हमें समझ में आ गया है, या फिर उसी से जुड़ा हुआ हो, उसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई और थॉट आएगा या टोटली ऑपोजिट थॉट हम उसको लेकर आएंगे। अब भी मुश्किल आ रही है, इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थॉट जो है वो जाने का नाम ही नहीं रहता, आता ही है। दिस इज लाइक समथिंग, ऐसा कोई खेल ना करके प्रैक्टिकल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करेंगे?
3: एक और विधि बताता हूँ कि भी लिखना शुरू कर दो। एक पेज लो, उसको दो भाग में डिवाइड करके, एक और जिसको कहते हैं कि भी इरेशनल थॉट्स, या तो ऑटोमेटिक थॉट्स भी कहते हैं, कि ये जो नेगेटिव है ना ऑटोमेटिक आता है, और फिर उसके सामने रैशनल थॉट्स क्या है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि अगर आपको ये विचार आया कि आई विल फेल, अब उसके सामने रैशनल थॉट दो कि भी ठीक है, समटाइम आई फेल, समटाइम आई सक्सीड, पिछली बार मैं सक्सेसफुल भी हुई थी, संभव है दो बार फेल हुई थी, तीन बार मैं सक्सेसफुल भी हुई थी। फिर अगर दूसरा विचार आता है कि भी मेरे से नहीं होगा,
2: तो कभी कभी मुझसे हो जाएगा, कभी कभी मुझसे
3: नहीं, या तो ऐसा भी कि थोड़ा तो होगा ना। किसने कहा है कि पूरा एक ही बार में करो?
2: सिस्टर शिवानी, वही तर्क वितर्क की बात पे आ जाती है।

0: हैं हम फाइनली कि
1: प्यार से, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इस प्रोसेस को प्यार से करना, जबरदस्ती से नहीं करना. जैसे एक बच्चे को मनाना है तो जबरदस्ती, अगर उसके हाथ में चाकू है, यू नो यू आर सीइंग द चाइल्ड कि वो चाकू से खेल रहा है या किसी तेज चीज से खेल रहा है, आप क्या करेंगे?
0: हम उसे हाँ प्यार से ही समझाएंगे कि भाई रुको रुको रुको,
1: वो शायद नहीं सुनेगा. आप क्या करेंगे?
0: हम उसके पास जाएंगे, आराम से प्यार से बैठेंगे और धीरे धीरे वेट करेंगे कि कब वो थोड़ा शांत.
1: लेकिन वो खेलना चाहता है उस चाकू से.
0: फिर हम उसे समझाएंगे कि इससे चोट लग सकती है.
1: लेकिन उसे अच्छा लग रहा है, उसे उससे खेलना है.
0: हम उसे एक ऑल्टरनेट खिलौना.
1: See, that's the only time it will work. जैसे आप कह रहे हो ना कि हम उस नेगेटिव थॉट को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जाता, बिकॉज हमने उसको पकड़ा हुआ है. हमें अच्छा लग रहा है वो खिलौना, तो हमें उससे ज्यादा अट्रैक्टिव खिलौना जब हम अपने आप को देते हैं तो फिर हमें वो चाकू को छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि एक टाइम पे तो हाथ में एक ही खिलौना आएगा. तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है. तो खींचेंगे अगर वो चाकू को हाथ से तो चोट लगेगी. यू नो इट्स वेरी पेनफुल. अगर आप नेगेटिव थॉट को जबरदस्ती रोकें या सप्रेस करें या फोर्सफुली रोकें, इट विल कम इवन यू नो इवन मोर. तो आप सोचेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, यू नो एंड यू विल गिव अप. लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें. डोंट फाइट विद दैट नेगेटिव थॉट. आप पॉजिटिव दें और थोड़े दिन में आपको लगेगा, मतलब यू विल फॉरगेट वो. जैसे है ना, थोड़े टाइम के बाद लगेगा, पता ही नहीं चला कि वो चाकू कहाँ गिरा पड़ा है वहां पे. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आप तो दूसरे खिलौने से खेल रहे हैं. यू विल नॉट डू इट वेरी कॉन्शियसली, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली. आप सिर्फ मन को वो दूसरा खिलौना देना शुरू कर दीजिए. फिर भी वो चाकू से खेल रहा है, कोई बात नहीं, उसे खेलने दीजिए. लेकिन आप उसके पास वो दूसरा खिलौना देना शुरू कर दीजिए. स्टार्ट गिविंग इट द पॉजिटिव थॉट. थोड़े टाइम के बाद इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव थॉट एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेगेटिव थॉट कहाँ चला गया.
0: बहुत सुंदर आपने बात की, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक SMS आया था कि एग्जिस्टेंस जब हमारे हाथ से कुछ ले लेती है इसका मतलब हमारा हाथ खाली है, क्योंकि उसने कुछ बेहतर देना होता है. तो ये एक जो बात ही पूरी उसी तरह से सामने आती है.
2: सब्स्टिट्यूट भी जैसे शिवानी बेन ने कहा वो भी ठीक है. फिर पॉसिबिलिटी भी सोचो, ये बात उसमें छोटा सा भी, ठीक है, तिनका ही चाहिए हमें. मन को एक छोटा सा भी सहारा मिल जाए तो उस पर वो सोचते सोचते नेगेटिव से मुक्त हो जाएगा, बड़े डिप्रेशन से भी वो मुक्त हो सकता.
0: कहते हैं ना कि दूसरा कांटा ही देगा पहले कांटे से निजात. तो एक दूसरा कांटा चाहिए ही, लेकिन हम वो कांटा ही क्यों माने, हम उसे फूल भी तो मान सकते कि क्या वो. लेकिन हमें कैसे एहसास हो कि ये जो कांटा है हमारे पास, ये पहला कांटा है और जो दूसरा आ रहा है हमारे पास वो फूल है, और कहीं हम उसके ऊपर तो नहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे.
2: लेकिन वो पॉजिटिव ही है ना. अगर जो कांटा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो आप में कोई भी बुरी भावना लाने वाला है, आपको नीचे दिखाने
0: वाला. ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डिपेंडेंसी हटा दें विचारों से भी या थॉट्स के ऊपर भी, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे हम डिपेंडेंट ना रहें, खिलौने पर डिपेंडेंट ना रहे. तो कहीं हम जो
1: थॉट्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कभी भी. थॉट्स हमारी अपनी क्रिएशन है. डिपेंडेंसीज ऑन समथिंग एक्सटर्नल. थॉट्स इज मी.
0: The thoughts actually gives you feeling.
1: That's the sub product, you know. That's the second stage of the process.
0: No, but I what I just wanted to ask is that if there is one thought, even if it's negative, even if I know it's negative, it is able to give me some kind of a comfort, you know, some feeling, comfort.
2: No, if it is negative, it won't give comfort.
0: Okay.
2: Negative.
1: तो pain की feeling ही देगा.
2: Inferior
1: comforting feeling नहीं देगा.
0: Okay.
2: Or no, maybe you are escaping.
0: लेकिन
2: वो ठीक नहीं है.
0: हाँ.
2: होना तो राइट थॉट होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए. और आप जो आगे बात कर रहे थे थोड़ी और ऊंची बात है कि भाई वो हो ही नहीं. टू राइज अबाउ माइंड वेल डिफिकल्ट है, लेकिन योग में भी वो चरम सीमा है. योग का भी अच्छे से अभ्यास करते जाए राजयोग में भी यही हमने अनुभव किया है कि एक स्थिति आती है कि जब आप सचमुच थॉटलेस हो जाते. इनफैक्ट यू राइज अबाउ दैट. भले अंत में आएगी, कुछ अभ्यास के बाद आएगी, परंतु वह बेस्ट स्टेज है.
1: मतलब स्टिलनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, यू नो, जो गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, साइलेंस पीरियड बिटवीन थॉट्स. तो कोई थॉट नहीं
2: और इवन यू आर डिटैच. कभी आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी बात है. जैसे ऊपर से प्लेन में से देखो मकान छोटे छोटे दिखाई देते हैं. If you are really in high meditative stage, you will find ये तो petty things, it's nothing.
0: छोटी छोटी बातें.
2: एकदम no means no, you will be really feel कि भी क्या मैं तो time waste कर रहा था इस पे सारा सोच करके. This is nothing. और मेडिटेशन में दूसरा तो एक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं सीबीटी में वो ऑटोमेटिक है. क्योंकि मेडिटेशन में जैसे कोई भी चीज है ना, अभी एक्सरसाइज करने हम क्यों जाते हैं, क्योंकि मसल स्ट्रांग
0: फिट रहे हम.
2: हाँ, एक बार आपके मसल स्ट्रांग हो गए फिर जहां भी वो स्ट्रेंथ को आपको चाहिए आप यूज कर सकेंगे. तो मेडिटेशन भी ऐसे ही है. मेडिटेशन में हम बैठते हैं और जब ये चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूं, कैसे मैं शरीर से परे दिव्य चेतना हूं, मेरे ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, मैं कैसे मेडिटेशन और आगे तो भी परमात्मा से कम्युनियन करना है ना, तो भी परमात्मा से कैसे मेरा कम्युनियन है, जब ये थॉट्स हम करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन शरीर से देह से आत्मा की ओर.
1: दिस इज दैट अदर खिलौना. You know, ये वो दूसरा वाला, these good thoughts, these real thoughts. The most important है, it's not even good or bad. These are the real thoughts. क्योंकि ये मैं हूँ. ये सब मैंने एक you know imagination जैसे एक image create किया, but this is the true me. तो ये वाला खिलौना जब मन खेलना शुरू कर देता है, वो चाकू अपने आप छूट जाएगा.
2: एक तो ये छूटना, this is also benefit. कि उससे higher benefit है कि अगर आप रोज करते हैं, 10 मिनट भी करते हैं, अगर डेली आप कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो मेंटल एक्सरसाइज. जैसे मैं रोज वेट लिफ्टिंग करता हूँ, 25 किलो उठाता हूँ, तो मेरे बाइसेप स्ट्रांग हो जाते हैं. तो ऐसे अगर रोज मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मेरा माइंड भी स्ट्रांग
0: और इंटरनली मैं स्ट्रांग होते जाऊंगे. फिर सिचुएशंस आएंगी या कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई एम इंटरनली वेरी स्ट्रांग, यू नो, कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला पाएगा. वाओ,
1: वो अभी भी नहीं कर रहे, हम अपने आप को वो करना बंद कर देंगे. बिकॉज आई हैव बिकम स्ट्रांग, सी दे आर स्टिल द सेम. वो तो वो ही है, वो अभी भी वही बोलेंगे जो पहले बोलते थे. लेकिन
0: अभी भी, हम अभी भी यही कह रहे हैं ना कि मुझे गुस्सा नहीं दिलवा पाएगा, मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा. मतलब मैं खुद जो हो रही हूँ, लेकिन मैं कारण वही मानती हूँ कि उनके कारण, किसी और की वजह से मैं हुई हूँ या हुआ.
1: इसको भी अगर आप बार बार अवेयरनेस में रख के बार बार चेंज कर दोगे ना अपनी वोकैबुलरी को, हाफ द पेन इज गॉन. बिकॉज अभी भी अगर हम ये कहे ना कि वो मुझे गुस्सा नहीं दिला पाएगा, यू से इट देन स्टॉप एंड चेक, लेकिन वो तो वैसे भी नहीं दिलाता.
0: दिस इज व्हाट एक्चुअली आई स्टार्टेड डूइंग.
1: दिस इज द जर्नी. तो वो तो वैसे भी नहीं दिलाता. हाँ, मैं अपने आप को तकलीफ देना अब बंद करती जाऊंगी. सो दिस इज दैट कॉन्स्टेंट टॉक.
2: जो बहुत बड़ी बात है राजयोग में, कि हम परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं. मुझे भी कैसे क्लिक हुआ मैं आपको बता दे ना, मैं कहीं अपने लेक्चर्स में भी इस बात को एम्फेसाइज करता हूँ. करीब 1981 की बात है कि जब मैं कटक में गया था और वहां पर एक बहन से मेरा परिचय कराया गया. जब उनको मिले तो आपकी तरह ही थे, उनके चेहरे पे कोई निराशा की निशानी नहीं थी, कुछ नहीं था. परंतु मुझे बताया गया कि इनके जीवन में बहुत ही भयानक हादसा हुआ है. उनके पति बिजनेसमैन थे, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था. डॉक्टर ने तो कहा था कि भी ये नॉर्मल ऑपरेशन है, हम हमेशा करते हैं, परंतु किसी को पता नहीं कहां गलती हुई. जब उनको एनेस्थेशिया दिया गया तो वो उसी स्टेज में डीप में चले गए, एनेस्थेशिया से बाहर आए नहीं, कोमा में चले गए. बहुत कोशिश की, अच्छे पैसे तो थे, भारत में कई स्थानों पर ले गए, परंतु जब इम्प्रूव नहीं हुए तो एकदम डिप्रेशन में चले गए. उसने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई उनको बचा लेता था. जब मेरे से मिलना हुआ और जब मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, चेहरे से नहीं लगता है, तो मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ जब भी ऐसे किस्से सामने आते हैं कि मेडिटेशन ने कैसे आपको मदद की. यही कहना पर्याप्त नहीं है कि भी मैंने राजयोग किया तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया. तो बहन बता भी सकी. उसने कहा मुझे पहले बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो मेरी सास ने कहा था चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तो मैं गई. परंतु वहां वो बहन मेरी बात को सुन रही थी, मेरे प्रॉब्लम्स को सुन रही थी, मैं जाके रोती थी, उनको अपनी बात बताती थी. तो इसके लिए मैंने जाना कायम रखा. और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भी परमात्मा से डायरेक्ट संबंध कैसे जोड़ना है. उन्होंने कहा इससे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला. पहले भी मैं पूजा पाठ आदि करती थी, उसे अच्छा लगता था, परंतु टोटली डिप्रेशन नहीं गया था. जब ये डायरेक्ट संबंध जोड़ना मैंने सीखा तो 100% मेरा डिप्रेशन चला गया. मैं समझता हूँ ये मोस्ट पावरफुल चीज है.

0: नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर मेरी क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो ट्रांसमिट अगर हम कर पाए दूसरे को, तो दूसरे के अंदर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजीली आएगा. तो द साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो इज गोइंग थ्रू हिज ओन जर्नी, लेकिन परमात्मा से साइकोथेरेपी करवाने का वो फायदा है.
1: लेकिन परमात्मा से साइकोथेरेपी कराना इज लाइक समथिंग, बट हाउ डू वी गो अबाउट इट, यू नो, लाइक हम सब भगवान को मानते हैं, अपने अपने खुदा को, ईश्वर को मानते हैं.
0: हम भगवान को मानते हैं लेकिन पता नहीं कि उनको जानते हैं कि नहीं.
1: हाँ, so वो हम
0: See, कैसे? It's a belief. You know, normally people say, I believe in God. आप ये कभी नहीं कहते कि I believe in my parents. You never say that. I believe in my parents. No, they are my parents. It's the truth. You know, हम कभी नहीं कहेंगे हम अपने पेरेंट्स में मानते हैं. हम अपने पेरेंट्स को जानते हैं, हम अपने पेरेंट्स को पहचानते हैं, और हम अपने पेरेंट्स का अनुभव करते हैं हर क्षण. क्या उसी तरह हम परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, और हर क्षण वो अनुभव करते हैं कि हम वो हमारा माता पिता है. सवेरे उठकर सिर्फ मात्र कह देना कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, वो काफी नहीं है. क्या हर पल एक बच्चे को तो हमेशा ये अनुभव होना चाहिए ना कि मेरे पेरेंट्स आर फॉर मी, तो क्या वो अनुभव हो रहा है?
1: That हम कर सकते हैं
0: क्या अभी वर्तमान समय हो रहा है? फर्स्ट दैट आई हैव टू आस्क मायसेल्फ.
1: आई डोंट थिंक फॉर टू मी इट्स नॉट, यू नो, बिकॉज टू मी इट इज, क्योंकि कई बार वो एक किसी रूप में अगर हम उनको इमेजिन करते हैं, कई बार एक पावर के रूप में, कई बार एनर्जी के रूप में, कई अलग अलग रूपों में. मुझे लगता है कि हम में से कई,
0: अभी आपने कहा हम उनको इमेजिन करते हैं. आप अपने पेरेंट्स को कभी इमेजिन नहीं करते. दिस इज वेयर इट इज, हम इमेजिन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम उनको जानते नहीं. अगर आप मुझे अभी कहें कि मिस्टर सो एंड सो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनको नहीं जानती, तो मैं इमेजिन करना शुरू करूंगी. देन यू कैन स्टार्ट डिस्क्राइबिंग कि वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं. बट फॉर मी इट इज एन इमेजिनेशन. लेकिन फॉर यू आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप उनको जानते हैं, आप उनको अनुभव करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक इमेजिनेशन है. आई कीप इमेजिनिंग. अब जो चित्र मैं इमेजिन करके क्रिएट कर दूं वो शायद रियलिटी नहीं होगा. और इमेजिन करने से वो चित्र बन जाएगा लेकिन उसके साथ वो
1: रिश्ता
0: नहीं बनेगा. तो अभी भी और मेजोरिटी हम ये कहेंगे आई इमेजिन गॉड टू बी लाइक दिस.
1: नहीं तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि मैं अगर जानना चाहती हूं परमात्मा को और आप मुझे बताएंगी, तो अगेन मैं भी तो एक इमेजिन ही करूंगी.
0: आई विल नो, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स. इमेजिन नहीं आप करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा.
1: अच्छा, अपने आप में
0: यू नो, जैसे हम गिरीश भाई यहाँ आए तो हमने इंट्रोडक्शन किया. लाइक पहले एपिसोड में आपका परिचय बहुत ज्यादा नहीं था, एक इंट्रोडक्शन हुआ. लेकिन इतने दिन की इस यात्रा के दौरान नाउ
1: आई थिंक
0: यू डोंट नीड मी इन बिटवीन, सो इट्स लाइक दिस नाउ. तो फिर आगे का रिलेशनशिप
1: मेरा और उनके ऊपर डिपेंड है.
0: अपने
2: गॉड का भी ऐसा ही है.
1: सो आप गॉड से कौन मिलवाएगा मुझे ये बताइए. हमारे सभी दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि हम परमात्मा से कौन मिलवाएगा.
2: सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, साइकोलॉजी की स्टडी की तो लोगों की साइकोलॉजी को देखता हूँ मैंने. एक तो ऑब्जर्व किया है लोगों को भगवान से कोई रास्ता नहीं, कोई भगवान को मिलना नहीं चाहता है. मिलना चाहते आप? नहीं चाहते. क्यों बताता हूँ पता है? कोई भगवान लोगों को संबंध क्या पता, मेरा काम हो जाए. लोगों को जो भी भगवान कर दे,
1: किसको उनको पता ही, मुझे तो पता ही नहीं था. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम भगवान से मिल सकते हैं एक्चुअली. तो हमने एक वो ही है कि भाई काम करने का एक वो है कि या कुछ कहने के लिए एक भगवान है, लेकिन अगर हम उनसे मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट कैप. आई वुड लाइक टू मीट. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर आउट देयर हु वुड लाइक टू मीट.
2: और रियल नो एक अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए. आज जो वर्तमान हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि भाई मेरा काम हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, जो भी भगवान करा दे. आज कोई एक देवी देवता को आप उसको इष्ट देव मान के पूज रहे हैं, कल दूसरा आपको बताएंगे ये नहीं, ये इसको करो ना तुम्हारे बच्चे का मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, उसको आप छोड़ देंगे. तो इसका मतलब आपका भगवान से संबंध नहीं है, आपका वो आपका स्वार्थ से संबंध. तो पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचमुच हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि भी भगवान से मिलना है. भल थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़े, सही समझ होनी चाहिए, परमात्मा से मिलना है. मेरे कई प्रवचन में

0: ये भी पूछते हैं भगवान कितने हैं। हाँ, कई लोग हमने कई बार देखा है, लोग सो रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जवाब भी नहीं दे रहे पूछो तो। लेकिन जब पूछो ना भगवान कितने को, तो एक है, सारे के सारे बोलेंगे। तो ये पक्का है कि भगवान एक है, पांच तो नहीं है। तो एटलीस्ट ये तो करना ही है कि डेवलप, वो जिज्ञासा डेवलप कर, कि वो भगवान जब एक है तो कहीं ना कहीं गलती है। जब इतना हम ज्यादा मान रहे हैं तो उस एक को ढूंढने का मुझे पुरुषार्थ करना है। बस वो भी अगर हो जाए इस प्रोग्राम से, तो धीरे धीरे आप सत्य के नजदीक जरूर पहुंच जाएंगे।
1: मेरा तो हो चुका है, आई तो रियली वॉन्ट टू मीट, आई थिंक लॉट ऑफ आर व्यूअर्स, एक्चुअली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो जरूर मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज तक हमें अभी एहसास ही नहीं था कि हम मिल सकते हैं,
2: और ये भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मिलना क्यों है। यू नो फादर है,
1: आई वॉन्ट टू मीट माई फादर,
2: राइट। एंड फादर से एक बच्चे को क्या मिलता है? फादर से एक बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है। यू नो जो फादर का है वो सब कुछ बच्चे का ऑटोमेटिकली, जिस क्षण बच्चा पैदा होता है तो घर में कहते हैं वारिस आ गया। अभी वो बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसे टाइटल मिल जाता है कि इस परिवार का वारिस आ गया। जो पिता का है वो बच्चे का है। मेरा पिता शांति का सागर है, मेरा पिता प्रेम का सागर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिवान है, वो प्रेम का सागर है, वो प्योरिटी का सागर है। ये मेरा पिता है और ये सब इसकी प्रॉपर्टी है,
1: वही मैं सब इनहेरिट करूंगा।
2: यू सी इट्स वेरी इजी देन। सो मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क जो अभी तक लग रहा था इतने दिन से कि कैसे अवेयरनेस, फिर कैसे पीस, कैसे हाउ टू रिमेम्बर, इट्स जस्ट कम्स वेरी इजीली
1: बिकॉज इट इज इनहेरेंट। आई एम गोइंग टू
2: अभी क्या, जैसे अगर एक राजा का बच्चा है लेकिन वो बच्चा गुम गया, तो भले वो है राजा का बच्चा, वो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वो सड़क पे शायद कहीं खड़ा हुआ है इस तरह मांगते हुए। जिस दिन वो फिर राजा से मिल जाएगा, तब उसे ऐसे नहीं मांगना है। जिस क्षण याद आ गया कि मैं राजा का बच्चा हूँ, जो राजा का है उस दिन मैं राजकुमार बन गया। तो मैं, हम सब, हर आत्मा जो अपने आप को परमात्मा का बच्चा कहती है, वो परमात्मा, मैं आत्मा, हम उसकी महिमा करते हैं कि आप शांति के सागर हो। तो परमात्मा हमें बहुत प्यार से कहते हैं कि मैं शांति का सागर हूँ। इट्स लाइक इफ यू नो आई एम मिस्टर वर्मा, सो माय सन इज मास्टर वर्मा, सो इट इज आप बच्चे मास्टर शांति के सागर हो। सो दैट इट्सेल्फ, दैट रियलाइजेशन कि मैं परमात्मा का बच्चा, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सेइंग कि मुझे टेंशन हो रही है। तो वो प्रॉपर्टी, अब मैं हूं ही मास्टर शांति का सागर, मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, लेकिन मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं भूल गई थी कि मैं किसका बच्चा हूं। तो मैं कहने लगी एक मिनट की शांति दे दो, एक क्षण शांति से बैठने दो। यू सी फ्रॉम वेयर टू वेयर वी रीच्ड, जिस क्षण वापस याद आया, जिस क्षण वापस वो संबंध जुड़ गया, मैं हूं ही शांत स्वरूप।
1: एक तो मुझे कोई माइथोलॉजिकल कहानी भी आ गई एकदम से कि जब हम याददाश्त खो गए, यू नो कहीं ना कहीं हमने अपनी याददाश्त खोई है कि और अब जैसे ही याददाश्त लौटेगी तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट वी आर, हु
2: एंड वी मीट द फादर। सी इट्स नॉट इमेजिनेशन, अगर ये इमेजिनेशन से होगा तो ये कुछ क्षण एक टेम्पररी एक्साइटमेंट की तरह आएगा, ओ आई एम पीसफुल, यू वोंट फील एनीथिंग। थोड़ी देर के बाद फिर कोई परिस्थिति आएगी एंड आप फिर से वही,
1: you know, तो अगर मैं अपने पिता को याददाश्त भूल गई हूँ, मैं अपने पिता को तलाश रही हूँ, पिता भी तो तलाशेगा।
2: पिता ही आपको तलाश रहा एक्चुअली। परमात्मा खुद ही अपना परिचय आकर बच्चों को देते हैं, हमारे में उतनी ताकत ही नहीं रही है, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे। तो परमात्मा को हम ढूंढ लें, और इतने सालों से क्या, इतने जन्मों से हम ढूंढते आ रहे हैं, हमने कितना ना प्रयास किया है परमात्मा को ढूंढने का, मतलब सालों साल, सौ सौ वर्ष संन्यास, तपस्या, नंगे पांव चलना, हमने सब कुछ किया कि एक क्षण परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। इतनी मेहनत की एक क्षण के साक्षात्कार के लिए, कितना डिफिकल्ट था। और अब जब परमात्मा खुद आकर हमें ढूंढ लेता है, तो वो एक क्षण के लिए नहीं, हर क्षण हमारे साथ होता है, क्योंकि वो हमारा पिता है।
0: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी सेवा केंद्रों पर यही कार्य हो रहा है कि कैसे आज परमात्मा हमको ढूंढ रहा है। और बस हमें एक आवश्यकता है कि उन्हें समझने की, पहचानने की, तो सचमुच हम उनसे भी रूबरू हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि संबंध जोड़ना, डिप्रेशन की हम चर्चा कर रहे थे कई समय से,
1: ऑफ कोर्स द मोमेंट एक्चुअली आई फील सो एलिवेटेड, यू नो द मोमेंट आई फील दैट मेरे तो वो पिता है और मैं उनकी बेटी हूँ, सो आई एम ऑलरेडी यू नो लाइक अबव एवरीथिंग एल्स एक्चुअली।
0: सब संबंध है, सिर्फ पिता का ही नहीं, हम कहते भी ना माता पिता बंधु सखा, सब संबंध है, यहाँ तक कहेंगे कि भी परमात्मा को अपना बच्चा भी बना दो।
1: सारे रिश्ते उसी में,
0: हाँ वो बच्चे तो आपके बहुत बड़े हो जाएंगे, आपने उसको बहुत पढ़ाई की, आईएएस बना दिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े होके उनको कहने में भी शर्म आएगी कि हमारे माता पिता हैं, परंतु परमात्मा को बच्चा बनाओ, हमेशा वो आपकी संभाल करेगा। और अगर वो हो गया तो डिप्रेशन का कारण भी यही है कि संबंधों में डिससेटिस्फेक्शन, पिता और पुत्र के संबंध में कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, पति पत्नी के संबंध में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार मिल जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो थोड़ी गहरी बात है, मैंने तो सिर्फ एक आपको सजेशन दिया है, अभी इस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल, और ये एक एक्चुअली इट्स क्वाइट अ बिग रेवलेशन, क्योंकि एक पूरा एक खुलासा कि जिसे हम सोच रहे हैं कि हम तलाश रहे हैं वही हमें तलाश रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही तो मंजिल है। हम ये कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही सच्चा मिलन है, ये अभी तक सुनी सुनाई बातें थी। आत्मा से आत्मा का मिलन कोई मिलन नहीं हो सकता, इट इज नॉट, ये शाश्वत नहीं होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये एक हम अभी तक मुझे ये लगता था कि ये हम सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं होगा कुछ है सच है, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि इट इज पॉसिबल,
2: इट्स अ रियलिटी अगेन, दिस इज अ रियलिटी जो हम सब अनुभव कर रहे हैं। एंड वी वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि यू नो ये वो समय चल रहा है जिस समय का आज दिन तक हम गायन करते आए थे कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानी होगी तब परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ेगा। हमने हर धर्म शास्त्र में ये पढ़ा, और आज अगर हम चारों तरफ समाज में देखें तो वो धर्म ग्लानी के जो चिन्ह है वो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, और हर एक बच्चे को वो अपना वर्षा देने आए हैं। अब हमारे ऊपर सिर्फ वो एक कदम बचा है जो हम आगे बढ़े और वो सारा वर्षा अपने पिता से ले ले।
1: परमात्मा आ चुके हैं, हमें तलाश रहे हैं, कैसे हैं वो आप, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, किस मतलब कैन वी सी हिम?
2: परमात्मा परम आत्मा, जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, इट्स एनर्जी, इट्स कॉन्शियसनेस, सिमिलरली परम आत्मा, सोल एंड सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल दैट्स यू नो इनकॉर्पोरियल सुप्रीम सोल, कोई कॉर्प्स नहीं है, निराकार, जिसका कोई आकार साकारी शरीर नहीं है, तो वो कोई देहधारी नहीं है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक शक्ति है, जैसे हम एक पॉइंट ऑफ एनर्जी एक लाइट है, तो परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट एक एनर्जी है, लेकिन वो एक बहुत सुंदर रूप से इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना कार्य शुरू करते हैं।
1: ओके,
0: गुरु नहीं,
2: कोई देहधारी नहीं है, इट्स नॉट अ ह्यूमन फिगर,
1: हाँ किसी इंसान या किसी ऐसे प्रतिमूर्ति में नहीं है,
2: हम सब आत्माएं हैं, सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब आत्माएं हैं, और वो परम आत्मा है, तो वो भी निराकार एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है।
0: शिवानी बहन ने जो बात बताई बहुत अच्छी है, अगर गहराई से सोचा जाए तो हर धर्म में यह बात है कि परमात्मा निराकार है, जैसे जीसस ने कहा गॉड इज लाइट, कैसे नूरे इलाही, एक ओमकार निराकार, शिवलिंग की भी बात है भारत में, छोटे छोटे गांव में भी आप देखेंगे, तो सभी धर्म में यह है कि परमात्मा कोई साकारी स्वरूप नहीं, वह निराकार है, उस रूप से उनसे संबंध जोड़ेंगे तो डायरेक्ट शक्ति प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि आज एक्चुअली बाकी सारी बातें जो हम करते आ रहे हैं वो मायने ही नहीं रखती, बिकॉज दिस इज सो लॉजिकल। अगर हम धर्म की बात करते हैं, हम जो इतने वर्षों से जो चली आ रही है बात की सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है कि वो एक एनर्जी सोर्स है, हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि पावर हाउस है या एक ज्योति का एक पुंज है, तो वो कहीं ना कहीं है ये आज लॉजिकली भी सही लगता है, लेकिन अब हमारा उनसे तारुफ कैसे होगा ये हम, क्योंकि सिस्टर शिवानी और डॉक्टर गिरीश पटेल, बहुत अच्छा लगा आज ये जो एक हमारे सामने सच सामने आया है कि परमात्मा आ चुके हैं, हमें खुद तलाश रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस सच का हमें सामना कराने के लिए, इस सच्चाई से हमारा, इस सच्चाई को हमारे सामने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, नहीं मिलना चाहेंगे अपने पिता से? मैं तो जरूर मिलना चाहूंगी, क्योंकि यही वो तलाश थी शायद जो अभी तक हम इधर से उधर, उधर से इधर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहे थे। शायद ये जो कब के बिछड़े हैं हम अपने पिता से, अब जब हमारी उनसे मुलाकात होगी तो कैसा होगा वो रिश्ता, कैसा होगा वो वक्त, कैसा होगा वो समय। इंतजार कीजिए, क्योंकि शायद आने वाली कड़ियों में हम मुलाकात कर पाए, वो जो तारुफ कराने की बात है हमारे अपने परम पिता से वो हो पाए। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है, या आप भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी मुलाकात करनी है, तो आप फोन पर हमसे संपर्क कीजिए या फिर ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो आज इस सच के साथ आपसे विदा लेते हैं कि परमात्मा आ चुके हैं, हमसे मिलने को बेताब है, अब हमें अपना पहला कदम बढ़ाना है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार।
3: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। गोरी हो गोरी फिर ना कहना।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: ये कैसे नापा जाता है? हमारे साथ इसको हम नापते हैं कि हमने हमारे पूरे जीवन काल में कितनी चीजों को बेशकीमती बनाया है, उनकी साधारणता को असाधारणता में परिवर्तित किया है। ऐसे लोग जो कोई भी साधारण सी चीज को अमूल्य बना देते हैं, इनको ही हम कहते हैं सोनार, जो एक पत्थर को तराश करके हीरा बना देते हैं। आज हमारे बीच में यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक ऐसे ही व्यक्तित्व को लेकर के आए हैं जिन्होंने साधारण सी पड़ी जमीन को तराश करके, उस पर मेहनत करके, उसे उपजाऊ बना करके उस धरती माँ का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। साथियों, मैं आपके बीच में आज लेकर के आया हूँ ओडिशा से साबरमती जी को, जिन्हें प्यार से सब साबरमती आपा कहते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। क्यों, क्या, कैसे, ये सब अभी हम उनसे ही सुनेंगे। सबसे पहले साबरमती जी, आपका हमारे स्टूडियो में, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में 90.4 FM को आपने जो समय दिया आज के हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत धन्यवाद आपको, नमस्ते।
3: साबरमती जी, सबसे पहले तो आपके नाम से ही ऐसा लगता है कि आपने पूरे भारत को जोड़ा हुआ है। रहते आप ओडिशा में हैं, नाम आपका साबरमती है जो कि गुजरात में है, साबरमती रिवर के ऊपर नदी का नाम है, एक जगह का नाम है, गांधी जी से जुड़ा हुआ यह नाम है। सबसे पहले मेरी उत्सुकता इस बात में है कि ये बड़ा ही सुंदर सा नाम आपको कैसे मिला, इसके पीछे की कहानी क्या है?
4: कहानी क्या है पता तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने नाम रखा था साबरमती, और जब नारी शक्ति पुरस्कार मिला था 2018 में मार्च में, तो उस समय हमारा जो प्रेसिडेंट थे कोविंद जी, उन्होंने मजाक से ऐसे बोला कि साबरमती पश्चिम से पूर्व कैसे आ गया। पिताजी ने नाम रखा था श्रद्धा से।
3: तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पिता के द्वारा ईश्वर ने एक बहुत सुंदर खेल रचा, जहां पर भारत को जोड़ने का काम करने वाली एक सुंदर सी स्टोरी उन्होंने वीव कर दी, कहानी सुंदर सी बना दी। तो साबरमती जी, थोड़ा हम और पीछे चलते हैं, वहां से शुरू करते हैं, जब आपको क्या लगता है आपके जीवन में कौन सा वो समय था, कौन सा वो टाइम या पहलू था जब आपका जो जीवन है उसका ये आपने एक लक्ष्य लिया कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है, मुझे इस बंजर जमीन को, इस वेस्टलैंड को कुछ एक नया रूप देना है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपको वो इंस्पिरेशन पॉइंट आपके लाइफ में कौन सा महसूस होता है?
4: प्रकृति के प्रति श्रद्धा, मुझे लग रहा है कि मैं पैदा होने से ही था मेरा अंदर, जैसे कुछ भी पेड़ पौधा दिखना, पहाड़ नदी तितलियां या फल फूल ये सब दिखना मुझे हमेशा पसंद आता था। इसे नहीं कि कहीं बाहर से श्रद्धा करना प्रकृति को ये मिला मुझे, ये अंदर ही था। लेकिन मैं इसके ऊपर जो काम कर रही हूँ, कैसे शुरू हुआ कि पिताजी प्रोफेसर राधा मोहन, वो भी पद्मश्री अवार्डी है, उन्होंने पर्यावरण का सुरक्षा के लिए बहुत ही काम किया, अलग अलग क्षेत्र में भी, शिक्षा स्वास्थ्य पानी ये सब क्षेत्र में भी काम किया था। तो वो सोच रहे थे, उनको लगा कि 40 साल पहले कि हम जिस दिशा में जा रहे, जैसे हमारा खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे, तो हमारा भविष्य अंधकारमय होता है यदि हम उसका रास्ता बदल ना दे। तो ये जो खोज था उनका कि हम कुछ करके दिखाएंगे, वो तो बोलते थे मैंने बहुत सारे काम किया, जैसे जंगल की सुरक्षा के ऊपर बहुत सारा काम किया उन्होंने राज्य में, तो आज भी लोग उनका अवदान याद रखते हैं। तो वो ढूंढ रहे थे कि हमको ऐसे एक मैंने करके दिखाना चाहिए जी पूरा जैविक उपाय में। उस समय तो आज तो लोग विश्वास नहीं करते थे, करते हैं फिर उस समय तो छोड़ो मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि जैविक उपाय में कुछ संभव हो सकता है कि करके। तो वो सोच रहे थे हम जैविक उपाय में हम यदि दिखाएंगे लोगों को कि ये संभव हो सकता है, हम कोई भी जहरीला चीज इस्तेमाल ना करके हम खेती कर सकते हैं और उससे

0: खाद्यान्न पैदा होगा, ना प्रकृति का विनाष्ट करता है, ना मनुष्य का शरीर के लिए कुछ बीमारी पैदा करता है। तो इसे हमको अमृत गुण वाला खाद्यान्न चाहिए एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए। तो ये खोज से हमारा जो चिंता था कि कुछ करके दिखाएंगे, तो उन्होंने अभी जो जगह में हमने संस्था संभव करके संस्था बनाया, वो जगह के बारे में उनको जानने के लिए मिला। तो मुझे भी लग रहा था कि हम भी कुछ करें। तो श्री अरविंद आश्रम का ग्लोरिया लैंड फार्म करके था, वहां मेरा 19 साल में ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रेनिंग हुआ था। उस समय मुझे कुछ बिल्कुल पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। मैं श्रद्धा से पेड़ पौधा में पानी देती थी, माँ के साथ ये सब काम करती थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली खेती करने का काम नहीं किया था। उस समय तक पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद नौकरी भी किया ब्रीफ टाइम के लिए, थोड़ी समय के लिए। ये जगह के बारे में पिताजी को पता चला। उससे पहले ढेंकनाल करके डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, वहां बहुत काम किया था उन्होंने। एक अच्छा नदी के किनारे लोगों ने बहुत अच्छा जमीन 150 एकड़ का मुफ्त में दे रहे थे। उन्होंने बोला कि सर आप जो करना चाहते हैं इधर कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर बोला अच्छा लोग है, अच्छा मिट्टी है, पानी भी अच्छा है, तो सब चीज तो अच्छा है, हम सीखेंगे क्या इससे। तो वो एक आशाहीन, जिससे मैंने जिसे हम आशा होपलेस लैंड कहते हैं, जो मैंने कुछ होगा नहीं, लोगों का विश्वास नहीं होगा तो इधर कुछ हो सकता है, इसी जगह को ढूंढ रहे। तो ये जगह के बारे में उनको पता चला, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ काम शुरू करेंगे। पास का गांव में एक मीटिंग हो रहा था, 20-25 गांव का लोग आए थे इकट्ठा, और कुछ सरकारी ऑफिसर लोग थे, पिताजी थे, हम लोग भी थे। और उनका जो पूरा बातचीत जो डिस्कशन था कि दो चीज, एनवायरमेंटल इश्यूज और जेंडर इश्यूज, उनके बारे में पूरा उनका डिस्कशन था। तो मीटिंग के पूरा बाद मैंने खत्म होने के बाद गांव का एक व्यक्ति, उन्होंने खड़ा होके बोला आप लोग सब शहर से जो बोले अच्छा सुनाई देता है, लेकिन ये असंभव बात है। तो इसलिए पिताजी ने बोला कि ठीक है हम संभव करके दिखाएंगे, ये नाम उससे आया। और मैं उस समय से सोच रही थी कि मैं भी पूरा समय इधर दूंगी, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, पढ़ाई खत्म किया और 2 साल के लिए थोड़ा टाइम के लिए नौकरी किया और छोड़ के 93 में आ गई। और ये संस्था रजिस्ट्रेशन हुआ था एक, तो मैं तब से पेन एंड पेपर में थी और मेंबर थी और आना जाना करती रहती थी, लेकिन रहना शुरू 93 से। और तब से संकल्प लिया कि मैं इधर ही रहूंगी और जो भी करूंगी प्रकृति के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए करूंगी, मेरे से जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी।
1: सुनते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सिनेमा की कहानी सुन रहा हूँ, या मैं कोई एक ऐसी कहानी सुन रहा हूँ जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिसने इस कहानी को जिया है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी आपकी इस कहानी में ही मुझे कुछ सवाल ऐसे लगते हैं जिनके थ्रू हम थोड़ी और गहराई में जा सकेंगे। पहली चीज तो ये साबरमती जी की, मतलब ये जो धरोहर है, जो प्रकृति के प्रति श्रद्धा है, जो आपने, मैंने बहुत सुंदर ये शब्द आपको यूज करते हुए सुना, श्रद्धा। जनरली ये श्रद्धा लोग केवल मंदिरों में, मस्जिदों में या भक्ति भावना के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल मैंने बहुत कम लोगों को करते सुना। आपके लिए श्रद्धा और ये प्रकृति का कनेक्शन क्या है?
0: जहाँ श्रद्धा होता है तहाँ वहाँ कनेक्शन तो होता है, संपर्क तो हो जाता है, संपर्क होने से ही श्रद्धा उत्पन्न होता है। और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रकृति के अंदर में इतना छोटा सा बिंदु है, और पूरा प्रकृति मेरे अंदर है और मैं प्रकृति के अंदर हूँ। एक दूसरे को जब तक ऐसे नहीं देखते तब तक ये श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं होता है। जैसे लोग भगवान को, जो जो धर्म में भी हो, भगवान को जब विश्वास करते तब ऐसे भावना पैदा होता है कि श्रद्धा करना। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक सुंदर भावना है। और मैंने हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ये होता है, लेकिन कोई एक्सप्रेस करते है करते नहीं है। कुछ लोग जैसे बच्चे तितली के पीछे दौड़ते हैं, कोई फूल को देख के खुशी होते हैं, कोई नदियां पानी समंदर पहाड़ चढ़ने में खुशी जो होता है, तो वो श्रद्धा में परिवर्तन हो जाता है ये लंबा समय तक जब खुशी बना रहता है। आपके अंदर प्रकृति और प्रकृति के अंदर आप, ये जब भावना पैदा होता है तब श्रद्धा बन जाता है।
1: इतनी खूबसूरती के साथ आपने जो ये बात कही कि प्रकृति का हम एक अभिन्न हिस्सा है, प्रकृति हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, जब इस बात का एहसास हो जाता है तब श्रद्धा स्वाभाविक हो जाता है और वो खुशी लंबे समय तक जीवन में बने रहे इसके लिए वो श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जो भी आज आप सुन रहे हैं साबरमती जी को, मुझे लगता है इतने छोटे से जवाब में उन्होंने आपको आपके जीवन का वो बाल्यकाल याद दिला दिया, जहां पर आप तितली के पीछे दौड़ रहे थे, या जहां पर पहाड़ों को देख करके आपको आश्चर्य महसूस हुआ कि कितना बड़ा ये पहाड़ है। हर वो एक्सपीरियंस आपके सामने रिपीट हो गया होगा जब साबरमती जी कह रहे थे, मेरे सामने तो हो ही गया। लेकिन जो बात मुझे इनके इस उत्तर से बहुत अच्छी लगी दोस्तों, वो याद रखने लायक बात कि जहां कनेक्शन है वहां तो श्रद्धा होगा ही। और ये जो इनका मानना है कि हर एक के अंदर वो श्रद्धा होती है किसी न किसी चीज के प्रति, उस श्रद्धा को एक बड़ा आकार देना वो प्रकृति के सानिध्य में आने से सहज हो जाता है। तो प्रकृति का सानिध्य साबरमती जी आपके साथ था ही, आपने बताया कि आप अपने माता पिता के साथ मिलकर के प्रकृति के साथ प्रकृति की देखभाल करते थे। जब युवा अवस्था में लोग होते हैं तो उनका ध्यान वो धन संपदा ऐशो आराम इसकी तरफ होता है, स्टेबिलिटी की तरफ लोग ज्यादा सोचते हैं। तो आपने एक हार्ड रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता चुना जहां पर शायद पैसा भी कम है ना, स्टेबिलिटी भी कम है, मेहनत बहुत ज्यादा है। तो आपके मन में क्या बात चल रही थी, कैसे आपने इस रास्ते को चुन लिया?
0: हाँ, थोड़ी दिन के लिए तो नौकरी किया था, पैसा भी कमाया था मैंने, लेकिन उस रास्ता में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया तो रिजाइन कर दिया नौकरी से। 92 एंड में, 93 में इधर आके रह गया। बीच में थोड़ा दिन वॉलंटियरिंग किया था दंगा पीड़ित लोग जो थे भोपाल में उनके लिए, पर बाद में फिर इधर आगे रहने के लिए संभव में। तो काम को कभी हार्ड वर्क नहीं समझा, चैलेंजेस आते रहते। और मैं जिस समय के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा समय में जब युवा अवस्था में, तो बहुत जल्दी शादी वादी का बात, मैंने लड़कियों का बहुत जल्दी शादी हो जाता था, बैचलर्स मास्टर्स इसके बाद बहुत जल्दी शादी कर लेते थे। और कुछ मैंने अच्छा जगह में रहना, पैसा कमाना, ये सब सपना बहुत ही कॉमन था, लेकिन वो कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाया ये कॉमन चीज। और मैं हमेशा ऐसे, आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विथ ए बटरफ्लाई अगेन, तितली जैसे घूमना देखना सब, ये सब बहुत पसंद करती थी और चैलेंजेस लेना पसंद करती थी। मेरा जीवन इतना साहस भी नहीं था, बहुत चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन यहाँ जो आई काम करने के लिए, मैं कभी हार्ड वर्क नहीं सोचा। काम करते करते वो चला गया, कैसे समय पता भी नहीं चला। और कभी जो नौकरी से रिजाइन किया 92 में, उसके बाद कभी सोचा नहीं था पैसा रोजगार करने के लिए कुछ और दूसरा नौकरी करूं। अभी भी संस्था में मैं नौकरी ही नहीं कर रही हूँ, वॉलंटियरिंग कर रही हूँ तब से। और आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मेरा माँ बाबा और मेरी बहन, ये सब लोग मुझे सपोर्ट किया और संस्था भी सपोर्ट किया, तो इसके लिए मैं आज काम कर पा रही हूँ। और मेरा जो पहले ट्रेनिंग था उद्देश्यरी में, ग्लोरिया फार्म में, वहां का जो मैनेजर थे, उन्होंने बहुत मुझे बहुत श्रद्धा कर रहे थे। वो बताया था मुझे कि किताब पढ़ के कहीं जाके मत बोलना कि मैं खेती कर रहा हूँ, जैविक खेती कर रहा हूँ, जब तक एरिया फटा नहीं और ब्लिस्टर्स नहीं आया हाथ में, स्किन काला नहीं हो जाता, चमड़ी काला नहीं हो जाता, आंखों के नीचे काला नहीं हो जाता, तब तक नहीं जाके किसी को बोलना कि मैं खेती कर रहा हूँ। सो दैट वाज द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, यू नो, कि आई वाज अवेयर दैट व्हेन यू वर्क इन दिस फील्ड लाइफ इज नॉट इजी, मैंने इतना सहज नहीं, जीवन इतना सरल नहीं है, लेकिन काम करते करते कैसे समय गया मुझे पता नहीं चला कि कभी हार्ड वर्क किया था करके। लेकिन जैसे कभी कभी दुख होता है, जैसे बहुत गर्मी हो रहा है, पेड़ पौधा के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तूफान से पेड़ टूट रहा है, ये सब देख के थोड़ा दुख होता है।
1: मुझे आपका ये जवाब सुनते हुए बहुत सारा अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था कि जब आपने कहा कि मैं एक तितली की तरह हूँ, जो कि हर अलग अलग डाल में जाना, फ्री रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे में जब कोई व्यक्ति बहुत फ्री स्पिरिटेड होता है, बहुत उन्मुक्त होते हैं, उनको कहीं पर भी बंधे रहना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आपका तो सेवा ही ऐसा है कि जो आपको एक जगह पे बहुत लंबे समय तक डेडिकेटेडली रहना पड़ता है। तो वो तितली वाली साबरमती और ये जो डेडिकेटेड साबरमती है, इसके बीच में आपको सच में बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे लगता है।
0: कभी कभी बंदर भगाने में जब दिक्कत होता है तब चिढ़ जाती हूँ कि इतना काम करना पड़ता है बंदर भगाने में। अदरवाइज आई एंजॉय माई वर्क।
1: वाह, तो ये जो आपने बात कही कि आपको बंदर भगाने में बहुत मेहनत लगता है, ये हमारे जो श्रोता साथी सुन रहे हैं आबू में, उनको तो इस चीज का बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि माउंट आबू में भी और आबू में भी बहुत बंदर होते हैं। कई बार वो थोड़े फ्रेंडली होते हैं तो बात सुन लेते हैं, नहीं तो उनको भगाने में हमें भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक और बात जो मैंने आपकी इस चर्चा से, आपके इस जवाब से अनुभव किया, कि आप वास्तव में प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जहां बहुत प्यार होता है वहां ही समर्पण की भावना होती है, वहां ही डेडिकेशन भी होता है, वहां ही दिल जान और पूरी शिद्दत से व्यक्ति कोशिश करता है कि जिसको वो प्यार करता है उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। तो ये जो प्रकृति के प्रति आपका प्यार है, ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो आपने
0: जी
1: कहा कि आपके टीचर ने इतनी अच्छी बात आपको बताई कि किसी को जाके ये नहीं कहना कि किताबें पढ़ करके मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग आई, खेत में उतर के मेहनत करके जब तक एड़िया ना फट जाए तब तक, मतलब कहने का भाव ये है कि एक तपस्या जो है वो कर्म करने से ही उसका लाभ मिलता है, केवल बातें
0: जी
1: करने से नहीं होता है। तो
0: जी
1: दोस्तों, हमारे जीवन में भी जो भी आज आप सुन रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन का ये टाइम है। साबरमती जी के जीवन से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि एक होता है थियोरिटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आइए एक दूसरे को हम ये सवाल पूछें कि जो भी अच्छी बातें हमने सुनी हैं, समझी हैं, उसको जीवन में प्रैक्टिकल में कितना उतारा है। और जैसे उन्होंने कहा कि मेहनत नहीं मोहब्बत है, इस वजह से मेहनत मेहनत नहीं लगती। तो क्या मैं मेरे पेशे से, मेरे काम से, जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं गृहिणी हूँ, घर का देखभाल करती हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, या मैं एक रोजगारी कामकाजी व्यक्ति हूँ, मैं अपने पेशे से कितना प्यार करता हूँ? साथियों, ये सवाल आपके लिए है, लेकिन वापस आते हैं साबरमती जी के पास एक और सवाल लेकर के। साबरमती जी, जैसे आपने बताया कि आप एक तितली हैं और प्रकृति के बीच में रहना आपको पसंद है और लोग आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, साबरमती से साबरमती आपा बनने का सफर क्या है? लोगों ने आपको आपा बोलना क्यों शुरू किया?
0: हाँ, अप्पा हमारे भाषा में इधर अप्पा का मतलब एल्डर सिस्टर होता है, बड़ी बहन। तो एक्चुअली मैं जब इधर आई थी और मेरे साथ जो काम कर रहे थे लड़कियां वो सब बहुत कम थी, तो गांव में जब जाते थे तो थोड़ा दिक्कत होता था लोगों के साथ, जब कम्युनिकेट कर रहे थे तो कैसे एड्रेस करेंगे। और मैं सबको, मुझे लगा कि पता नहीं कैसे ये भावना आ गया मन में, जैसे एक मदरली फीलिंग होता है, मैं सबको अपना बच्चा जैसे ऐसे बोलती थी कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे महिलाएं हैं, सबको अपना बच्चा जैसे ऐसे बोलती थी। तो उन्होंने ही मुझे आपा बोलना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों किया, लेकिन उनको लग रहा था कि वो एक एक टाइप का एड्रेस होता है नाम लेके, या तो बहुत जो बुजुर्ग लोग होते, मुझे जिया जिया मतलब बेटी बेटी बोलते थे और बाकी सब लोग आपा बोलते, बच्चे भी, उनका माँ लोग भी, उनका माँ भी, सब लोग आपा बोलना शुरू कर दिया। ऐसे अपने आप आ गया था लोगों में, और
1: मैंने इसलिए
0: यहाँ टीम में भी सब लोग वही आपा बोलते
1: जी, मैंने आपको ये सवाल इसलिए
0: हैं।
1: पूछा क्योंकि दोस्तों, अगर आप साबरमती के नाम से गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत साबरमती मिलेंगे, लेकिन अगर आप साबरमती आपा टाइप करेंगे तो आपको केवल हमारी साबरमती आपा ही मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है जी, जो लोगों ने आपको ये आपा का टाइटल दिया, मतलब बड़ी दीदी का टाइटल दिया, हम भी देखते हैं कि बड़ी दीदी का जो रोल होता है वो बहन का रोल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ एक माँ का रोल भी होता है। बड़ी दीदी जो है बहन की तरह दोस्त भी होती है, लेकिन माँ की तरह पालना देने का ताकत रखती है। तो ये जो आपने रोल निभाया है, एक दोस्त का, एक माँ के रीति बच्चों को संभालने का, लोगों को समझाने का कि माँ प्रकृति के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। इस रोल के लिए आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये रोल हमेशा ऐसे ही यूं ही चलाते रहे और यूं ही अच्छे से लोगों के बीच में जाकर के लोगों को प्रकृति के बीच में लाने का प्रयास जो आप कर रहे हैं वो ताउम्र आप करते रहे, ये हमारी शुभकामना है। एक और सवाल यहाँ मेरे मन में आता है कि आपने एक बंजर जमीन को एज अ केस स्टडी लिया, मतलब अगर मुझे कहा जाए कि भाई आपको कुछ करना है तो मैं तो शायद बोलूंगा हाँ ये मेरे को कंफर्टेबल लगता है, ये फिजिबल लगता है ये संभव है तो इसमें ही जाना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है वो संभव कितना है वो उसके आधार पर उसको चुनता है, बट आपके पिताजी ने या आपने जो असंभव है उसको संभव करने का चुना। लोग अच्छा जमीन ढूंढते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, आपने ढूंढा तो ढूंढा बंजर जमीन ढूंढा, तो इतना हिम्मत कैसे आया?
0: इसके बारे में हम सोच रहे थे, जो मैंने खाद्यान्न में बीस मैंने जहर डालने का जो व्यवस्था, केमिकल एग्रीकल्चर का जो व्यवस्था, उसके बारे में, और एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में सोच रहे थे। वो सोच बहुत ही स्ट्रांग था। जो चीज खराब हो गया उसको हम फिर एक बार ठीक से फिर कर पाए तो लोगों को और हमको के लिए मिलेगा। अच्छा जमीन में तो अच्छा होगा ही, इससे मैंने डाउट ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जिस जगह में होगा नहीं लोग सोच रहे वहां हम कर पाएंगे, तो कहीं हो लोग प्रयास करेंगे तो संभव हो पाएगा। और यहाँ हम बहुत अलग अलग किस्म का पेड़ पौधा लगाया, इसने कि बहुत सारे लोगों ने भी प्रयास किया बंजर जगह जमीन में कुछ लगाने के लिए। ऐसे नहीं कि हम पहली बार कर रहे, जैसे महाभारत में भी उसका इंद्रप्रस्थ का जो उदाहरण है वो तब से है, तो ये पहली बार हम नहीं कर रहे। लेकिन अब यदि इस टाइप का जमीन में कर पाएंगे कि जो लोकल लोग बोल रहे कि असंभव है, इसका मतलब है कि आप कहीं भी जाएंगे इस टाइप का जमीन मिलेगा आपको, तो आपको आशा होगा कि नहीं ये हो सकता है, इसमें फिर जीवन वापस आ सकता है।
1: आई थिंक ये जो आपने बात कही कि अच्छे के साथ अच्छा होना ये तो साधारण बात है, कोई साधारण सी चीज को असाधारण बना देना इसमें मेहनत लगती है। और जैसे कि आपने किया कि एक बंजर जमीन को आपने बेशकीमती जमीन बना दिया, उसमें जो आशा लोग खो चुके थे उस आशा को आपने वापस लाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली जो आपने बात कही कि होप को नहीं छोड़ना चाहिए, आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वही आपको मदद करती है आगे बढ़ने में। थोड़ा सा हम टेक्निकल सवाल करते हैं, जैसे आपने बताया कि बंजर जमीन थी उसमें आपने कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए, तो आपने चूंकि पढ़ाई की हुई है, आपने ट्रेनिंग ली हुई है, साथ में आपका प्यार भी है, क्या कोई श्रोता आज जो हमारे साथ सुन रहे हैं उनके आसपास में अगर उनको एक छोटा सा जमीन दिखता है या उनकी खुद की भी जमीन होगी और उसमें अगर वो कुछ नया करना चाहते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करना चाहिए उन्हें?
0: पहला मैसेज ये होगा कि मैं करना चाहता हूँ, ये स्टेप पहला चीज होता है। जो करना चाहता हूँ ये मन में ये संकल्प आ जाए तो कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं कि कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए, अपना जो सपना है मन में, अपना जो एक इच्छा है कि मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो संकल्प से फिर आपका आगे आप काम कर सकते हैं। ज्ञान के लिए किसी को मैंने वेट करने का नहीं चाहिए कि मैंने भी पढ़ाई नहीं किया एग्रीकल्चर साइंस में, पिताजी ने भी पढ़ाई नहीं किया एग्रीकल्चर साइंस में, तो ये पढ़ाई करके एग्रीकल्चर करेंगे, इसके लिए कोई वेट करने का जरूरत नहीं है। पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि मैं करना चाहता हूँ ये संकल्प, फिर उसके बाद आप आसपास का गांव का लोगों का मदद ले सकते हैं, किताब का मदद ले सकते हैं। आजकल तो YouTube में बहुत सारे चीज मिलता है, देख सकते हैं। धीरे धीरे आपको आ जाएगा, करने का तरीका आ जाएगा।
1: तो दोस्तों आपने सुना कोई भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी नहीं है, जरूरी है

0: पूछने का मन करता है कि आप 92 से 2022, 23, एक बहुत लंबा अरसा है, आपने एक जमीन को ऑलमोस्ट एक जंगल का रूप दे दिया है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस इतने बड़े समय में कोई एक घटना, कोई एक किस्सा, एक कहानी ऐसी आपके जहन में आती हो जो आप हमारे श्रोता साथियों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो एक मेमोरेबल इवेंट हो, वो कौन सा इवेंट होगा?
1: एक बार एक प्रोफेसर आए थे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो वो सब घूम के देखने के बाद फिर मुझे पूछा कि क्वेश्चन पूछा, डोंट यू फील इंटेलेक्चुअली बैरन, हाउ डू यू स्पेंड टाइम हियर। उस समय हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, रनिंग वाटर नहीं, टॉयलेट नहीं, से कुछ नहीं था। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आप जब प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं, ये प्रश्न मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि इंटेलेक्चुअली बैरन कैसे एक व्यक्ति फील कर सकता है, इतना सीखने के लिए है। दूसरा था कि बहुत सारे ऐसे अनुभव है, जब 99 में सुपर साइक्लोन हुआ था तब इतना सारा पेड़ पौधा गिर पड़ा था, तो देख के बहुत रोना आया मुझे, मैं सहन नहीं कर पाया। कभी कभी लोग आग भी लगा दिया था इधर, ये सारे छोटे छोटे घटनाएं बहुत आघात दिया मन में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, ये नेचर का पार्ट है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली।
0: ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे भी हैरानी हुई जब आपने ये एक्सपीरियंस शेयर की कि इंटेलेक्चुअली बैरन मतलब साधारण शब्दों में दोस्तों, इंटेलेक्चुअली बैरन मतलब कोई भी चीज से ऊब जाना। आपकी बुद्धि जो है, आप अपनी बुद्धि को सतत न्यूट्रिशन या भोजन नहीं दे रहे हैं जिससे बुद्धि एक्टिव रहे। पर साबरमती जी का वही कहना था कि प्रकृति में इतना कुछ है सीखने को कि आप खाली कैसे बैठ सकते हैं, आप ऊब कैसे सकते हैं, बोर कैसे हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, जो कि मुझे भी और मैं समझता हूँ मेरे सभी श्रोताओं को ये महसूस कराएगा कि सीखने को बहुत कुछ है, बस प्रकृति में जाने की बात है, देखने की बात है, गौर करने की बात है। साबरमती जी, जब आपको सबसे पहले तो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, फिर पद्मश्री पुरस्कार, तो ये जब पुरस्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, तब आपको ऐसा लगा कि आपके कार्य को लोग समझ रहे हैं या आपको लोग ज्यादा समझ रहे हैं, और आपके सामने जो परीक्षाएं आ रही हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं, ऐसा कुछ डिफरेंस फील हुआ आपको?
1: मैं थोड़ा बचपन के टाइम के बारे में भी ये संदर्भ में बोलना चाहती हूँ। जब छोटे थे, स्कूल में थे, तब बहुत इच्छा था कि हम हमको फर्स्ट प्राइज मिले डिबेट में, एसे में, पेंटिंग में, ये सब। जब सेकंड हो जाती थी तो तब मन दुख होता था। जब प्राइज लेके आते थे फर्स्ट सेकंड जो भी हो स्टेज से, तब बहुत खुशी लगता था। लेकिन अब भी जो नारी शक्ति हो या पद्मश्री, हमको आज तक भी पता नहीं किसने हमारा नाम रेकमेंड किया, क्योंकि एज ए पॉलिसी, एज ए प्रिंसिपल, ना संस्था ना व्यक्तिगत रूप से हम कोई भी अप्लाई नहीं करते कोई पुरस्कार के लिए। तो जब आया तो मुझे लगा कि ये फेक कॉल था, विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे क्यों कोई ये पुरस्कार देगा, क्योंकि कभी अप्लाई नहीं किया था, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं था कि बायोडाटा दो ये वो करके। लेकिन बचपन में जो जो भावना होता था पुरस्कार मिलने के टाइम में, वो भावना अभी नहीं था मेरे मन में। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी काम इन साइड मी, बहुत ही पूरा शांत थी अपने अंदर। लेकिन ये लगा कि एक मेरे ऊपर जो आशा था लोगों का, वो बढ़ गया है, मुझे और भी ज्यादा कुछ करना चाहिए। हमारा कोई अपना अकेला तो कुछ अचीवमेंट नहीं है ये।
0: ये आपने इतना खूबसूरत बात बताया कि अभी ऐसा लगता है जैसे उत्तरदायित्व बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, जिम्मेवारी बढ़ गई है, और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि लोगों की उम्मीद भी आपसे बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप में लोगों को एक आशा की किरण नजर आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप खुद अपने अंदर में एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, बहुत आशावादी व्यक्तित्व है। लेकिन जैसा आपने बताया कि बचपन में आपको पुरस्कार पाने का बहुत खुशी होता था, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा सेटल्ड हैं, इतने उत्सुक नहीं होते, और किसी और ने आपका नाम रेकमेंड कर दिया और आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये है कि

0: अच्छे काम पे लोगों की नजर जरूर होती है, और कोई ना कोई इसकी तालीम रखता है, और कोई ना कोई इसके बारे में किसी ना किसी को जरूर बता रहा है। तो दोस्तों, अच्छा काम करते समय सिर्फ ये याद रखिए, somebody is watching, कोई ना कोई देख जरूर रहा है। ये मत सोचिए कि ये मुझे किसी पुरस्कार या किसी श्रेष्ठ पद पदवी के लिए करना है, सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि ये मेरे दिल को सुकून पहुंचाता है। यही मैसेज शायद साबरमती जी आज हमें दे रही हैं। साबरमती जी, आपके संभव के जंगल में आपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, बहुत सारे विविधीकरण किया है आपने खेती में भी। अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज्यादा फेवरेट पौधा आपका कौन सा है, तो कौन से पौधे का नाम लेंगे आप?
1: मुझे तो कोई एक भी ऐसे नहीं दिख रहा है। मैं सब सब पेड़ पौधा के साथ बात करती हूँ। मुझे सब पेड़ पौधा अच्छा लगते हैं।
0: और अगर फसलों की बात करें तो कोई एक विशेष फसल जो आपको बहुत अच्छा लगता
1: नहीं,
0: है?
1: सब पेड़ पौधा तो अच्छा लगता है। मैं कोई एक का नाम नहीं ले सकती।
0: तो वास्तव में मैं समझ रहा हूं कि आप बेहद प्यार करती हैं प्रकृति से, इसलिए उसमें डिफरेंस नहीं कर सकती हैं, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आज की जनरेशन को आप एक मैसेज देना चाहें, स्पेशली जो युवा वर्ग है उनको एक मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप?
1: युवा वर्ग को एक चीज

0: सबका हम ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, और हम मनुष्य जाति अकेला ही राज करेंगे पृथ्वी के ऊपर, ये संभव नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा। हम सबके साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो यदि हम पर्यावरण का सुरक्षा ना करते हैं तब हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। पर्यावरण के ऊपर हम बोझा नहीं बनना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता में देना चाहती हूँ। हम अकेला राज नहीं कर सकते पृथ्वी के ऊपर, ये मुश्किल है। दूसरा चीज है खाद्यान्न के बारे में। मैं आपके साथ थोड़ा मैंने प्रश्न के माध्यम से इसका उत्तर देना चाहती हूँ। हम जितने भी धनी है, मानी है, ज्ञानी है, गुणी है, बहुत ही क्षमताशाली है, फिर भी सुबह सुबह हम जब भी उठते हैं हमको 3 बार तो खाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के नाश्ते में हम लोग हमारा ज्वेलरी नहीं खा सकते, दोपहर को बैंक बैलेंस में जितना पैसा है खा नहीं सकते।
1: ये आपने बहुत अच्छा बोला कि सुबह को आप ज्वेलरी और दोपहर को बैंक बैलेंस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
0: रात को महंगा गाड़ी खा नहीं सकते, हमको खाना ही खाना चाहिए। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा एक बात करना चाहते हूँ। जो 3 बहुत ही प्रमुख चीज हमको जिंदा रहने के लिए चाहिए, वायु, जल और खाद्यान्न। वायु जल हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, प्रकृति ने हमको अपने आप दिया है ये सारे उपहार जिंदा रहने के लिए। और खाद्यान्न हम कुछ संग्रह करते हैं, जैसे नदी से मछली, जंगल से कुछ फल, इसे संग्रह करते और उगाते भी है।
1: जी
0: तो जो कम से कम हम तो 3 बार खाते सुबह, दोपहर को, रात को। साधारण लोगों के बारे में बोल रही हूँ, मैं कोई सन्यासी योगी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो 3 बार जो खाते है, साल में कितना दिन होता है?
1: 365 दिन।
0: 365 दिन गुना 3, बताएंगे
1: जी
0: कितना आया?
1: 365 और 3 बार अगर हम भोजन करें तो 1095, मतलब 1095 टाइम्स।
0: हाँ, 1095 था। आपका उम्र अभी क्या होगा?
1: मैं 34 इयर्स का हूँ, 34 साल।
0: जिंदगी में, हाँ, जिंदगी में पहला साल ज्यादा चीज हम बाहर से नहीं खाते, तो 33 साल हम लेंगे।
1: जी।
0: तो 33 गुना 1095
1: ये आता है 36,135, मतलब 36,135। वाओ,
0: 36,000 से ज्यादा टाइम आपने खाया। मैं 6,000 से ज्यादा जो है उसको मैंने कट कर देती हूँ। कभी गुस्सा होके नहीं खाया होगा, कभी तबीयत खराब है नहीं खाया होगा, कभी खाने के लिए नहीं मिला होगा, मीटिंग में व्यस्त है, तो बहुत सारे कारण होता है। तो बाकी रहा 33,000 टाइम आपने जो खाया जिंदगी में। अब मान लीजिए भोजन में हर टाइम में जहर हम खाते रहेंगे तो क्या हालत होगा? अभी जो हम जहरीला चीज खा खा के हर घर में, अब मैं जो बीमारियां बोल रही हूँ, कम से कम एक तो मिलता है जरूर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये और किडनी फेलियर, ये 7 जो शत्रु है हमारा, हर घर में किसी को कम से कम एक ना एक तो होता रहता है। तो हम जहर खाएंगे कि खाद्यान्न खाएंगे उसका विचार करना है, और कितना दिन तक ये चलता रहेगा। तो यूथ जो है, यूथ एक ऐसे स्टेज पर, युवा वर्ग ऐसे स्टेज पर होते जिनको मैंने समझ में आ सकता है कि उनका भविष्य क्या है। वो बहुत छोटे बच्चे नहीं है, उनको समझ में आ सकता है। यदि ये बात ये समझ जाएंगे, 33,000 बार मैं खा रहा हूँ तो अच्छा चीज खाना चाहिए, और जो अच्छा चीज खा रहा हूँ उसको उगाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल्फ लाइफ के लिए केमिकल डालते रहूंगा तो पर्यावरण का भी नुकसान होगा और मेरा खुद का भी नुकसान होगा। तो ये करने नहीं देंगे हम, जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे, ये संकल्प मन में आएगा ना, तो ताकि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और अमृतमय खाना होने से अपना जीवन भी अमृतमय बना सकते, बीमारी से कम तो मुक्ति मिल सकता है।
1: वाह, मतलब मैं तो हैरान हो चुका हूं कि ये इतना अहम चीज, मतलब मुझे भी समझ है कि भाई हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, ऑर्गेनिक भोजन में हमारे लिए ज्यादा बेहतर पोषक तत्व हैं, लेकिन इस पहलू को मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं ऑर्गेनिक भोजन या जैविक भोजन नहीं कर रहा हूँ या शुद्ध भोजन नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने अंदर जहर की मात्रा को धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, और ये कहाँ तक जीवन के लिए सुखदायी है। दोस्तों, ये जो छोटा सा एक एक्टिविटी था मेरे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक एक्टिविटी कहूंगा मैं, ये मेरे लिए आप भी करके देख सकते हैं कि आपकी आयु जितनी भी है उसको आप 3 बार भोजन अगर आप कर रहे हैं तो आपने कितना भोजन, अच्छे क्वालिटी का भोजन ग्रहण किया है, ये सोचने का विषय है। और अगर सोचने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को बदलना है, इस नैरेटिव को बदलना है, इस ये जो कहानी चली आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ही क्या, इसको मैं और आप ही बदल सकते हैं, जब हमारे साथ साबरमती आपा जैसे लोग हैं तो क्यों नहीं हम इस कहानी को बदलें, एक नया अंजाम दें, एक ऐसा अंजाम दें जिस अंजाम में मैं भी खुश हूं, मेरा स्वास्थ्य भी खुश है, मेरे परिवारजन भी खुश हैं, और मेरा सबसे बड़ी बात, मेरा समाज, मेरा धरती, मेरी प्रकृति, ये भी सेहतमंद है। इस पे सोचने की बात है। और साबरमती जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे युवा साथियों के लिए, स्पेशली उनके लिए, लेकिन हर एक के लिए एक बहुत अच्छा एक्टिविटी कराया कि जरा सोचिए क्या हम कर सकते हैं अगर हम समझ लें क्या हम कर रहे हैं। तो साथियों, ये चर्चा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है जहां पर साबरमती जी ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे से कुछ सवाल पूछा। साबरमती जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। यहाँ पर आप
0: जी
1: अपने कारोबार के लिए कई बार देश का चक्कर लगाती हैं, देश के अलग अलग तमाम जगहों पे जाती हैं, या आपके पास भी सीखने के लिए संभव में बहुत सारे लोग आते हैं। जहां तक मैंने स्टडी किया, मुझे समझ में आया कि लगभग साल में 2,000 लोग आते हैं संभव के दर्शन करने के लिए। कि क्या संभव में आपने करामात किया है? जब आप इतने लोगों से मिलते हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और जब आप खुद देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कौन सी वो एक बात है जो आपको लगती है कि पूरे भारत में एक जैसी है या भारत को जोड़ती है?
0: एक चीज है कि इसका विविधता, एक दूसरे का विविधता को देखना, प्रशंसा करना, समझना, ये एक चीज मुझे अच्छा लगता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही
0: मैंने
1: कि
0: जो
1: विविधता, और
0: जैसे है
1: विविधता
0: उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना।
1: जी, और जैसे विविधता की आपने बात बात बताई, मैं समझता हूँ प्रकृति में भी ये विविधता का जो नियम है ये बहुत स्ट्रोंग है।
0: जी
1: आपको क्या लगता है भारत को यशस्वी क्या बनाती है, उसकी विविधता या उसकी एकता?
0: विविधता में तो एकता जैसे होना है, नहीं तो इतना पुराना जो है आज कैसे उन्होंने खड़ा है, आज तक भी सर ऊंचा करके कैसे खड़ा है। आप
1: बीच में
0: देखिए पूरा,
1: जी
0: मान लीजिए गुलाब का फूल बहुत लोगों को पसंद है या रजनीगंधा का फूल पसंद है उसका खुशबू के लिए, तो पूरा गार्डन में सिर्फ गुलाब ही होगा और पूरा पृथ्वी में गुलाब ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो मुश्किल बात हो जाएगा। सब चीज का जरूरत है, तो इस हिसाब से हमारा देश में भी इतना सारा भाषा, इतना सारे काम करने का तरीका, लोगों का संस्कृति, ये सारे चीज इतना अलग अलग होता है, एक गांव में भी अलग अलग अलग अलग होता है, तो फिर भी एक साथ सब लोग चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा चल रहा है, फिर भी सब एक साथ चल रहे हैं। कभी कभी तो बुरी हालत तो होता है बहुत सारे चीजों से, लेकिन फिर भी ये सभ्यता तो आज तक खड़ा है उसका विविधता के लिए।
1: तो साबरमती जी, आपके साथ चर्चा करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज का एपिसोड हमें समय की सीमा के हिसाब से रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में कभी आप हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में दोबारा हमें समय दें और हम आपके साथ एक और चर्चा करें जिसमें क्या पता कईयों को आप दोबारा से ये उमंग उत्साह भर दें कि कुछ एक अच्छा संकल्प, एक शुभ संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ सके। लेकिन जाने के पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा, जहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उसका जवाब देना होगा। क्या आप रेडी हैं?
0: ठीक है, पूछिए।
1: ओके, थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: जो आप करते हैं बिना सोच के, कि मैंने वो लोग बोले, सामने वाले जो भी है, प्राणी, व्यक्ति या पेड़ पौधा जो भी है, वो बोले बिना आप उनको समझ के उनका जो चाहत है उसका पूरा करते, तो मुझे लगता है कि वो सेवा है।
1: बहुत सुंदर। मतलब किसी के कहने के पूर्व अगर उसकी जरूरत का निदान हम कर सकें तो वो सेवा है। बहुत सुंदर। शांति क्या है?
0: जो आपको विचलित नहीं करता है, जो चीज वो
1: है
0: अपने अंदर ही ज्यादा होता है। हाँ,
1: जी, शांति अंदर ही होती है और आपको विचलित नहीं होने देता, एक ताकत है। प्रेम क्या है?
0: प्रेम होता है बिना कुछ आशा रख के दूसरे से, आप जो श्रद्धा देते हैं उसको प्रेम कहते हैं। कुछ आशा नहीं रखते कि मैं इतना प्रेम करूं तो मुझे इतना मिलेगा।
1: श्रद्धा क्या है आपके लिए?
0: पूरा समर्पण जो होते हैं, खुशी होते हैं उससे जो करके, वही श्रद्धा होते।
1: प्रकृति क्या है आपके लिए?
0: चारों तरफ प्रकृति है, प्रकृति हमारा हिस्सा है, हम प्रकृति का हिस्सा है, कुछ अलग से नहीं देख पाती उसको। मिट्टी से लेकर आकाश तक सब हमारे लिए प्रकृति है।
1: बहुत सुंदर। संभव क्या है?
0: जो कर पाएंगे उसके लिए आशा रख के करने का, इच्छा रख के करना शुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो संभव है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कोई जो मर गए उनको फिर जिंदा वापस लाएंगे, ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने जो कर सकते हैं, करने के लिए प्रयास करते हैं, उसको संभव बोलते हैं।
1: और संभव जो आपकी संस्था है वो क्या है, अगर एक शब्द में या एक वाक्य में कहना चाहेंगे?
0: इट्स लाइक कल्टिवेटिंग होप, खेती।
1: मतलब आशा का संचार करना, खेती करना, आशा की खेती करना। बहुत सुंदर, वेरी
0: भारत
1: ब्यूटीफुल। भारत क्या है?
0: एक ऐसे नाम है जो मैंने, मुझे तो लग रहा है पर्टिकुलरली हम भारतीय लोगों का जो धड़कन है उसको मैं भारत कहूंगी।
1: इतना सुंदर आंसर मैंने आज तक नहीं सुना कि हर दिल की धड़कन भारत है। वाह, बहुत सुंदर साबरमती जी। आखिरी और सबसे सहज सवाल, साबरमती आपा कौन है?
0: साबरमती आपा मैं हूँ,
1: लेकिन एक शब्द में अगर कहना
0: साबरमती
1: चाहे
0: आपा
1: कौन है?
0: हूँ, साबरमती आपा।
1: वाह, थैंक यू सो मच आपा। सबकी
0: जी
1: आपा है आप साबरमती जी। मतलब जो ये आपका अपनापन है, ये जो आप कि करुणा, दया, ममता और ये जो श्रद्धा आपने हर एक के लिए रखी है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत सात्विक है, बहुत पावरफुल है। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे ही सेवा में, प्रकृति की और लोगों की सेवा में अपने को उन्नति और सेहतमंद रीति से खुद का भी ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। ये हम रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथियों की तरफ से मेरी आपके साथ ये गुड विश कहें, शुभकामना, शुभ भावना कहें, ये आपके प्रति रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आज आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मुश्किलों के बीच में, क्योंकि मुझे पता है आप जहां पर है वहां इंटरनेट की व्यवस्था बहुत कम होती है, बट फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमको समय दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि आप खेती से, जमीन से जुड़ी हुई व्यक्तित्व हैं, इसमें से आपने हमें समय निकाल करके दिया, इसके लिए पहले पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बिल्कुल। साथियों, अगर आप साबरमती आपा जी को सुन रहे हैं और सुनते हुए आपको अपने अंदर में ऐसा एक छोटा सा एक आइडिया आ रहा है, जैसे मुझे आ रहा है कि काश मैं उड़ीसा में होता, काश मैं आपस से मिल पाता, काश मैं संभव में जा करके आशा की खेती देख पाता, तो मुझे लगता है साबरमती जी आपको हमें इनवाइट करना चाहिए। कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या आप बता सकते हैं?
0: मुझे फोन कॉल कर दीजिए, मैं बता दूंगी रास्ता कैसे आना है, कहाँ से आना है। भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर दूरी होता है, भुवनेश्वर बस स्टैंड से। आप कभी भी कोई भी आना चाहते हैं तो सबको सादर निमंत्रण है, और फोन कर सकते हैं, आपके पास तो मेरा फोन नंबर है, तो कोई भी फोन कर सकते, और फिर मैं ट्राई कर दूंगी, मदद करूंगी कैसे आने के लिए।
1: जी साबरमती जी, आप सच में आपा ही हैं, क्योंकि लोग जनरली फोन नंबर देना नहीं पसंद करते, लेकिन आप सच में एक दीदी हैं, इसलिए आप देने में बिल्कुल नहीं कतराती हैं। लेकिन दोस्तों, आपका एक न्योता ओडिशा की तरफ से आया है। आप कभी ओडिशा जा रहे हैं, भुवनेश्वर की तरफ आपका रुख हो रहा है, तो वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पे संभव जैसे एक सुंदर से जंगल में, जहां पर आप प्रकृति और मनुष्य का आपसी प्रेम देख सकते हैं, वो जरूर देखिएगा।
0: या सॉरी, फोन नंबर नोट करना चाहते तो मैं बोल देती हूँ अभी।
1: जी
0: 6370689785।
1: तो दोस्तों, आपने नंबर नोट कर लिया होगा और एक प्लान भी बना लिया होगा। जब कभी भी भविष्य में आप उड़ीसा की तरफ जाएं, बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे जरूर जाएं, लेकिन एक ऐसी जगह पे भी जाएं जिस जगह का पहले मानचित्र में अस्तित्व तो था, लेकिन कोई नाम नहीं था, आज उस जगह का नाम है। तो साबरमती जी के साथ आज हमने काफी समय बिताया और हमने बहुत सारी चीजें सीखी दोस्तों आज उनसे। जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी आज उनसे बात करते हुए, ये कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा ये करने की बात नहीं है, ये जीवन को सुधारने की का एक रास्ता है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा हमारा जीवन का तरीका होना चाहिए, और यही श्रद्धा हमारे जीवन को बहुमूल्य बनाएगी, हमारे हर कर्तव्य को बहुमूल्य बनाएगी। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में साबरमती आपा के साथ आया था। साबरमती आपा जिन्हें भारत सरकार ने जैविक कृषि के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, आज वो हमारे साथ हमारे बीच स्टूडियो में थी। अगले एपिसोड में मैं आपके बीच में एक और ऐसी महान हस्ती के साथ पहुंचूंगा जो कि भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, यशस्वी भारत कार्यक्रम को सुनते हुए आप भी भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, एक सभ्य सुसंस्कारित नागरिक बन करके। तो रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जैसे आपने कहा, दिल में प्रकृति के लिए श्रद्धा बढ़ाते रहिए। जय जय भारत।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
5: दादी भोळी माझी आई, सुखाची कोसावली।
2: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है आंतरिक सुंदरता। इस पर मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करूँगी। दोस्तों, सही सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। बाहरी आकर्षण कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन असली पहचान इंसान के विचारों, भावनाओं और उसके आचरण से होती है। आइए अब हम समझते हैं आंतरिक सुंदरता क्यों महत्वपूर्ण है। सच्ची सुंदरता अच्छे विचारों, ईमानदारी, करुणा और सहानुभूति में होती है। आत्मविश्वास, सादगी और सकारात्मकता व्यक्ति को अधिक आकर्षित बनाती है। बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन अच्छा स्वभाव और नेक दिली हमेशा याद रहती है। संबंधों की गहराई का जीवन में बहुत महत्व है। रिश्ते केवल चेहरे की सुंदरता से नहीं बल्कि दिल की गहराई से बनते हैं। जीवन में संतुष्टि और खुशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आंतरिक सुंदरता वाला व्यक्ति खुद से संतुष्ट रहता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आंतरिक सुंदरता को कैसे निखारें? सकारात्मक सोच अपनाएं और हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करें और सहानुभूति रखें। अच्छी आदतें और संस्कार अपनाएं, जिससे लोग आपको पसंद करें। ज्ञान अर्जित करें और अपने अंदर बौद्धिक और मानसिक विकास करें। आभार व्यक्त करें और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और स्वभाव में होती है। जब हम अंदर से सुंदर होते हैं तो हमारी आभा अपने आप बाहर भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
0: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: Awakening with ब्रह्मकुमारीज. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
3: थैंक यू सो मच.
2: पिछली बार जो आप बात कर रहे थे लेट गो की, उसी सिलसिले में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. Somebody sent this to me. They say, sometimes people never get what they deserve because they are too busy holding on to things they are supposed to let go of.
3: So true, right?
2: How?
3: It's not true.
2: कौन सी चीज मैंने पकड़ के रखी है जो अब एक चीज जिसको मैं डिजर्व करता हूँ वो भी नहीं मिलती? मतलब जगह बनानी पड़ती है क्या? अलमारी में जैसे कपड़े हैं, पुराने निकालो नए लगाओ, ऐसा कुछ
3: है? सपोज वी डिजर्व हैप्पीनेस, वी डिजर्व हेल्थ, वी डिजर्व ब्यूटिफुल लविंग रिलेशनशिप्स
2: जी,
3: लेकिन हमने पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई है. वो इतने साल पहले ये हुआ था, उस दिन उसने वो कहा था, पिछली बार उसने ऐसा कर दिया था. मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है, कितना भी कोशिश करो मुझे ही सक्सेस नहीं मिलती है. आई डिजर्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, आई डिजर्व सक्सेस इन लाइफ, बट क्योंकि मैंने पुरानी चीजों को लेट गो नहीं किया तो मेरा हर दिन कैसे बीतने वाला है? हर दिन ऐसे ही चलेगा, यही कमेंट्री अंदर चलेगी, क्योंकि मैं पुरानी बीती हुई बातों को नहीं छोड़ रही. तो इतने साल चलते चलते ये मेरे ऊपर, फिर मेरी सेहत पर भी असर करना शुरू करेगी, मेरी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाएगी, मुझे लोगों पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैंने सोचा लोग धोखा ही देते हैं, कितना भी किसी के लिए करो आजकल दुनिया ही ऐसी है, रिश्तों में कुछ बचा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले किसी ने कुछ ऐसा किया था. सो व्हाट आई डिजर्व आई विल नॉट गेट.
2: सपोजिंग पहले कुछ किसी ने मेरे साथ रिश्ते में ऐसा किया था, लेकिन आज एक अच्छा रिश्ता मेरे सामने है, मेरे साथ है, मुझे डिजर्विंग, क्योंकि मैं डिजर्व करता था मुझे मिला भी, लेकिन फिर भी मैं वो पुरानी बात को ला के इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ और जान नहीं जा पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ, डाउट कर रहा हूँ कि ये भी ऐसी होगी.
3: एंड कई बार तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति डिफरेंट है.
2: अच्छा.
3: वो ही व्यक्ति के साथ, इट्स नॉट नेसेसरी कि पास्ट में एक व्यक्ति के साथ मुझे कुछ धोखा हुआ तो मैंने अगली बार और व्यक्ति पर ट्रस्ट करने से मुझे मतलब एक संकोच सा हुआ कि कहीं वैसा ही ना फिर से मेरे साथ हो जाए. सपोज बिजनेस में भी हम एक बिजनेस पार्टनर है, चीट किया या जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं हुआ, तो फिर कई लोग कहते हैं पार्टनरशिप नहीं करनी है. क्योंकि एक पार्टनर के साथ का मेरा एक्सपीरियंस लेट गो क्योंकि हम नहीं कर पा रहे, हम नेक्स्ट में करने से डरेंगे और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलेगा. लर्न करना, नेक्स्ट टाइम कैसे केयरफुल रहना है वो करना, लेकिन उस दर्द को लेट गो करना ताकि नेक्स्ट टाइम आई कैन बिगिन समथिंग विद अ ब्यूटिफुल एनर्जी. सो इट कुड बी अ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वन पर्सन कैरिंग फॉरवर्ड टू अनदर पर्सन. It could be a past experience of one person carrying forward the next day again to that person. Suppose kal mera aapke sath interaction mein kuch hua, to kal ki baat thi. Lekin aaj subah bhi uthkar agar maine wohi thought process se shuru kiya, to meri energy aaj ke interaction mein kis energy se shuru hogi? Kal wali. To aaj jo main deserve karti hu वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि आई हैव नॉट लेट गो ऑफ व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे. पावर टू लेट गो, जितना हम कल्टीवेट करते जाएंगे तो हमारी जीवन की जो क्वालिटी है एनर्जी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी. बिकॉज दिस लाइन इज वेरी ट्रू, वी आर लिविंग विद एनर्जीज ऑफ द पास्ट.
2: मैं क्या सोचता था सिस्टर हमेशा कि जब भी कोई लेट गो वाली बात होती थी तो मैं कहता था देखो भाई अगर एक कुत्ता है जो काटता है मुझे मालूम है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा कि नहीं कि मैं वो एक बार काट और मैं बोला लेट गो फिर जाऊं उसके पास फिर बोला लेट गो तू काट भाई. तो फिर
3: अब इसमें फर्क फिर से करते हैं. सपोज किसी ने बाइट किया मुझे, जानवर ने कल, ठीक है, तो जब कल बाइट किया था तब दर्द हुआ था, इंजरी भी हुई थी, वो पेन, वो एक्सपीरियंस, वो ट्रॉमा, वो यहां पे रिकॉर्डेड हो गया. अब इसको मैंने लेट गो नहीं किया, लर्न कर लिया, वो अलग बात है कि लर्न कर लिया कि उसके पास नहीं जाना, सपोज इन केस ऑफ एन एनिमल कि उसके पास नहीं जाना फिर से, लेकिन पेन को लेट गो नहीं किया, पास्ट मेमोरी को लेट गो नहीं किया, तो हर बार उसके नजदीक या वैसा कोई भी जानवर कहीं भी दिख गया तो मुझे पैनिक, फियर, वो सारी इमोशंस फिर से क्रिएट हो जाते हैं, जबकि इस बार उस जानवर ने कुछ भी नहीं करना.
2: पर सिस्टर, लर्निंग और लेट गो में फिर फर्क क्या हुआ? अगर सपोजिंग एक आदमी है या एक औरत है जिसको कभी मैं कुछ समझाने जाऊं कि ये सही है या नहीं, नहीं जी मुझे सब मालूम है, आप रहने दो, आई डोंट डू दिस, यू नो, सपोजिंग ऐसे आपको बेइज्जती कर दे कि भाई आप क्यों मुझे ऐसा करें, पहले आप अपने आप को तो सुधारो, इस तरह का जवाब मिल जाए तो वहां क्या लेट गो करें, लर्न करें, क्या करें? नेक्स्ट टाइम तो मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा.
3: लास्ट टाइम किसी ने आपकी बात नहीं सुनी?
2: लास्ट टाइम नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार.
3: चलो एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार,
2: ठीक है,
3: चलो तीन भी नहीं, दस बार.
2: तो उसको लेट गो कैसे करें? याद तो रहेगा कि भाई इसको बोलो तो ये तो आगे बढ़ता है.
3: अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उससे लर्निंग कर सकते हैं. लेट से एक बच्चा आग में हाथ डालता है, उसके हाथ को थोड़ा सा जलन सी होती है, सेक होती है. लर्निंग फ्रॉम द पास्ट क्या है कि मुझे अगली बार इस आग में हाथ नहीं डालना, फाइन. लेकिन नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट क्या है कि जब भी वो आग को देखता है
2: फियर हो जाए,
3: या जब भी उसको वो इंसिडेंट याद आता है, जब भी उसको आग की फोटो भी दिखाई दे जाती है कहीं,
2: तो
3: जब भी उसको पिक्चर टीवी में वो आग कहीं दिखाई दे जाती है
2: तो वो इमोशन को रिलीव करे,
3: वो रिलीव करता है. दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन.
2: इसका मतलब मैं जिसको सिखा रहा हूँ, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो मुझ पर झड़प के मेरी बेइज्जती कर दे, सो कॉल्ड बेइज्जती जो मैं समझता हूँ बेइज्जती, वो कर दे, और जब भी मैं उसको देखूँ तो आई एम रीलिविंग.
3: एंड यू आर नॉट ओनली रीलिविंग, जब आप देखें,
2: आई एम फीलिंग हर्ट कि उसने उस दिन मुझे ये बोला था, ऐसे ताना मारा था, ऐसे हर्ट किया था, वो

0: एक चीज लर्न कर ली, क्या लर्न कर लिया?
1: कि ये आदमी ऐसा है।
0: ये आत्मा इस समय अभी कोई चीज लेने के लिए,
1: तैयार नहीं।
0: एडवाइस लेने के लिए इस समय तैयार नहीं है, या फिर आपने जैसे कहा वो बहुत बुरी तरह से ऊपर से जवाब दे देते हैं, उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, व्हेन डिड दिस हैपन? लेट्स से दिस हैपेंड 1 ईयर बैक, फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम ये हुआ होगा, क्या एक्सपीरियंस क्रिएट किया अंदर? एक्सपीरियंस क्या क्रिएट?
1: हर्ट
0: हर्ट
1: एंड डिसरिस्पेक्ट,
0: आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई,
1: खुद
0: तो
1: की
0: इंसल्टेड फील
1: हर्ट,
0: हुई, राइट? अब इंसिडेंट,
1: एंड ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ, की बोलने की जरूरत क्या थी तुमको।
0: तो गिल्ट भी क्रिएट किया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये जो सिचुएशन थी वो 2 मिनट की थी, एक्सपीरियंस कितनी देर रहा?
1: अभी तक है,
0: 1 साल पहले का
1: या तो है, वो दर्द रहा काफी देर तक।
0: अच्छा, वो
1: दो चार
0: थॉट्स,
1: दिन तो,
0: दो चार दिन तो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन 1 साल में कई बार वो थॉट्स बार बार आए?
1: हाँ, बार बार वो बात करने हैं, और जब भी मेरा मन करे बोलने का कि आज मैं इनको ये बताऊं, फिर मैं पीछे हट जाऊं, उस वक्त वो फिर से याद आता था, चला जाता
0: तो
1: था।
0: फिर से तो वो थॉट्स बार बार आते आते, हर बार हम उसको रिलिव कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला, उनको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कर... हमने लर्न क्या किया उस दिन वो इंसिडेंट से? हर्ट रजिस्टर हुआ उस दिन सिर्फ, एंड ये रजिस्टर हुआ कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इनको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बात करनी नहीं आती इनको, इनके फायदे के लिए कुछ बोला और इन्होंने इस तरह से जवाब दिया, ये रिकॉर्ड किया हमने
1: बड़े
0: मेमोरी के
1: छोटों की
0: अंदर,
1: तमीज नहीं है, ये
0: ये
1: नहीं है।
0: रिकॉर्डिंग हुई मेमोरी के अंदर सारी,
1: हाँ हुई
0: ये
1: ना,
0: रजिस्टर हुआ। लर्न क्या करके रजिस्टर किया उस दिन? लर्निंग तो कुछ किया ही नहीं। लर्निंग क्या
1: लर्न
0: करने
1: हमने
0: के
1: ये
0: लिए?
1: किया कि आज के बाद इनको कुछ नहीं बताना।
0: अगर हमने ये लर्न कर लिया कि अभी के समय पर ये रेडी नहीं है आत्मा एडवाइस लेने के लिए, तो जब तक वो रेडी नहीं होते और मैं रेडी नहीं हूं, इम्पोर्टेंट, मैं रेडी नहीं हूं कि कोई मेरी एडवाइस को
1: रिजेक्ट
0: रिजेक्ट
1: करे,
0: करे, तो थोड़े टाइम के लिए मैंने एडवाइस नहीं देनी। अगर ये लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद मुझे उस दिन के एक्सपीरियंस को क्या करना पड़ेगा?
1: लेट गो,
0: ये डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर मी, फॉर दैट सोल एंड फॉर दिस रिलेशनशिप। लर्न कर ले। अब इसको आगे फ्यूचर में दो ही ऑप्शंस हैं। एक, हम उतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम फिर भी राय देंगे, सामने वाला नहीं लेगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, मैंने तो राय देनी थी। वो एक स्थिति आ सकती है। दूसरी स्थिति ये भी आ सकती है कि वो आत्मा भी रिसेप्टिव हो जाए राय सुनने के लिए। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसलिए कोई इम्प्रेशन ऐसा परमानेंट नहीं बनाना जो जीवन में फिर कभी नहीं चेंज होगा।
1: सेकेंड टाइम पहले वाला जो आपका आइडिया था वो भी ट्राई किया कि भाई कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, हमारी ड्यूटी हमको बताना है,
0: हाँ,
1: क्योंकि बच्चे हैं
0: हाँ,
1: और इनका बहुत नुकसान होगा तो मुझे भी दुख होगा।
0: तो बस फिर तो बहुत
1: हाँ,
0: ब्यूटीफुल है।
1: लेकिन फिर डबल रिजेक्शन हुआ।
0: प्रिपेयर करना है अपने आप को, मतलब क्या करना है?
1: क्या
0: प्रिपेयर करना है अपने
1: क्या
0: आप को
1: प्रिपेयर
0: सेकेंड
1: करना है?
0: टाइम के पहले कि...
1: सेकेंड टाइम के पहले रिजेक्शन वापस, उधर से तो रिजेक्शन आया, मुझे इतना बुरा नहीं लगा होगा।
0: अगर आपने लर्न करके अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मुझे तो बताना है,
1: चाहे कुछ भी हो,
0: मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये रोल है, मेरा ये संस्कार
1: मैंने
0: है,
1: प्रिपेयर भी किया,
0: हाँ,
1: बोला भी ये शब्द
0: हाँ,
1: कि मेरा ये रोल है, मेरी ड्यूटी है, मेरा संस्कार है, आप मानो या कैसे भी जवाब दो, मेरा काम मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ पूरा।
0: अब अगर उधर से रिजेक्शन भी आए तो हमें तो उस रिजेक्शन को यहाँ रजिस्टर ही नहीं करने देना चाहिए। हम
1: करना
0: एक्सपेक्ट क्या,
1: चाहिए,
0: हम
1: लेकिन
0: एक्सपेक्ट क्या
1: हुआ
0: कर रहे थे? इसका मतलब सेकेंड टाइम भी हम लर्निंग करके नहीं गए।
1: नहीं, सेकेंड टाइम ये लर्न करके नहीं गए कि मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा कुछ भी वहां से जवाब आए तो। सेकेंड टाइम फिर बोलने की आदत है अपनी, ड्यूटी बोल के पता नहीं क्या।
0: लेकिन फिर लर्निंग करके नहीं गए। दिस
1: हाँ,
0: इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। यू नो एवरीवन सेज बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, बट वी नीड टू लर्न, यस वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, बट वॉट डू वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट? आई नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट कि पिछली बार मैंने ये किया और ये रिजल्ट हुआ, मैं इस तरह से डिस्टर्ब हुआ, इस बार अगर मैंने फिर से वो करना है तो मैं पहले ही प्रिपेयर हो जाऊं कि इरिस्पेक्टिव कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा, आई एम फाइन, आई एम प्लेइंग माई
1: जो
0: रोल।
1: भी मुझसे मिलकर बात करने, अपने घर की बात करने कोई आता है बोले आज का जमाना अजीब सा है, आज तो किसी को सिखा भी नहीं सकते, सिखाओ तो ऊपर हमको ही

0: गाने लग जाते हैं, फलाना ये फलाना वो, सुनते ही नहीं है, ऐसे करते।
1: हमें किसी को सिखाना नहीं है
0: तो हम क्या कर रहे हैं?
1: किसी को समझाना नहीं है,
0: तो एडवाइस
1: हमें
0: देने
1: अपने
0: का क्या मतलब
1: अनुभव
0: है?
1: की राय देनी है। हमें सिखाना, समझाना और डेफिनेटली किसी को कंट्रोल करना या किसी को चेंज करना नहीं है जीवन का लक्ष्य। ये इंटेंशन एनर्जी की ही ठीक नहीं है।
0: इसका मतलब ये है कि उधर से ऐसा रिजेक्शन आया होगा जस्ट बिकॉज द वे आई स्पोक।
1: नॉट नेसेसरी जस्ट बिकॉज
0: मे बी आई हैव द इंटेंशन ऑफ कंट्रोलिंग द पर्सन ऑफ टीचिंग हिम और नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये भी ग्रोन अप है।
1: जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमने कहा तुमने माना, हमने कहा तुमने माना। अब ये कई बार हमारा सक्सेसफुल हो जाता है कि हमने कहा तुमने माना, तो हमें भी तो आदत पड़ जाती है कि हमने कहा लोगों ने माना, एंड फिर हमें कोई मिलेंगे जो हमने कहा और उन्होंने नहीं माना, एंड दैट इज व्हेन आर ईगो इज गेटिंग हर्ट कि हमने कहा और उन्होंने माना नहीं। ये हर्ट किस चीज का है?
0: उन्हीं बच्चों के साथ भी तो होता है। वो बच्चे पहले हमने कहा उन्होंने माना, हमने कहा उन्होंने माना, करते करते करते 20 साल 30 साल, उसके बाद बोलते डैड मॉम प्लीज ग्रोन अप, हमने कहा तुमने माना, कब तक चलेगा?
1: हाँ, तो अब हमारे को अपनी इंटेंशन चेंज करनी है कि हमने कहा तुमने माना उसके लिए नहीं हम बोल रहे, हमें राय देनी है इसीलिए हम राय दे रहे हैं। दैट्स इट, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। लर्निंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हमने पास्ट एक्सपीरियंस की बात को पकड़ के रखा और वो ही हमारी थॉट्स अंदर चल रही है, 99.9% द नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन विल रिएक्ट इन द सेम वे, क्योंकि हमने इतने दिन एनर्जी भी तो उनको वही भेजी है। एनर्जी बहुत पावरफुल काम करने वाली है। हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर फिर बनता है, क्योंकि हमने पास्ट की थॉट्स को ही फ्यूचर में फिर लेकर आए हैं। एंड सो मेनी टाइम्स इट्स एक्चुअली बी एंटिसिपेटेड कि ये होगा ही ऐसे। हम इनको कहेंगे ना इन्होंने ऐसे ही जवाब देना, क्यों? क्योंकि ये तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे, ये तो हर बार ही ऐसे करते हैं। तो वहां से वही रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी कितनी गुणा ज्यादा बढ़ जाएगी।
0: कितनी शक्ति है ना।
1: इनर कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इस चीज की
0: इनर कम्युनिकेशन के बदले में
1: अंडरएस्टिमेट करते हैं
0: इनर फ्रिक्शन।
1: वही वो तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी है, इसकी पावर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है नहीं दिखता किसी को जो हम सोचते हैं। हम जो बोलते हैं उससे भी ज्यादा क्लैरिटी से वो पहुंचता है जो हम सोचते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट है। इफ आई से समथिंग टू यू, अगर आपका माइंड कहीं और कुछ सोच रहा है,
0: कान
1: आप सुने ना सुने, कई बार रजिस्टर हो नहीं रजिस्टर हो पॉसिबल,
0: कई बार कान भी तो कुछ अलग सुनता है या कुछ टोन में।
1: हाँ,
0: डिफरेंस
1: मैंने दो लाइन ही बोलनी है ना सिर्फ, लेकिन जब हम सोचते हैं किसी के लिए एक साल छह महीने कितना भी हम सोच रहे हैं, और वो सोच बहुत पावरफुल वाइब्रेशन के साथ होती है जब वो नेगेटिव होती है, तो वो एनर्जी सामने वाले को रीच नहीं करेगी।
0: तो वो तो डायरेक्ट रिटन मैसेज जाता होगा।
1: इस फोन पे जो मैसेज हम भेजेंगे ना, उस पे भी शायद किसी को इंटेंशन नहीं समझ में आएगी कि इन्होंने बात तो लिखी, इसके पीछे इसका भाव क्या था, लेकिन जो हम सोचेंगे वो तो भाव भावना के साथ सीधा हिट करेगा। तो द प्रोबेबिलिटी के सामने वाला नेक्स्ट टाइम फिर वैसे ही रिएक्ट करने वाला है, उसको तो हम ही क्रिएट कर देते हैं पहले ही उनके लिए सोच के इतनी बार उस तरह से, और वो भी हमारे लिए बहुत फिर वैसा सोच रहे हैं। सो दैट कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी हैज अ ग्रेट चांस कि पास्ट फिर से फ्यूचर में क्रिएट हो जाएगा।
0: यहां इसको सुधारने के लिए एज हमारा जो टाइटल है बीइंग शक्ति, कौन सी शक्ति को यूज करें और कैसे करें?
1: पास्ट के एक्सपीरियंस को आज डिलीट करना पड़ेगा।
0: ऐसे कैसे हो जाएगा?
1: होता है, वर्क करना पड़ता है थोड़ा, ऐसे नहीं बोला लेट गो और हो गया लेट गो करके। यू वर्क विद योर सेल्फ। ये जो इंसिडेंट मेरा इनके साथ हुआ, ये जो एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ हुआ, जो हर्ट मुझे उस दिन फील हुई, आज मैं आत्मा इसको यहां से लेट गो करती हूँ। इसको बोलते जाना है, करते जाना है।
0: और जब जब आए थॉट उसको बोलना है लेट गो,
1: तो बिल्कुल रजिस्टर नहीं होने देना। उस दिन हमने पढ़ा था ना, वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट थॉट। तो जब नेक्स्ट बार भी वो आए, इसे आई हैव लर्न्ड फ्रॉम इट, लेट गो।
0: अच्छा, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम इट, Now let go.
1: Next time the thought will still come.
0: This is very good.
1: But they said this, but she said this, but then he said this. I've learnt from it.
0: But this is a beautiful thing. I can tell my mind, ki dekho, us din jo hua, situation or people and whatever and emotions. From that, I've learnt from it. Now let go. Ab aap jaiye. Aapne humko sikhana tha thought. Ab chalo hato.
1: Ye jo aapne abhi bola hai na. ये जितना आपने अभी बोला है अपने आप को
0: सेम तरीके
1: ये
0: से
1: हर बार बोलना है अपने मन को.
0: अच्छा,
1: उसी क्षण जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा ना, उसी क्षण उसको ये बोल देना.
0: दिस इज इजियर देन फाइंडिंग देयर गुड क्वालिटीज
1: ऑफ
0: दैट पर्सन. आपने एक बार बोला था कि उनके अच्छे गुण भी देखो.
1: वो भी हमने करना है अभी.
0: हाँ,
1: नहीं,
0: लेकिन ये फाइन, बट एटलीस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा अच्छे गुण देखना. बट ये मुझे बहुत एप्ट और अच्छा लगा कि भी देखो, एक चीज परिस्थिति आई कि मैंने एक गाड़ी चला रहा था, जाते जाते देख एक बार गाड़ी खड्डे में गिर गई. ठीक है, उस खड्डे में मुझे मालूम है नेक्स्ट डे भी जाना है, मुझे रोज जाना है. तो आई हैव लर्न्ड फ्रॉम इट. नाउ मैं साइड से हट जाऊंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.
1: परफेक्ट. एक बार मैं गाड़ी चला रही थी,
0: गिर गई, सड़क किसने बनाई, म्यूनसिपैलिटी क्या करती है, इन लोग हमारा पैसा खाते हैं, पब्लिक बनी है, वो भी कर सकते हैं.
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया, अब तो मैंने गाड़ी नहीं चलानी इसके बाद. लेटिंग गो ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस नहीं किया ना. इवन गाड़ी चलाने में कितने लोग गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं, बिकॉज उन्होंने एक बार जब चलाई तब एक्सीडेंट हो गया, एक बार उस दिन मैंने ये किया तो ऐसा हो गया, अब मैंने फिर से नहीं करना. लेट गो ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस. वो दिन अलग था, माहौल अलग था, मूड अलग था सबका. उस दिन वो हो गया, हर बार वो नहीं होने वाला है. आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द पास्ट, नाउ लेट गो. अगर मैंने पास्ट के थॉट, फीलिंग, इमोशन, मेमोरी, एक्सपीरियंस, पेन को लेट गो नहीं किया, दिस कोटेशन विल बिकम अ रियलिटी कि मुझे भविष्य में वो नहीं मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूँ. क्योंकि मैंने पास्ट की चीजों को पकड़ के रखा हुआ है. ये लेट गो करने में भी ना, जो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम हमें लेट गो करना होगा, जो हम बार बार अवेकनिंग में बोलते हैं, लेकिन ये तो हमें हर रोज अपने आप को बोलना पड़ता है. ये जितनी बार भी बोले अपने आप को उतना कम है.
0: रिश्तों के लिए ये बहुत अच्छा लगा मुझे.
1: जो सबसे बड़ा डीप बिलीफ सिस्टम है जिसको लेट गो करना है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर. एंड दैट इज एब्सोल्यूटली नो वन एंड नो सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील. इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. उनकी वजह से मुझे दर्द हुआ, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उनकी वजह से मुझे हर्ट हुआ, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की. इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना है सबसे पहले, सबसे डीप बिलीफ सिस्टम. क्योंकि अभी ये जो सारा आपने सुनाया भी कि मैंने उनको राय दी, उन्होंने राय को रिजेक्ट किया, मैं हर्ट हुआ, बुरी तरह से किया, मैं हर्ट हुआ, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मुझे हर्ट किया. पहले तो इस डीप बिलीफ सिस्टम को ही लेट गो करना है, तो बहुत सारी और चीजें लेट गो करनी नहीं पड़ेंगी. ये बिलीफ सिस्टम, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उनको जो सही लगा उन्होंने किया. नो वन, नो सिचुएशन, नो पर्सन कैन क्रिएट माई थॉट्स एंड फीलिंग्स. ये बिलीफ सिस्टम जितना इजी लगता है सुनने में, जितनी बार हम सुन चुके हैं, उतना ही ये डीप है और उतना ही हम इसको कितना पकड़ के रखें.
0: आपकी ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती है कि वो अगला बंदे को थोड़ा तो होना चाहिए कि बड़ा कोई समझा रहा है भाई, क्यों बोल रहा है, कोई डांट के तो नहीं बोल रहा है, कोई टोक भी नहीं रहे, कोई ताना भी नहीं मार रहे. अगर आप बोले बेटा ये नहीं ये, तो आपको इतना मतलब रिएक्ट करने की क्या जरूरत है.
1: उनको क्या सही है या नहीं है वो तो अलग बात है, वो तो ठीक है, वी आर नॉट सेइंग.
0: तो उस तरफ से जो आया वो स्वीटली आता तो फिर मैं डिस्कस ही नहीं करता
1: बात. लेकिन दुनिया हमारे साथ स्वीट नहीं हो सकती ना हर बार, और वो भी उतना स्वीट जितना हम चाहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है. वो तो देन अगेन दैट्स
0: कंट्रोल. चाय का कप भी मेरे हिसाब से बराबर शुगर नहीं डालते, तो मुझे ही डालनी पड़ती है. तो अगले बंदे को तो
1: अपनी चाय रोज किचन में खुद बनाने जाते हैं ना.
0: हाँ, क्योंकि उनको समझ नहीं आता मुझे.
1: जब इतनी सी चीज नहीं दूसरे को पता चल रही कि आपके लिए चाय कैसे बनानी है, तो व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग दैट द वर्ल्ड विल बी अकॉर्डिंग टू अस.
0: इट्स ब्यूटीफुल.
1: व्हाई विल द वर्ल्ड बी अकॉर्डिंग टू अस. लोग वैसे ही होंगे जैसे वो कंफर्टेबल है ना. तो वो उसने स्वीटली बात करनी चाहिए, उनको ऐसे जवाब देना चाहिए, ऐसे की तो लंबी लिस्ट है कि दुनिया में क्या क्या होना चाहिए, लोगों को कैसे होना चाहिए। इस
0: सिस्टर, आप जो बोल रहे हो वो तो बिल्कुल एबीसीडी है। ये नहीं कि मैं आपको कुछ चीज बोलूं, आप कुर्सी उतर के डांट डूट के कुर्सी छोड़ के चले जाओ, तो वो थोड़ी स्वीटनेस है। दैट्स बैड मैनर्स, कम ऑन,
1: दैट्स माय बैड मैनर्स। नो,
0: फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यस,
1: बट माय बैड मैनर्स नो,
0: या द अदर पार्टीज, या
1: दैट्स माइन, टॉक अबाउट योरसेल्फ, दैट्स माय बैड मैनर्स, एम्पावर योरसेल्फ नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय माय बैड मैनर्स।
0: How can I do that?
1: Why not? यही तो अवेकनिंग है, यही तो ज्ञान है, ये डिस्कशन नहीं
0: मैं
1: है।
0: तो
1: कि
0: कभी मैं बात ही नहीं करता बाद में, हाय हेलो करके निकल जाता हूँ।
1: मेरे बैड मैनर्स हैं इज फाइन, लेकिन एम्पावर योर सेल्फ मतलब कि दूसरे का व्यवहार मेरे मन की स्थिति को टच नहीं कर सकता है, मेरे मन की स्थिति मेरी क्रिएशन है।
0: अच्छा चलिए, अगर आप जो सिखा रहे हैं मैंने सीख लिया, तो अगला बोलेगा इसको तो कुछ भी कभी भी बोल दो, डांट डूंट दो, फिर ही आ जाता, तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी?
1: एक्चुअली होने क्या वाला है, वैल्यू तो अभी भी नहीं थी ना आपके हिसाब से,
0: चल नहीं रही,
1: अभी नहीं थी ना,
0: नहीं थी,
1: अभी नहीं थी,
0: और गिरेंगे
1: नहीं, उल्टा ऑपोजिट होगा
0: क्या?
1: क्योंकि अब, क्योंकि जब आपका मन अफेक्टेड नहीं होगा, इंसल्टेड नहीं फील करेगा, हर्ट नहीं फील करेगा, तो मतलब उसकी वाइब्रेशन कैसी रहेगी? बड़ी प्योर और पॉजिटिव रहेगी, वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरैक्ट करेंगे, आप ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव स्थिति से इंटरैक्ट करेंगे, सेकेंड टाइम भी वो जैसा बिहेव करेंगे आपके ऊपर असर तो होने ही नहीं वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे सामने वाले की वाइब्रेशन भी तो चेंज होने वाली है। इट इज गोइंग टू चेंज, इट कैन ईदर बिकम
0: ईदर
1: इट कैन बिकम अ विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और इट कैन स्टार्ट शिफ्टिंग टू अ साइकिल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी।
0: आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर मैं अपनी तरफ से लेट गो करूं तो सामने वाले के पास से भी मेरी अच्छी उसको एनर्जी जाएगी। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं समझा नहीं था पहले,
1: और
0: सोचा
1: ये
0: नहीं
1: अगर
0: था।
1: नहीं जा रही तो बहुत कुछ दूसरा जा रहा
0: ये
1: है।
0: ये नहीं जा रही का मतलब ये है कि मैं लेट गो नहीं कर रहा हूं, तो वहां से भी तो पिंग पोंग चल रहा है,
1: कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना।
0: दिस इज
1: तो
0: वेरी
1: कौन
0: गुड,
1: आपने कहा इसका मतलब उसके बाद वो मुझे और क्या बोला, तो कुछ और नीचे गिराएंगे,
0: और नीचे आप मुझे कर देंगे, मतलब और
1: मतलब
0: मुझे
1: वो और
0: बेइज्जती
1: नीचे
0: कर,
1: गिराए,
0: और मेरी बेइज्जती कर देंगे।
1: वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं या हम अपने आप को और नीचे गिरा रहे हैं? कौन किसको नीचे गिराता है? मेरे मन की स्थिति से, मेरी सीट से कौन मुझे नीचे गिराता है? दूसरे मुझे नीचे गिराते हैं।
0: फुल एपिसोड फॉर दिस,
1: पर मेरी सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है?
0: मेरी
1: मैं
0: सीट से
1: इनर बीइंग अलाइंड थी, मेरी सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है?
0: जिसको भी मैं परमिट करूं गिराने के लिए, परमिशन दो या अपने आप को या दूसरे को,
1: मेरी सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है?
0: मैं,
1: और तो कोई गिरा ही नहीं सकता। ओरिजिनल स्थिति से मुझे कौन शिफ्ट करा सकता है? सिर्फ मैं। हमें लगता है दूसरे हमें गिराते हैं, दूसरे हमें नीचे गिराते हैं। मैं अपनी स्थिति से, अपनी सीट ऑफ पावर से अपने आप को गिराता हूँ।
0: सिस्टर, मैं अपनी सीट पे कैसे रहूं, अपनी कुर्सी पे कैसे रहूं, ये कौन सी शक्ति का अपनी इस्तेमाल करूं, ये मैं आपसे अगले एपिसोड में पूछना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। When we do not let go of the pain of our past experiences with the soul, our present experiences with them will get colored by the past. Whenever we interact with them, we are already radiating the past pain. We fear that we should not get hurt again. We perceive them through the filter of their past behavior and may not understand them correctly this time. All this pain is created by us in the present and carried into the future, not allowing us
2: to heal ourselves or the relationship. Learning from the past means to be aware of how we reacted last time and prepare ourselves to respond in the right manner next time, even though the stimulus is the same. Learning does not mean to withdraw from situations and people. Learning means to withdraw from our past negative reactions. If we do not let go of the pain created in the past, we will create similar emotions each time we encounter the same stimulus or anything similar to that stimulus, like a photograph or television scene or even a mention about it. This reliving of pain repeatedly will deplete our happiness and health. Every time the past experience returns on the screen of the mind, gently tell the mind, I have learnt from the past. I have learnt. I have learnt. Let go the past experience and hurt.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
1: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
1: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
1: अतुल्य भारत। चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
1: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
3: क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पर्व या मेला कहाँ होता है? जी हाँ, भारत में, और उस मेले का नाम है कुंभ। कुंभ के मेले में करोड़ों श्रद्धालु एक साथ कुंभ पर्व स्थली यानी हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में एक बार इस पर्व का आयोजन होता है। इसके साथ ही हरिद्वार और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है।
2: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
1: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम खाबो खास सफर। तो आइए इस सफर को आज बनाते हैं यादगार, कुछ गीतों के माध्यम से और कुछ कविताओं के माध्यम से। तो आइए चंद मोटिवेशनल कविताएं बीच बीच में सुनाता जाऊंगा और 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज आपके लिए खास। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जिस पर बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, जिस फिल्म का नाम है अग्निपथ। जी हाँ, अग्निपथ की ये कविता कहीं न कहीं हम सभी को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। और ये कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको ले चलता हूँ एक फिल्म 1954 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था टैक्सी ड्राइवर। जी हाँ, और इस फिल्म में कल्पना कार्तिक, जॉनी वाकर और शीला रमानी ने काम किया है। टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम है मंगल, वो माला को बचाता है जब दो ठग उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, लेकिन मंगल के क्लब में नर्तकी सिमी के साथ संबंध माला को उससे दूर करता है। तो फिल्म में यही चीज बताने की कोशिश की गई है। देवानंद की ये फिल्म टैक्सी ड्राइवर का खूबसूरत गाना आपके लिए अभी। तो ये सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर 1954 का एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो जे अक्षर से शुरू होता है। सचिन देव बर्मन का संगीत, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया ये खूबसूरत गाना। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज खाबो खास सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना लता जी की आवाज में 1954 का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। न दूर हमसे जाया करो, दिल तड़प जाता है, आपके ख्यालों में ही हमारा दिन गुजर जाता है। पूछता है ये दिल एक सवाल आपसे कि क्या दूर रहकर भी आपको हमारा ख्याल आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना एक और मैं आपको सुनाने वाला हूँ, 1957 का। उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यासा, और ये बहुत ही सुंदर फिल्म बनी थी एक कवि के ऊपर जो बहुत ही स्ट्रगल करता है, एक संघर्षशील कवि की कहानी जिसका नाम है विजय। विजय अपनी कविताओं को प्रकाशित करने की कोशिश करता है, लगातार उसे असफलता का सामना करना पड़ता है, और उस बीच उसे एक वेश्या जिसका नाम है गुलाबो से सहायता मिलती है, और गुलाबो विजय की कविताओं की सराहना करती है और उसे प्रकाशित करने में उसे मदद करती है। तो इस फिल्म का यही कहानी है, और इसके साथ में इस फिल्म में काम करने वाले लोग थे गुरुदत्त, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर, वैरा रेमन और रहमान। 19 फरवरी 1957 को ये फिल्म रिलीज हुई थी जो गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया था, और एसडी बर्मन का संगीत, साहिर लुधियानवी ने इसमें गाने लिखे थे। तो आइए एक इस फिल्म का खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे गाया है हेमंत दाने, हेमंत कुमार साहब ने। प्यासा फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।
1: जाने वो कैसे

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। इतना पीता हूँ कि मदहोश रहता हूँ, सब कुछ समझता हूँ पर खामोश रहता हूँ। जो लोग करते हैं मुझे गिराने की कोशिश, मैं अक्सर उन्हीं के साथ रहता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना प्यासा एल्बम से। अब मैं आपको ले चलता मुगले आजम की तरफ। जी हाँ, 1960 में ये फिल्म बनी थी, बहुत ही पॉपुलर। और आप सभी जानते हैं इस फिल्म जो है ये एक हिस्टोरिकल फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है। और इसमें सम्राट के बेटे जिनका नाम है सलीम जो दिलीप कुमार साहब ने इस रोल को किया है, और एक खूबसूरत वैश्या अनारकली से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ रहने का संकल्प करता है और इसके लिए भले ही उसे अपने पिता, अपने राज्य से अपने आप को अलग करना पड़े। तो इस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। और ये फिल्म 5 अगस्त 1960 को मुंबई में रिलीज हुई थी। के आसिफ के निर्देशन में बॉक्स ऑफिस पर उस समय 55 मिलियन उस समय ये फिल्म 1960 में 55 मिलियन का बिजनेस किया था। तो ये फिल्म दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, दुर्गा कोटे सुल्ताना पर पिक्चराइज किया गया था और बहुत ही प्यारा फिल्म है। शायद आपको वक्त मिले तो जरूर देखना। तो आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना जो अक्षर जे से शुरू होता है, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नशा हम करते हैं, इल्जाम शराब को दिया जाता है, मगर इल्जाम शराब का नहीं, उनका है जिनका चेहरा हमें हर जाम में नजर आता है। अभी मैं जो गीत

इन आदतों से बहुत परेशान रहती हैं और एक शाम ऐसे ही कुछ बातचीत में उलझ जाते दोनों और राम नारायण सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। तो कहानी यहाँ पर फिर एक नया मोड़ लेता है। तो इस फिल्म में यही चीजें बताई गई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना अभी आपके लिए, खुश रहो खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तेरे इंतजार में कब से उदास बैठे हैं, तेरे दीदार में आंखें बिछाए बैठे हैं। तू एक नजर हमको देख ले बस, इस आस में कब

से बेकरार बैठे हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1961 की बात करते हैं और उस समय एक फिल्म आई थी घराना। आशा पारेख, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, शोभा खोटी और आगा पर पिक्चराइज किया गया था। 22 फरवरी 1961 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके संगीतकार थे रवि और इसके निर्माता एस वासन साहब थे। और इसके साथ ही एक फैमिली ड्रामा बताया गया है। परिवार का सबसे छोटा बेटा कमल अपनी सहपाठी उषा से प्यार करता है। पारिवारिक अंतर और मतभेद दोनों के इस प्यार में बाधक डालते हैं, इस प्यार में बंधन डालते हैं। तो इस फिल्म में ये चीज बताई गई है। तो आइए, शकील बदायूं साहब का लिखा इस फिल्म का एक गाना जिसे आशा और रफी साहब ने गाया है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अभी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। उनका हाल भी आप जैसा ही होगा, आपका हाले दिल उन्हें भी महसूस होगा। बेकरारी की आग में जो जल रहे हैं आपसे ज्यादा उन्हें इस जलन का एहसास होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अभी सुना। आगे बढ़ते हैं, 1963 का एक फिल्म मुझे याद आ रहा है, बिन बादल बरसा। ये नाम अपने आप में बहुत आकर्षित करता है लोगों को, और इस फिल्म में जिन्होंने काम किया है वो है लता मंगेशकर, विश्वजीत चटार जी, आशा भोसले, आशा पारेख और महमूद अली साहब ने काम किया। आप सोच रहे होंगे कि लता मंगेशकर या आशा भोसले, इनको हम गाते हुए जरूर सुनते हैं लेकिन फिल्मों में बहुत कम देखते हैं। तो बिन बादल बरसात जो 1963 में रिलीज हुई थी, इसमें आप इन दोनों ही सिंगर्स को एक्टिंग में देख सकते हैं। और ये फिल्म विशेष ज्योति स्वरूप के निर्देशन में बनी, 17 नवंबर 1963 को रिलीज हुई। इस फिल्म में एक ऐसी कहानी बताई गई है जहां पर प्रभात जो है एक लड़की से शादी करता है घर वालों के कहने पर, और एक साल भर बाद ही उसकी पत्नी मर जाती है। और इस बात का जब उनकी प्रेमिका को पता चलता है, वो इस बात का उससे मजाक करती है। तो फिल्म इसी तरह की कुछ कहानी से जुड़ा हुआ है। तो आइए, शकील बदायूं साहब का लिखा, हेमंत दा का गाया हुआ, हेमंत कुमार का ही संगीत, बिन बादल बरसात का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

माना आज उन्हें हमारा कोई ख्याल नहीं, माना आज उन्हें हमारा कोई ख्याल नहीं, जवाब देने को हम राजी हैं पर कोई सवाल नहीं। पूछो उनके दिल से क्या हम उनके यार नहीं, क्या हमसे मिलने को वो बेकरार नहीं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज खाबोखर सफर में, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए, एक फिल्म आई थी 1964 में जिसका नाम था दोस्ती। बहुत ही हिट फिल्म रही उस जमाने में, आज भी इसके गाने जब आप सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा फील करेंगे। एक से बढ़कर एक गाना इस फिल्म में था और हर गाने में कहीं ना कहीं एक जो है प्यार और एक संदेश मिलता है। तो आइए, 6 नवंबर 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। बहुत ही सुंदर फिल्म बनी थी जिसमें कलाकार के रूप में सुधीर कुमार, संजय खान, सुशील कुमार, लीला चिटनिस और बेबी फरीदा ने काम किया था। और दुर्भाग्य से इसमें जो है एक दिव्यांग व्यक्ति यानी जिनका पैर नहीं है और जिनके आंख नहीं है, ऐसे लोगों पर ये कहानी बनी है। और बताया जाता है एक लड़का, बहुत ही यंग लड़का, जवान लड़के के अपने माता पिता और अपना पैर किसी दुर्घटना में खो देता है और एक अंधे लड़के से उसकी दोस्ती होती है। साथ में वे दोनों दोस्त बन जाते हैं और पैसा कमाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने निकल पड़ते हैं। तो जैसे वो निकलते हैं फिर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उनके जीवन में, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और फिर बाद में हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी इसको मिला है। इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपको सुनाऊंगा मैं, अभी सुनते ही आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए सुनते हैं जाने वालों जरा, आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो,

सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। चंद लम्हों की जिंदगानी है, नफरतों से जिया नहीं करते, लगता है दुश्मन से गुजारिश करनी पड़ेगी, दोस्त अब याद किया नहीं करते। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज। ये बात एक खूबसूरत गाना दोस्ती फिल्म का आपने सुना, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और 1964 में ही एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था जहां आरा। जी हाँ, जहां आरा जो है सम्राट शाहजहां की देखभाल करने की कसम खाती है। जब उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है वो अपना वादा बनाए रखती है। उसी दौरान मिर्जा एक झूठी आशा में है कि वो किसी दिन उससे शादी करेगी। तो इस तरह की ये कहानी बताई गई है और ये फिल्म 1964 में रिलीज हुई, विनोद कुमार के निर्देशन में और मदन मोहन का संगीत। और इस फिल्म के कलाकार माला सिन्हा, भरत भूषण, शशिकला, पृथ्वीराज कपूर और ओम प्रकाश ने इसमें काम किया। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाऊंगा अभी, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इसे गाया है। ये खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तुमसे नफरत करो या मोहब्बत, दोनों हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि अगर तुम नफरत करोगे तो हम तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे, अगर मोहब्बत करोगे तो दिल में। तो आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। अब बात करते हैं 1966 की। 1966 में एक फिल्म जिसका नाम था दो बदन, ये फिल्म भी इस नाम के कारण बहुत पॉपुलर रहा, जिसमें मनोज कुमार, आशा पारेख, प्राण, सिमी गारेवाल और मोहन छोटी ने काम किया था। इस फिल्म को संगीत से संवारा था रवि साहब ने और इस कहानी को लिखा था जीआर कामत ने और वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता ने इस कहानी को लिखने में उन्हें मदद की थी। और इस फिल्म में आशा नाम की एक लड़की अपने कॉलेज के दोस्त विकास से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता उसकी शादी अश्विन से तय करते हैं। जब अश्विन को विकास के बारे में, आशा की भावनाओं के बारे में पता चलता है तो विकास को मारने का फैसला करता है। ये कहानी बताई गई है, छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी बातें बताई गई हैं। तो आइए, इस फिल्म में एक गाना है जे अक्षर से और बहुत ही खूबसूरत गाना है। इस गीत का एक लाइन सुनते ही आपके मुख से भी ये शब्द निकल पड़ेंगे, इतने प्यारे बोल है। तो चलिए, मैं नहीं कहूंगा, गाना ही सुनाऊंगा आपको अभी। आइए, जाते जाते चंदलाई ने आपके नाम एक तू तेरी आवाज याद आएगी, तेरी कही हुई हर बात याद आएगी, दिन ढल जाएगा रात याद आएगी, हर लम्हा पहली मुलाकात याद आएगी। तो इसी के साथ श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत, सलाम नमस्ते, आभार, आनंदी रहा अनि आनंद लूटा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं था सर। मैं तो सोच रहा था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब
2: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते, और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो।
1: मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर मां का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं। आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
2: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।
1: थैंक यू सर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल, इस कार्यक्रम को आप हर हफ्ते सुनते हैं और हर हफ्ते हम एक नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। साथियों, आप सब के लिए आज हम विषय लेकर आए हैं वेटनेरियन, पशु चिकित्सक। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर करियर है, एक समर्पित, सम्मानजनक और सेवा प्रदान करियर है ये। निश्चित तौर पे आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो ये भी एक सुंदर विकल्प है कि आप वेटनेरियन बने। पशु चिकित्सा यानी वेटनेरियन वो व्यक्ति होता है जो पशुओं के स्वास्थ्य उपचार, देखभाल और रोग नियंत्रण का कार्य करते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए डॉक्टर होते हैं, वैसे ही पशुओं के लिए पशु चिकित्सक। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पशु चिकित्सकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये करियर केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और विज्ञान का सुंदर संगम है। जो लोग पशुओं से प्रेम करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और समाज के लिए कुछ उपयोगी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्षेत्र आदर्श है। तो साथियों, ये एक बहुत ही नोबल करियर है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर मंथन करें, चिंतन करें और अपने करियर को इस ओर जरूर ले जाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आज हम पशु चिकित्सा के बारे में ही पूरी जानकारी आपको देंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बातें होंगी आज पशु चिकित्सा के बारे में। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एक तो 12वीं साइंस स्ट्रीम से आपको पास करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जिसको PCB कहते हैं, ये अनिवार्य है। इसके बाद BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, 5.5 वर्षों का ये कोर्स इंटर्नशिप सहित होता है। और इसके बाद इच्छुक छात्र MVSC भी कहते हैं, मास्टर डिग्री भी या PhD भी कर सकते हैं। अब इसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो तो नीट, UG भारत में मुख्य रूप से, और राज्य स्तरीय प्रदेश परीक्षाएं भी, प्रवेश परीक्षाएं भी होती है। तो इन सभी में आपको भाग लेना है और अपने आप को साबित करना है, पास करना है और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो शिक्षा है, वो आपको जरूरी है। इसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एक चिकित्सक के रूप में, पशु चिकित्सक के कार्य के लिए। पशु चिकित्सक का अर्थ है केवल पशुओं का इलाज।

जांच करना नहीं बल्कि उनके संपूर्ण स्वास्थ्य और समाज की भलाई से जुड़ा हुआ कार्य भी करना है। जैसे आप देखेंगे मुख्य कार्य अगर मैं कहूँ पशुओं की बीमारी का निदान और उपचार, ये तो है ही है। इसके साथ में आता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तीसरी बात आती है पशु शल्य चिकित्सा सर्जरी। चौथी बात आती है डेयरी और पोल्ट्री प्रबंधन। और छठवीं बात आती है पशु आहार और पोषण सलाह। सातवीं बात आती है जूनेटिक जो है रोगों को जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है उसकी रोकथाम करना, ये बहुत जरूरी है। जेनेटिक जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और किस तरह से आप जो है अपना कार्य कर सकते हैं। साथियों ये एक नोबल यानी एक बहुत ही सुंदर सेवा कार्य है जब आप इसमें काम करते हैं। तो आज के समय में जैसे गाँव में डॉक्टर की जरूरत है पशु डॉक्टर की, वैसे ही शहरों में भी बहुत सारे वेटनेरियन की जरूरत पड़ती है और आप देखेंगे उनकी भी अच्छी चलती है और अच्छा जो है उनका बिजनेस होता है। अब यहाँ पर शहरों में जो आजकल बहुत सारे लोगों को शौक है कुत्ते बिल्ली इन सभी चीजों को पालते रहते हैं, और बड़े घर में देखेंगे आप बड़ा सा कुत्ता होगा, फिर उसका डाइट अलग होगा, उसका फिर चेकिंग होता है, उसके वैक्सीनेशन की बात आती है, और ये कुत्तों का जो है या फिर बिल्ली या फिर कोई और प्राणी जो लोगों को पसंद आता है उसे अगर वो रखते हैं, तो यहाँ शहरों में भी इस तरह की चीजें हमने देखी है और यहाँ पर अच्छा से कमा सकते हैं। गांव में जाते हैं तो आप पशु पशुओं के गाय बैल ये सारी चीजें तो है ही है, बकरियां है, तो इन सभी की सेवा भी आपको करनी होती है। तो अब जहां भी आप रहेंगे वहां आपके लिए संभावनाएं खूब है। तो आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बात करते हैं हम लोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार की जो संभावना है वो व्यापक है। जैसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया आपको, पहली बात है सरकारी पशु चिकित्सा वेटनरी ऑफिसर के रूप में आपको काम मिलता है। दूसरा, प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल्स वगैरह खोल सकते हैं। तीसरा, डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, एनजीओ और पशु कल्याण संगठन से जुड़ सकते हैं, रिसर्च और शिक्षण क्षेत्र में काम कर सकते हैं, फूड सेफ्टी और एनिमल इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, आर्मी और पुलिस डॉग स्क्वाड के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई हैं। आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा आपका वर्कआउट कहाँ कहाँ और कैसे किस किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप वेतन और भविष्य की बात करें तो यहाँ पर 30,000 से लेकर 50,000 प्रति महीना आपको वेतन मिल जाता है शुरू में, और फिर अनुभव होने के बाद 80,000 से 1.5 लाख रुपया या उससे अधिक भी होता है। और स्वयं का क्लिनिक होने पर आय की कोई सीमा नहीं रहती, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आज के समय में पेट केयर जो है इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक डेयरी और एनिमल वेलफेयर के बढ़ते महत्व का कारण इस क्षेत्र में भविष्य जो है बहुत उज्ज्वल है। आप बहुत सारा काम कर सकते हैं क्योंकि पेट केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और ये शहर से कनेक्टेड है, इसलिए अच्छा पैसा मिलता है। ऑर्गेनिक डेयरी का भी ये पूरी दुनिया में कनेक्टेड रहता है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और देखते हैं सरकार भी इसके लिए एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पशु चिकित्सा में आवश्यक गुण जो है पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा हो, धैर्य और संवेदनशीलता हो, वैज्ञानिक सोच हो, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की बहुत इच्छा आपकी हो, सेवा भाव हो, तो आप इन चीजों को बखूबी कर सकते हैं। और मैं इस पर एक बहुत ही सुंदर जो है कुछ खास डॉक्टर जो एनिमल वेटनेरियन रहे हैं, पशु चिकित्सक रहे हैं, उनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी प्रेरणी, एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कहानी है डॉक्टर रामेश्वर सिंह का। गांव से ग्लोबल पहचान तक उनकी जो है यात्रा हुई। और डॉक्टर रामेश्वर सिंह बिहार के एक छोटे से गांव में आते थे। वहां से आते और बचपन में उन्हें देखा गया कि उनकी गांव में पशुओं की सही चिकित्सा न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान होता था। एक बार उनकी प्रिय गाय की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और ये घटना उनके जीवन में पशु चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित हुआ। निश्चय ही वे पशु चिकित्सक बनेंगे, अर्थात आर्थिक कठिनाई के बावजूद उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और BBSC की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने बड़े शहरों में नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया और आज डॉक्टर रामेश्वर न केवल एक सफल पशु चिकित्सक है बल्कि उन्होंने आसपास के 50 से अधिक गांवों में निशुल्क टीकाकरण अभियान, पशुपालक परीक्षण शिविर और मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की है और उनके प्रयासों से सैकड़ों किसानों की आय बढ़ी और पशुधन सुरक्षित हुआ। दूसरे एक डॉक्टर हैं अनन्य शर्मा। जी हाँ, पशु प्रेम से करियर की ऊंचाई तक इनकी कहानी बयां कर सकते हैं। डॉक्टर अनन्य शर्मा को बचपन से ही जानवरों से बहुत गहरा लगाव था। घर में घायल पशुओं और आवारा कुत्तों की सेवा करना उनकी आदत में शुमार थी। समाज में कई लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नीट पास कर उन्होंने पशु चिकित्सा की पढ़ाई की और बाद में पेट एनिमल केयर का विशेषज्ञता हासिल की। फिर क्या था, आज वे एक बड़े शहर में आधुनिक पेट क्लिनिक चला रही हैं, जहां न केवल इलाज होता है बल्कि एनिमल थेरेपी, काउंसलिंग और रेस्क्यू सेवाएं भी दी जाती है। और डॉक्टर अनन्य का मानना है कि जब आप किसी बेजुबान की पीड़ा कम करते हैं तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और एक जीवन में अथाह सुख प्राप्त करने का जरिया भी, समाज के लिए योगदान भी आप कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर पशु चिकित्सक केवल पशुओं के डॉक्टर नहीं होते बल्कि किसानों के सहायक होते हैं, जन स्वास्थ्य के रक्षक होते हैं, प्रकृति और जैविक विविधता के संरक्षक होते हैं, मानवता के सच्चे सेवक भी होते हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग अगर जानवरों से कुछ चीजें निकल जाती हैं और वो मनुष्यों में प्रवेश कर जाती है तो एक बहुत बड़ा जो है बीमारी का वो सैलाब आ जाता है।
तो ऐसे में एक पशु चिकित्सक ही इसका माध्यम बनता है और पशुओं को ठीक करके मानव जाति को भी शांति और सुखद सुख का अनुभव कराता है। तो निश्चित तौर पे एक माध्यम है मानव और पशु के बीच का जो जरिया है, दोनों को सिक्योर स्वस्थ और बेहद अच्छा रखने के लिए पशु चिकित्सक का कार्य है। साथियों, आप ये करियर छोटा मत समझिएगा, ये जीवन को बेहतर करने के साथ साथ सामाजिक सेवा में सबसे आगे आता है। पशु चिकित्सा वेटनेरियन का करियर सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष से भरा हुआ है। ये क्षेत्र उन लोगों के लिए है जो सेवा को पेशा और करुणा को शक्ति मानते। अगर आपके दिल में भी पशुओं के प्रति प्रेम है और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये करियर आपके जीवन को सार्थक बना सकता है और बेजुबानों की सेवा ही सच्ची मानवता है। साथियों, आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और दो डॉक्टरों का मैं जिक्र करने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ फिर से करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। हम लोग आज बात कर रहे हैं वेटनेरियन के बारे में, पशु चिकित्सा के बारे में। साथियों, पशु चिकित्सक बनना कितना सम्मान का करियर है ये आपने समझ लिया है। अब आइए बात करते हैं एक और कहानी जो आपको हम सबको मोटिवेट करेगा। डॉक्टर जेम्स हैरियट, पशु चिकित्सा को मानवता से जोड़ने वाले महान डॉक्टर। डॉक्टर जेम्स हैरियट दुनिया के सबसे पॉपुलर पशु चिकित्सकों में गिने जाते हैं। उनका असली नाम जेम्स अल्फ्रेड वाइट था। वे ब्रिटेन इंग्लैंड के रहने वाले थे और 20वीं सदी में उन्होंने पशु चिकित्सा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि संवेदना और सेवा का माध्यम बना दिया। डॉक्टर हैरियट ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा के रूप में चिकित्सक के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय गाँव में सुविधाएं बहुत कम थी। कई बार उन्हें रात में बारिश या बर्फबारी में मीलों दूर बीमार पशुओं के इलाज के लिए जाना पड़ता था। उनके मरीज गाय, घोड़े, भेड़, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर होते थे, लेकिन उनके असली मरीज किसान और पशुपालक भी थे जिनकी आजीविका पशुओं पर बिल्कुल निर्भर थी। डॉक्टर हैरियट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे पशुओं को सिर्फ शरीर नहीं भावना वाला जीव मानते थे। वे हर जानवर से प्यार और धैर्य के साथ पेश आते थे। कई बार इलाज के बदले उन्हें पैसे की जगह दूध, सब्जी या केवल दुआएं मिलती थी, लेकिन उन्होंने कभी सेवा भाव नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित कई किताबें लिखी, जिनमें सबसे पॉपुलर है ऑल क्रिएटर्स ग्रेट एंड स्मॉल। ये किताब पूरी दुनिया में पढ़ी गई और बाद में इन पर टीवी सीरीज भी बनी। इन रचनाओं ने लाखों युवाओं को पशु चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, डॉक्टर जेम्स हैरियट ने सिखाया कि एक अच्छा पशु चिकित्सक वही है जो जानवरों के साथ साथ इंसानों के दिल को भी समझे। साथियों, देखा आपने, डॉक्टर हैरियट जी हैं जो पशु चिकित्सा में एक अहम भूमिका निभाया था। आइए इसी तरह का एक और कहानी मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। यहाँ पर डॉक्टर इयान डनबर को नहीं भूल सकते। ये खास करके शहरों में होने वाली चीजों को समझते थे और शहरों में जहाँ पर कुत्तों के व्यवहार को समझने वाले विशेष विशेषज्ञ पशु चिकित्सक माना जाता है इन्हें। तो डॉक्टर इयान डनबर एक बहुत ही पॉपुलर वेटनेरियन रहे और एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट इनकी खासियत थी। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के अपने स्पेशलाइजेशन होता है, तो इन्होंने पशु चिकित्सा में एनिमल बिहेवियर स्पेशलाइजेशन किया। वे मूल रूप से ब्रिटेन से ही हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिका में रहकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर डनबर का काम खास तौर पर पालतू कुत्तों, पेट डॉग्स के व्यवहार परीक्षण और इंसान जानवर संबंधों पर केंद्रित रहा है। डॉक्टर डनबर ने देखा कि बहुत से पालतू कुत्ते बीमारी की वजह से नहीं बल्कि गलत परीक्षण और गलत समझ के कारण छोड़ दिए जाते हैं। ये आक्रामक हो जाते हैं। उन्होंने ये महसूस किया कि केवल दवा देना ही काफी नहीं है, बल्कि मालिकों को ये सिखाना भी जरूरी है कि कुत्ते को कैसे समझे और उनसे कैसे व्यवहार करे। उन्होंने कुत्तों के लिए पॉजिटिव ट्रेनिंग मेथड को लोकप्रिय बनाया, जिसमें मार डांट की जगह प्यार, धैर्य और समझ का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर डनबर ने दुनिया का पहला पप्पी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिससे लाखों कुत्तों की जिंदगी बेहतर हुई। साथियों, वे कई प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं और आज भी ऑनलाइन कोर्स, सेमिनार और वर्कशॉप के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी वजह से आज पशु चिकित्सा में एनिमल बिहेवियर एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक क्षेत्र बन चुका है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि एनिमल बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा जो लोगों के लिए और कुत्तों के बीच में उनका व्यवहार को समन्वय किया और उनके जीवन को यानी मालिक और उनके कुत्तों के लिए बेहतर साबित हुआ। डॉक्टर इयान बार का संदेश है कि जब आप जानवर का व्यवहार समझ लेते हैं तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। साथियों, डॉक्टर जेम्स हैरियट और डॉक्टर यान डनबर दोनों ने ये साबित किया कि पशु चिकित्सक होने के केवल इलाज करना नहीं बल्कि करुणा, समझ, शिक्षा और समाज सेवा का कार्य है। इनकी कहानियों पर उस विद्यार्थी के अनेक विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है जो पशु चिकित्सक को अपना जीवन साथी, जीवन पथ बनाना चाहते हैं। साथियों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आशा करूंगा पशु चिकित्सा के बारे में, वेटनेरियन के बारे में एक अच्छा करियर विकल्प आपको समझ में आया और साथ ही साथ मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ ये करियर है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपकी रुचि है इन इस विषय में, पशु के प्रति आपका प्यार है, तो निश्चित तौर पे आप इस करियर को अपना ध्येय बनाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं ढेर सारी खुशियों के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ये है लल्लू, ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण। तू क्यों रोता चंदर भान, माने पीटा मेरी जान। ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान। ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान। बचा ले अपने घर की शान, पी ले बीड़ी खा ले पान।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

प्यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यू हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यू हमसे न कतराओ, यारो सूरत।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनीरी आवाज।
1: ओ, रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो बच्चों।
1: हेलो दीदी,
0: कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे।
0: और तुम लोग की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है ना?
1: हाँ।
0: तो फिर तो कोई भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता होगा।
2: हाँ, दीदी घर पे बोर हो जाते हैं।
0: घर पे बोर हो जाते हो? दोस्तों के बिना तो हम सब बोर हो जाते हैं ना।
1: हाँ दीदी।
0: तुम लोग के सारे दोस्त स्कूल में हैं या कुछ दोस्त घर के पास भी रहते हैं?
3: कुछ दोस्त घर के पास रहते हैं।
0: अच्छा, आदि के कुछ दोस्त घर के पास रहते हैं। कौन कौन रहता है आदि के दोस्त?
4: यश, देवत, आर्यन और विवेक।
0: अरे वाह, आदि के तो बहुत सारे दोस्त हैं। और सताक्षी?
5: मेरी भी रहती है एक फ्रेंड।
0: एक फ्रेंड रहती है घर के पास। और भुगना?
6: मेरी तो अपार्टमेंट है ना, इसलिए बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मेरे से कम उम्र में। इवलेन, ईथन, वैष्णवी, कार्तिक, अनन्या।
0: मतलब ये सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपसे छोटे हैं?
6: हाँ, बहुत छोटे।
0: कितने बड़े हैं?
6: फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे।
0: अरे वाह, तो हमारे दोस्त तो हमसे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं।
6: हाँ,
0: है ना बच्चों?
2: हाँ।
0: दोस्ती की तो कोई एज नहीं होती, लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स तो हमारे वही बनते हैं जो हमारे साथ में पढ़ते हैं।
6: हाँ।
0: क्योंकि उनके साथ हम दिन भर रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, है ना? और पंकज?
2: हाँ दीदी।
0: हमारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे।
2: हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ज्यादा स्कूल में ही।
0: ज्यादातर स्कूल में ही है।
2: हाँ।
0: घर के पास कोई भी दोस्त नहीं है जिनके साथ क्रिकेट खेलते हो?
2: हाँ, ऐसे तो बहुत है क्रिकेट खेलने वाले दोस्त, लेकिन स्पेशल फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है।
0: अच्छा, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त हैं?
2: अच्छे तो हैं।
0: कितने दोस्त?
2: मेरे अच्छे दोस्त दो हैं जो मेरे घर के पास रहते।
0: दो दोस्त हैं? वो आपके साथ में पढ़ते हैं कि आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं?
2: एक टेंथ में पढ़ता है और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ट्वेल्थ में पढ़ता है।
0: अच्छा, अरे वाह, मतलब आपके बराबर के ही हैं।
2: हाँ।
0: है ना? आदि, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है?
4: आयुष।
0: आयुष वो आपके साथ पढ़ता है? कब से आपके साथ में पढ़ता है आयुष?
4: फर्स्ट।
0: अच्छा, तो आयुष आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है?
4: मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुष और मेरी दोस्ती कब हुई। एक दिन जब हम पार्क में खेले थे, तब वो आया था और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं क्या। तो मैंने बोल दिया हाँ खेलो। तो उसके खेलने के बाद जब हम घर जा रहे थे, तो मैंने उसका नाम पूछा और उसने मेरा नाम पूछा। ऐसे ही दोस्ती हो गई हमारी।
0: ऐसे ही खेलते खेलते दोस्ती हो गई।
4: हाँ।
0: आयुष और आदि की। सताक्षी, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
5: मेरी बेस्ट फ्रेंड उन्नति है।
0: उन्नति, और कितने सालों से वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है?
5: वो 3 इयर्स से।
0: 3 इयर्स से। अच्छा, उन्नति आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड जो आपकी है, वो आपको सबसे ज्यादा पसंद क्यों है?
5: क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग है, इंटेलिजेंट है और बहुत ही फ्रेंडली है।
0: अच्छा, वो बहुत केयरिंग है, तो क्या वो आपकी बहुत केयर करती है?
5: हाँ, हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं।
0: तो कोई सिचुएशन आपको ऐसी याद है, कोई ऐसी बात जो उसके बारे में आपको याद हो?
5: हाँ, एक बार एक मेरी फ्रेंड है, बहुत झगड़ा करती है मुझसे। तो एक बार वो उससे मेरे से बहुत बुरा वाला झगड़ा कर लिया था, तो उन्नति ने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था।
0: अच्छा, मतलब उन्नति ने जाके उसको समझाया था?
5: हाँ।
0: बेस्ट फ्रेंड्स की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो प्यार से समझाते हैं, और अगर हम कोई भी गड़बड़ कर दें तो उसको क्या करते हैं?
5: सॉल्व करते हैं।
0: सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, है ना? भुवना, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
6: मेरे बेस्ट फ्रेंड 4 लोग हैं। निवेदिया, सुश्रुता, आकांक्षा, विंध्या।
0: ये सब आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं?
6: नहीं, विंध्या तो दूसरी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन ये तीनों मेरे साथ ही है। लेकिन विंध्या जब मैं छोटी थी तब से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
0: अच्छा, मतलब विंध्या आपकी सबसे पुरानी दोस्त है।
6: हाँ।
0: उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है?
6: वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है।
0: बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो कोई सिचुएशन आपको याद है जब उसने आपको अंडरस्टैंड किया हो?
6: हाँ, एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, ये हुआ, तो मैंने कुछ बात नहीं की। छोटे लोग आते हैं और पूछते क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बहुत इरिटेशन होता है, लेकिन वो अच्छे से समझती और सॉल्व करती है, प्यार से बात करती है और बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है।
0: अच्छा, मतलब और लोग पूछते हैं तो आपको बुरा लगता है?
6: हाँ।
0: लेकिन वो इतने प्यार से आपसे बात करती है और पूछती है,
6: मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों की ये खूबी तो होती है कि वो हमसे इतने प्यार से बात करते हैं, उन्हें पता होता है जब हम टेंशन में हैं, तो इतने अच्छे से बात करते हैं कि हमारी सारी टेंशन हम उन्हें बता देते हैं, और फिर आपको अच्छा महसूस भी होता है ना?
6: हाँ।
0: और बाकी तीनों फ्रेंड्स?
6: वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना बड़ा सिचुएशन नहीं आया था कि मैं उनसे इतना बात करूं, लेकिन वो बहुत अच्छी दोस्त है विंध्या।
0: सिचुएशन आने पे हमारी अच्छी दोस्तों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज और उभर कर

0: पंकज आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है?
1: मेरे बेस्ट फ्रेंड है सैंडी और एक हर्षित है।
0: सैंडी और हर्षित,
1: ये उस टाइम की बात है जब मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड हर्षित फ्रेंड नहीं बने थे। तो हम पहले शांति उन्हें मिला करते थे, उस वक्त मैं उसे नहीं जानता था और ना वो मुझे जानता था, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ गेम खेलता था जिसमें हम फाइटिंग करते थे एक दूसरे से। तो हर्षित को मैं जानता नहीं था और वो मुझे आके मार के चला जाता, तो इस बात पर मुझे गुस्सा आया और मैं जब उसे मारने गया तो वो जाके बाथरूम के पीछे छुप गया। तो उसके बाद वो जब भी मुझे मिलता मैं उसको मारने के लिए भागता, लेकिन वो हमेशा भाग जाता क्योंकि वो मुझसे तेज भाग सकता है। तो इस टाइम मतलब हमें पता ही नहीं चला कि ऐसी लड़ाई लड़ाई में हमारी फ्रेंडशिप कब हो गई।

0: सैंडी की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है कि मैं कितना भी परेशान होता हूँ लेकिन उसके पास रहता हूँ तो मैं अपनी परेशानियाँ भूल जाता हूँ।
1: अच्छा, आप अपनी परेशानियाँ भूल जाते हो।
0: हाँ।
1: तो कोई ऐसी बात आपको याद है जब आप बहुत परेशान हुए हो? कभी पढ़ाई की कोई टेंशन हुई हो या घर की कोई टेंशन हो और आप सैंडी के साथ हो और फिर सब भूल गए हो?
0: हाँ, वैसे एक बार फ्रेंड से झगड़ा हुआ था किसी दूसरे फ्रेंड से, तो मैं अपने फ्रेंड सैंडी से मिला और उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मतलब अपने प्रॉब्लम ही भूल जाते हैं।
1: मतलब वो बहुत सारी मस्ती करता है आपके साथ।
0: हाँ,
1: कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, और चाहे हम कितना भी सीरियस क्यों ना हो, हम वो सब उनकी मस्ती में भूल जाते हैं। आदि, क्या आपका भी दोस्त आपसे बहुत मस्ती और मजाक करता है?
2: हाँ
1: हाँ, और आप क्या करते हो अपने दोस्त के साथ?
2: मस्ती और मजाक।
1: अच्छा, हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो हमने बात की, पर हम भी तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ना?
2: हाँ।
1: तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद की हो?
0: हाँ, बहुत बार की है।
1: बहुत बार की है, तो पंकज बताएगा हमें।
0: जी दीदी।
1: पंकज, क्या आपके सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने सैंडी की मदद की हो?
0: सैंडी का तो याद नहीं, लेकिन मैंने हर्षित की भी हेल्प की थी एक बार।
1: अच्छा, क्या मदद की थी?
0: उसे आई साइट है तो उसके एक बार ग्लासेस टूट गए थे।
1: उसके ग्लासेस टूट गए थे तो आपने क्या किया फिर?
0: तो उसके पास पैसे नहीं थे और उसे डर लग रहा था कि घर पे कहीं डांट ना पड़े, तो उसे मैंने पैसे दिए थे और उसके ग्लासेस 2 दिन के अंदर ठीक करवा के वापस दिए थे।
1: लेकिन आपने उसे पैसे कैसे दिए? अपने मम्मी से पूछ के?
0: मम्मी ने मुझे दिए थे पॉकेट मनी।
1: अपनी पॉकेट मनी से आपने उसकी मदद की?
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि अपनी पॉकेट मनी से आप उनकी मदद करें। लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी बात आए जहाँ आपको ज्यादा जरूरत हो तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। भुवना, आपको कोई ऐसी सिचुएशन याद है?
3: हाँ, एक दिन हमें सडन टेस्ट हुआ तो टीचर ने 2 मिनट दी सबको रिवाइज करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो साइंस सब्जेक्ट और वो पूर है उसमें। तो मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में कंबाइंड स्टडीज की और उसको समझाया क्या क्या है, और फिर हम दोनों ने एग्जाम इतना अच्छा लिखा कि हमको 10/10 मिला।
1: अरे वाह, दोनों को?
3: हाँ।
1: ये दोस्ती की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि हम आगे अकेले नहीं बढ़ते बल्कि अपने दोस्त को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।
3: हाँ,
1: है ना? तो आदि, आपने अपने दोस्त की कभी कोई मदद नहीं की?
2: की है।
1: क्या की? पढ़ाई में की कि खेलने में की कि मस्ती में की?
2: मैंने अपना फेवरेट गेम उसे दिया था, वो मांग रहा था इसलिए।
0: कैसे दिया?
2: जेंडर से।
1: अच्छा, मतलब आपका फेवरेट वीडियो गेम आपने अपने दोस्त को दिया?
2: हाँ।
1: अपना फेवरेट गेम शेयर किया। अच्छा, क्या तुम लोग का कभी कोई स्कूल चेंज हुआ है?
0: हाँ, हुआ है।
1: और पुराने दोस्त छूटे हैं?
2: हाँ।
0: नहीं, मेरे पुराने दोस्त नहीं छूटे।
1: अभी भी उनसे मिलते हो?
0: हाँ, अभी भी मिलता हूँ।
1: तो वो दोस्त अभी भी वैसे ही है या कोई दोस्ती में फर्क पड़ा है?
2: नहीं,
0: मेरे सारे दोस्त अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे।
3: मैंने तो नर्सरी और LKG अरबिंदो में पढ़ी, तब से मैं एक ही स्कूल में ही हूँ, तो मुझे कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो छोटे हैं ना, मैं भूल गई।
1: अच्छा, मतलब लेकिन आपके दोस्त वही हैं हमेशा से।
3: हाँ।
1: कभी चेंज नहीं हुए। और आदि तो अभी बहुत छोटा है, है ना आदि? तो आपके दोस्त तो अभी भी वही है।
2: हाँ।
1: ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पुराने दोस्त हमसे छूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, लेकिन तब भी हमारी दोस्ती हमेशा कैसी रहनी चाहिए?
2: अच्छी।
1: हाँ, जैसे पहले थी वैसी ही रहनी चाहिए, चाहे स्कूल चेंज हो जाए, चाहे हम दूसरी क्लास में आ जाएं, तब भी हमारे पुराने दोस्त हमें वैसे ही लगने चाहिए।
2: हाँ।

0: अच्छा, अब तो हमने बात की अपने बेस्ट फ्रेंड की, लेकिन आपको पता है एक और बेस्ट फ्रेंड हमारे पास होता है।
1: हाँ।
0: कौन?
1: माँ।
0: हाँ, मम्मी, क्योंकि मम्मी से भी तो आके हम सब बातें बताते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: तो किस किस की बेस्ट फ्रेंड उनकी मम्मी है?
1: मेरी।
0: और पंकज?
2: मेरी भी है।
0: आदि?
3: मेरी भी है।
0: अच्छा, तो मम्मी के बारे में बताओ, मम्मी के साथ दोस्ती के बारे में भूपना हमें बताएगी।
3: माँ के साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, इतनी अच्छी समझती है कि मुझे कंसोल करती है कुछ हुआ तो, और मुझे पढ़ाई में हेल्प करती है जैसे फ्रेंड्स करते हैं, और सभी बातों में मेरे साथ एंजॉय करती है, कुछ भी जोक्स हो कुछ भी मुझे समझाती है और अच्छे से बात करती है।
0: और सताक्षी?
4: मम्मी मुझे ढेर सारी चीजें बनाना सिखाती है और भी बहुत सारी चीजें सिखाती है, और मैं उनके साथ हर एक प्रॉब्लम शेयर करती हूँ जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ करती हूँ।
0: हाँ, तो मम्मी इसीलिए हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है क्योंकि वो हमें हर सिचुएशन से निकाल सकती है, हर सिचुएशन में हर बात हम उन्हें बता सकते हैं और हेल्प उनकी ले सकते हैं, है ना पंकज और आदि?
2: हाँ।

0: अच्छा अब मुझे ये बताओ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब जब अभी कोई आपको प्रॉब्लम हो या आपकी छुट्टियां हैं, आपको कुछ चाहिए हो, तो मम्मी पापा तो साथ में होते हैं, बट क्या दोस्तों से भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो?
1: हाँ,
0: क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने दोस्तों से? सताक्षी,
1: वो बहुत ही शेयरिंग हो और मतलब एक दूसरे को समझने वाले हो, क्योंकि जब तक वो लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो फ्रेंड्स नहीं कहलाएंगे अच्छे, और फिर झगड़ा होता रहेगा एक दूसरे में।
0: और पंकज आप क्या एक्सपेक्ट करते हो?
2: मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी मुझे मेरे फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़े तो वो कभी मुझे मना नहीं करें। जैसे हर फ्रेंड की आदत होती है कि चाहे खुद को कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर किसी फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए।
0: मतलब जब हमें जरूरत पड़े तो हमारा दोस्त हमारे साथ हो।
2: हाँ
0: और भुवना, आप क्या चाहते हो अपने दोस्त से?
3: मेरे दोस्त ने, मैं ये चाहती हूँ कि वो हंसते बात करे, क्योंकि थोड़े लोग मेरे दोस्त ना बुरे तरह से बात करते हैं, कि बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात ना इतना इरिटेटेड हो जाते हैं कि दूसरे लोगों को बहुत बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त हंसते बात करे और हर टाइम खुश से रहे।
0: आप चाहते हो कि आपके दोस्त कोई भी ऐसी बात ना करें कि किसी को बुरा लगे,
3: हाँ
0: और खुशी से सबके साथ रहे।
3: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है भुवना। और आदि?
4: मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और दूसरों की हेल्प करते रहें।
0: दूसरों की हेल्प करते रहें। वाह, तो पता है बच्चों, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी जो हमारे दोस्तों से हैं वो कैसे पूरी होंगी, किसी को पता है?
1: जब हम लोग खुद के साथ इसी तरह से बिहेव करें।
0: हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो आप दूसरों से चाहते हैं वैसा आप बन के दिखाइए तो आपको वो जरूर मिलेगा।
3: हाँ।
0: तो ये सब चीजें जो आप अपने दोस्तों से चाहते हैं, वो अगर आप उनके साथ करेंगे, वही व्यवहार आपको वापस उनसे जरूर मिलेगा।
1: लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स है वो सभी जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे, वो सभी वैसी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, वो सभी ऐसे हैं, तभी तो वो हमारे दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना बच्चों?
1: हाँ।
0: लेकिन अगर कभी कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ?
2: हमें उनका साथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
0: तो अगर आप लोग के दोस्तों से कोई गलती हो जाएगी तो क्या करोगे?
2: उसे माफ कर देंगे
0: और बाद में उसे प्यार से समझाएंगे।
2: बिल्कुल यही होता है, अभी भी
0: यही होता है।
1: हाँ।
0: अच्छा, क्या तुम लोग का अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ है?
1: हाँ, हाँ।
2: हाँ, हुआ है।
0: अच्छा, तो कौन सबसे पहले बताएगा झगड़े के बारे में? पंकज, अगर आपका दोस्त आपसे झगड़ा करे किसी गलत काम के लिए, आपको करने को बोले कि कोई गलत काम है जो वो बोले कि आपको करना है, आपका बहुत अच्छा दोस्त, तो आप क्या करोगे?
2: फिलहाल तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरे किसी अच्छे दोस्त ने कोई गलत काम करने को कहा हो। मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे समझदार हैं और कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते या गलत काम नहीं करते।
0: कोई कभी बोले तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में?
2: उस सिचुएशन में उसे डायरेक्टली मना कर दूंगा।
0: डायरेक्टली मना कर दोगे? और अगर वो आप पे गुस्सा हुआ तो?
2: अगर वो मुझ पे गुस्सा हुआ तो मैं उसे समझाऊंगा, समझे तो ठीक है। तो हमें गलत काम तो हमें नहीं करने चाहिए नहीं, और फ्रेंड भले ही कितना भी अच्छा हो लेकिन गलत काम करने को कहता है तो उसे मना कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, फ्रेंड कितना भी अच्छा हो अगर गलत काम करने को कहे तो हमें मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड के लिए भी गलत है ना? दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, गलत काम हमें उस दोस्ती में कभी
1: नहीं करना
0: है ना आदि? आदि कोई गलत काम तो करता नहीं और आदि के दोस्त भी नहीं।

0: अच्छा अब मुझे बताओ दुखी, दोस्तों के साथ तुम्हारी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है?
1: मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है मेरे बर्थडे टाइम पे, मेरे खूब सारे फ्रेंड्स आए थे स्कूल के और हमने खूब ज्यादा मस्ती की थी।
0: बर्थडे पे तो दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है। और आदि, सबसे ज्यादा मजा दोस्तों के साथ कब आया?
2: जब मेरा बर्थडे हुआ था तभी आया था।
0: बर्थडे स्कूल में मनाया था कि घर पे?
2: दोनों जगह।
0: दोनों जगह दोस्तों के साथ?
2: हाँ।
0: अरे वाह, तब तो टू टू टाइम मजा आया आपको। और पंकज?
3: मुझे मेरे दोस्तों के साथ मजा आया था। एक बार जब मैं सुंदर माता मंदिर घूमने गया था अपने फ्रेंड्स के साथ।
0: घूमने गए थे तो वहाँ पे क्या क्या किया दोस्तों के साथ?
3: वहाँ पे बहुत मस्ती की, बस हम वो भूल नहीं सकते।
0: और भुवना?
4: जब हम पिकनिक गए वाटर पार्क।
0: वाटर पार्क पिकनिक गए स्कूल से?
4: हाँ।
0: अच्छा, तो क्या क्या किया वहाँ पे?
4: बहुत सारी गेम्स थी, हम सब दोस्तों ने पैसे पैसा बांट लिया और हम सब बहुत सारे गेम्स ट्राई की और इतना मजा आया कि मैं भूल नहीं सकती वो मेमोरी।
0: मतलब जब हम दोस्तों के साथ ग्रुप में बाहर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे हमारा बर्थडे हो चाहे पिकनिक हो, तो हमें बहुत मजा आता है।
4: हाँ।
0: ठीक है बच्चों, तो हमने दोस्तों के बारे में बात की और ये भी बात की कि हमें दोस्ती निभानी भी जरूरी है कि नहीं?
4: हाँ।
0: तो जो एक्सपेक्टेशन हम अपने दोस्तों से रखते हैं वो पहले हमें पूरी करनी है, और अगर हमारा दोस्त कभी कोई गलत काम करने को कहे तो हमें उसकी बात
4: नहीं माननी चाहिए
0: क्योंकि वो हमारे दोस्त के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है।
1: हाँ।
0: है ना बच्चों?
4: हाँ।
0: और क्या जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं बस वही आपके दोस्त होते हैं, या जो लोग जिनसे आप डेली मिलते हो, जिनके साथ रहते हो, वो भी आपके दोस्त होते हैं?
4: सब लोग हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन हमको जो बहुत सारे दिन से हमको बहुत रिलेशन हुआ वो हमारे खास दोस्त होते हैं।
0: वो हमारे खास दोस्त होते हैं, लेकिन जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं अगर उन्हें भी दोस्त बना ले तो उनके साथ भी हम इंजॉय कर सकते हैं।
4: हाँ।
0: है ना दीदी?
1: मुझे एक शायरी याद है, ये शायरी उस वक्त पे डिपेंड करती है जब सारे दोस्त छूट जाते हैं और हम उन दोस्तों को याद करते हैं। शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हसीन पल मिल जाए, चल बैठे क्लास की उस लास्ट सीट पे, शायद फिर वो पुराने दोस्त मिल जाए।
0: अरे वाह, तो फिर सब लोग तालियां बजाएंगे क्योंकि बचपन की जो दोस्ती होती है वो सबसे स्ट्रांग रहती है। जब आप बड़े हो जाओगे तब भी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी।
3: हम भी वो टाइम मिस करते हैं।
0: इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करो और उस दोस्ती को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखो।
3: हाँ निधि।
0: लास्ट में ये बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हो?
3: मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कहना चाहता हूँ वो अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाए लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूले और मुझे जब भी उसकी जरूरत हो वो हमेशा मेरे पास हो।
0: और उसे जब आपकी जरूरत हो
3: तो मैं भी उसके पास होऊंगा।
0: मतलब उसे जब भी आपकी जरूरत होगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए, आप उसके पास होंगे।
3: हाँ जी।
0: भुवना?
4: कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कहीं भी हो जो शेयर करे, और ताकि हम दोनों बात करें और उसको समझाए।
0: मतलब?
4: ऐसा बात करिए और हम दोनों को कंसोल करिए ताकि उसको इतना बुरा ना लगे और वजन थोड़ा कम हो जाएगा।
0: मतलब आपकी फ्रेंड जहाँ भी हो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो शेयर करे ताकि वो प्रॉब्लम हल्की हो जाए और उसका
4: हाँ।
0: वजन कम हो जाए और एक सलूशन आप लोग मिलके निकालो।
4: हाँ।
0: है ना? अपने बेस्ट फ्रेंड को आदि क्या मैसेज दोगे?
2: वो जहाँ भी हो मुझे ना भूले जब भी वो बड़ा हो जाए।
0: जब वो बड़ा हो जाए आपको नहीं भूले, इतने नटखट प्यारे आदि को कौन भूल सकता है?
3: कोई नहीं।
0: और आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को
2: नहीं भूलो।
0: सताक्षी?
1: मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने इन स्कूल टाइम में खूब ज्यादा मस्ती करें और फिर एक दूसरे को कभी ना भूले, क्योंकि फिर 11th में तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हॉस्टल में चले जाएंगे, तो हम लोग एक दूसरे को कभी भी ना भूले।
0: दोस्ती अगर सच्ची है तो डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो एक दूसरे को नहीं भूलते और एक दूसरे की हमेशा खुशी चाहते हैं, जिससे दोस्ती बनी रहती है। ये था हमारा कार्यक्रम, आज हमने बच्चों से बात की दोस्ती के बारे में और दोस्तों के बारे में। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। रिश्तों को एक नई नजर से देखने का ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब ये लगता है कि जिन रिश्तों से कई बार हम दूर भागते थे, लगता था कि ये रिश्ते जो हमारे घर में बने हुए हैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वही कहीं उनमें दरार हो पड़ती नजर आ रही है। बहुत कुछ ऐसा था जो हम करना चाहते थे, कहना चाहते थे, हिम्मत नहीं मिल रही थी। खुद की पहचान हुई, परमात्मा की पहचान, और फिर ये सारे रिश्ते भी कितने आसान होते चले गए। आज इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर हमारा कर्म क्षेत्र, जहां हम काफी वक्त गुजार रहे होते हैं, वहां कैसे होने चाहिए हमारे रिश्ते, क्योंकि वहां फिर हम आत्माओं के कांटेक्ट में होते हैं और उनके साथ पूरा दिन गुजार रहे होते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी, द वे you know, the kind of response we are getting and the way things are happening. घर के ही वो रिश्ते जो लगता था कि बहुत कटु हो गए हैं, इतने दूर दूर चले गए हैं, जब हमने कहा था पिछली बार बात की थी कि ऐसे बैठ गए हैं, आज जो लगता है कि फिर मुड़े हैं और घर में एक अच्छा सा माहौल आता नजर आ रहा है, एफर्ट्स शुरू

0: होती है जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, उन चीजों को सिंपल करते जाएं, क्योंकि उससे पहली बात हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली द रिलेशनशिप विल गेट अफेक्टेड. सो एवरी टाइम यू गेट हर्ट, विच वी फील कि आई गॉट हर्ट, दैट एवरी टाइम आई गेट हर्ट बिकॉज ऑफ यू, विच आई फील आपने ऐसा कहा तो आई गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ यू, तो हमें सिर्फ याद रखना है कि आई एम नॉट हर्ट बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ माई ओन वीकनेस. तो अगर मैं अभी चाहूं तो एक सेकेंड में इस संकल्प को फिनिश कर सकती हूँ. और इसको बार बार ट्राई करें, ये एक बारी में नहीं होगा. इवन इफ वी से इट्स अ थॉट अवे, इट इज अ थॉट अवे, लेकिन ये अ थॉट अवे हमें बार बार करना पड़ेगा कि हर बार हमें कोई बात थोड़ा सा तकलीफ देती है, हर्ट करती है, किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है, आप अपने आप एक बैठ कर देखें कि इस क्षण मेरे पास चॉइस है कि मैं कितनी देर इस बात को पकड़ कर रखना चाहती हूँ, कितना बुरा मैं उसके बारे में फील करना चाहती हूँ,
1: बार बार याद करना चाहती हूँ.
0: इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल इन मी, एंड कितनी जल्दी मैं उसको छोड़ सकती हूँ. और बार बार ट्राई करके देखे, छोड़ दे, इट्स ओके, लेट गो, इट्स नॉट द अदर पर्सन, इट्स मी, आई हैव टू लेट गो हियर, छोड़ दे, फिनिश्ड, इट्स ओके. एंड जितनी बार इट्स ओके बार बार कहेंगे, जितनी जल्दी कहेंगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो कितना सिंपल है, और फिर वो बार बार करना बहुत इजी हो जाएगा. थोड़े बार थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने बात इतनी बड़ी कर दी, बात बहुत बड़ी कर दी, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर वो ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर दे एकदम. तो वो छोटा करने की कला हमारे अंदर है, उसको बार बार यूज करते जाएं. और कहते हैं जो शक्ति को बार बार यूज करते हैं वो शक्ति और भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. और फिर आप एक समय पर पहुंच जाएंगे जहां आप हर एक बात को बहुत जल्दी से छोटा कर पाएंगे. एफर्ट विल नॉट बी नीडेड, वो आपका नेचुरल संस्कार बनता जाएगा. लेकिन इसको सिर्फ सुनने तक नहीं रखे अभी, यू नो, बिकॉज इट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू वर्क, दिस विल वर्क, बस उसको करना शुरू.
1: बिल्कुल, हर बार की तरह अनुभव जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम किसी भी प्रोसेस में हो, वी हैव टू कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट डूइंग. एक्चुअली जब हम कहते हैं कि मैं नॉन डूइंग में हूं, तो नॉन डूइंग सिचुएशंस के साथ हो सकता है, लेकिन अपने इस थॉट के साथ नहीं हो सकता.
0: एंड कई बार लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है, पर देन मुश्किल यहाँ लग रहा है क्योंकि हमने किया नहीं है. जब वो एक बार कर लेंगे, बिकॉज ये फिजिकल काम नहीं है, यू नो, कोई फिजिकल काम मुश्किल हो सकता है कि सपोज आप मुझे कहें अभी ये सोफा उठा लो, हो सकता है ऐसे नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल है, आई कैन नॉट पिक इट अप अलोन. लेकिन यहाँ जो काम करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी आंतरिक पावर चाहिए, और वो हर आत्मा के पास है. और ये पावर जितना हम यूज करते हैं ये बढ़ती जाती है. तो बाय सेइंग कि ये मुश्किल है, वी एक्चुअली गिविंग अप एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग समथिंग विच इज वेरी सिंपल. वो जब कर लेंगे तब पता चलेगा ये तो बहुत ईजी है.
1: और सबसे बड़ी बात, पहली बार तो मौका आया खुद करने का. अभी तक तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते थे कि वही करेगा तो मैं ठीक होंगी. आज तो ये हमारे हाथ में ताकत आ गई है कि आई कैन डू इट.
0: एंड देन बिकॉज हम वेट कर रहे थे कि आप करेंगे, तो मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था, तो आई हैड टू कीप वेटिंग फॉर यू कि आप कुछ करेंगे, देन आई विल फील गुड. तो उस वजह से क्या हुआ, मेरा फील गुड मोमेंट्स बहुत कम होते गए,
1: मिला ही नहीं, बिकॉज मैं सारी जिंदगी इंतजार में निकाल दी.
0: यस, अब जब पता चलता है कि आई कैन फील गुड व्हेन आई वांट टू फील गुड, I can increase the duration of that during the day.
1: That's wonderful, actually. Feeling good factor. Feel good factor को हम तलाशते रहते हैं, वो within ही है और खुद हम ही decision maker हो सकते हैं. जैसे शिवानी घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और काम पर चलते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा धर्म क्षेत्र, एक कर्म क्षेत्र है जो कि सबको जाना ही है. अब कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भोगना ही है, जहाँ परमानेंट नौकरियां हैं तो वहां तो मतलब करना ही है, एडजस्ट करना ही है. जैसे हम इन लॉस के साथ बात कर रहे थे कि एडजस्ट करना ही है. ऑफिस पहुंच के, घर से बाहर निकल के ऑफिस पहुंच के क्या ऐसा हो जाता है, एक तो मेरा चेहरा बदल जाता है, मैं कुछ और सामने आता हूँ, कुछ और चेहरा लेकर पहुंचता हूँ वहां पर, कि वहां पर जो डिसकंटेंट है उसके बाद उसकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं होती.
0: घर में और ऑफिस के वायुमंडल में एक वर्ड है जो सबसे बड़ा चेंज, जो फैक्टर आता है, घर में है कोऑपरेशन और ऑफिस में है कंपटीशन. तो उससे पूरा वायुमंडल ही चेंज हो जाता है. जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मूड कैसा होता है कि हमें ऑफिस जाना है, और जब शाम को 6 बजने वाले हैं तब हमारा मूड क्या होता है कि घर जाना है. व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू? Do I look forward to going to work? or do I have to go to work again, you know? Do I

0: वॉन्ट टू गो टू वर्क और डू आई हैव टू गो टू वर्क. एंड शाम को 6 बजे कैसा फील करते हैं, दैट आई वॉन्ट टू गो बैक होम. तो घर में और ऑफिस में क्या अंतर है कि घर से ऑफिस जाने का मन नहीं करता लेकिन ऑफिस से घर आने के लिए मन करता है. फ्राइडे शाम को कैसा फील करते हैं या सैटरडे शाम को डिपेंडिंग ऑन व्हेन इज योर हॉलिडे एंड मंडे मॉर्निंग को कैसा फील करते हैं. बहुत डिफरेंस है. मंडे मॉर्निंग ऑलरेडी द डे स्टार्ट्स ऑन अ यू नो ओ अब एक पूरा हफ्ता
1: अनदर वीक
0: यस यू नो तो इट्स लाइक अ बोझ, एक बर्डन है जो हम कैरी कर रहे हैं क्योंकि परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑपरेशन है, बिलोंगिंगनेस है कि ये मेरा परिवार है. तो मेरा परिवार होने से दैट्स बिलोंगिंगनेस इज देयर. लेकिन ऑफिस
1: किसी और का है, काम करना है, पैसा कमाना है, वापस आना है.
0: यस और वहाँ कंपटीशन का वायुमंडल आज जो बन गया है. तो कोऑपरेशन घर पर है तो वायुमंडल पॉजिटिव होता है. ऑफिस में कंपटीशन होने के कारण वायुमंडल नेगेटिव होता है. घर में भी अगर कंपटीशन की भावना आ जाए, सपोज दो बहुएं हैं यू नो
1: वहाँ कॉन्फ्लिक्ट
0: है ना, तो वहां भी घर का वायुमंडल देखो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन हो जाता है, एक दूसरे को नीचे खींचने की भावना आ जाती है, एक दूसरे को यू नो पुल डाउन, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत, ये सारी बातें जो कंपटीशन में आती है. लेकिन कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कॉम्पिटिशन की दुनिया है. आज भी अगर पेरेंट्स से पूछते हैं आपके बच्चों को इतनी टेंशन क्यों है, जी कंपटीशन बहुत है. व्हाट इज कंपटीशन, किस चीज का कंपटीशन है. एंड बचपन से एक वर्ड हमें सिखाया गया, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यू नो तो दिस वर्ड इटसेल्फ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मतलब आप गला भी यू नो
1: काट के
0: लेकिन आपको कॉम्पिटिशन में आगे जाना है. तो ये जो भावना क्रिएट हो गई है तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे हो सकते हैं उस स्थान के, नेगेटिव वाइब्रेशन है. एंड दैट इज व्हाई द ऑफिस इन द होम विल ऑलवेज फील डिफरेंट, बिकॉज वहां पॉजिटिव वायुमंडल है एंड यहाँ एब्सोल्युटली उसका कॉन्ट्रडिक्ट.
1: आई थिंक बिकॉज वी आर एक्चुअली एंटरिंग दैट विद अ माइंडसेट आल्सो.
0: या इट इज अ माइंडसेट, ये हम सब, लेकिन हम सब ने बनाया वो, हम सब ने वो माइंडसेट बनाया कि ये कंपटीशन है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे आगे जाना है. एक भी अगर कोई नया आ गया तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं. सो इट्स ऑलवेज दिस फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन जो हमें पीछे खींच देती है. लेकिन हम अब इस कल्चर को अगर चेंज कर लें, द होल आइडिया ऑफ व्हेन विल आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू ऑफिस, जो मेरा ऑफिस भी एक घर की तरह हो जाएगा.
1: लेकिन सवाल यहाँ आता, सबसे बड़ा सबसे शिवानी ये कहते हैं कि घर पे तो हम 4 या 5 लोग ही हैं, ठीक है, सबको समझाया जा सकता है, पूरे माहौल को हम सब मिलके, क्योंकि एक व्यक्ति से माहौल नहीं बदलता है, तो मैं घर के माहौल को बदल सकता हूँ. और अगर मैं भी बदल जाऊं तो ठीक है, वो नहीं भी बदले तब भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. लेकिन वहां तो 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, सब नहीं बदलेंगे, तो मैं अकेला एक बदल के क्या कर लूंगा.
0: बात अंदर बदलने की है. जब हम अंदर बदलते हैं, वापस वही बात आ जाती है, हम अंदर बदलते हैं सब कुछ बदल जाता है. वो ही ऑफिस के लोग हमें डिफरेंट दिखाई देंगे व्हेन माय वे ऑफ लुकिंग एट देम. कंपटीशन किसका है, मेरा कंपटीशन सबके साथ है. व्हेन आई रिमूव दैट कंपटीशन फैक्टर कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, I'm not standing in any race.
1: Actually, we do say that at times, but I think we are not. Are part of it.
0: We are part of the race, na? So we need to change that belief system. वो belief system इतना strong है कि ये important नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कब तक वहाँ पहुँचना है. ये important हो गया कि मुझे इनसे आगे जाना. वो एक दूसरे को देखकर, जो हमने एक बार पहले भी बात की थी कि अगर हम drive कर रहे हैं हाईवे पे तो हम अपनी स्पीड पर जाते हैं, लेकिन जब हम एक रेस में जाते हैं एक दूसरी गाड़ी के साथ तो हम दूसरी गाड़ी की स्पीड के अनुसार अपनी स्पीड को चेंज करते जाते हैं. एंड कई बार हम बहुत ज्यादा अपने आप पर स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं जस्ट बिकॉज हम उसके साथ रेस कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करें तो जर्नी इज नॉट स्ट्रेसफुल एट ऑल. एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि दो लोग जंगल में जा रहे थे एंड सडनली उन्हें पता चला कि एक शेर उनके पीछे आ रहा है, तो दोनों भागने लगे. तो एक के पास शूज थे, रनिंग शूज थे बैग के अंदर, तो वो बीच में रुका और उसने यू नो वो शूज पहनने शुरू कर दिए. तो दूसरे ने क्या कहा कि आपको क्या लगता है कि ये शूज पहनने से आप यू नो यू कैन गो फास्टर देन दैट टाइगर. तो इसे नहीं, मैं टाइगर से ज्यादा फास्ट तो नहीं जा सकता लेकिन तुमसे तो फास्ट जा सकता हूँ, यू नो. सो आई एम you know, my whole way of looking at things is not, I'm not looking at the destination, I'm not looking at my goal, I'm not looking at where I have to reach, I'm just looking at who all is there in the race, and I want to be faster than them. तब वो स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा ना जो थोड़ा फास्ट जा रहा होगा, पर हम हमेशा उनसे फास्ट जाने
1: की कोशिश करते हैं। लेकिन डर ये है कि पोजीशन तो एक ही होगी ना, जब हम रेस में हैं तो जीतेगा तो वो जो जीता वही सिकंदर वाला जो होता है, तो एक ही पहुंचेगा, तो मैं क्यों नहीं।
0: एब्सोल्युटली, तो ये हमारे को अपने आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, अपने जीवन में प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगे। और ये एक जो बिलीफ सिस्टम है कि नेगेटिव अंडरकरंट से या कंपटीशन से हम ज्यादा आगे जा सकते हैं, इसको भी ट्राई करके देखना कि कोऑपरेशन से क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि आगे कौन जाएगा, इफ दैट इज ऑल्सो द क्राइटेरिया कि आगे की पोजिशन पर कौन पहुंचेगा। तो आज किसी भी कंपनी में हम देखें, किसी भी इंडस्ट्री में देखें, तो हर एक व्यक्ति का इमोशनल कोशेंट चेक किया जाता है कि हो सकता है एज एन इंडिविजुअल आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत केपेबल हैं, आप वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन शायद आप लोगों के साथ मिलजुल कर चलने की जब बात आती है तो आपके अंदर वो
1: इंटरनली
0: क्वालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं है। हर एक के साथ एडजस्ट होकर चलना, हर एक को अपने साथ लेकर चलना, तो शायद आप उस क्वालिफाइड नहीं है उस बात के लिए कि आपको वो टॉप पोजिशन पर लेके जाया जाए। क्योंकि अब वर्तमान समय जो वातावरण है, जो माहौल है इंडस्ट्री का, टॉप पोजीशन पर उन्हीं को लेकर जाया जाएगा जिनके अंदर वो स्टेबिलिटी की क्वालिटी है, जिसको हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट अ वर्ड कि आप पोजीशन से लीडर हैं, कि आप सीनियर मैनेजर हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन लीडरशिप आप एक क्वालिटी है जो एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए अगर वो आगे जाना चाहते हैं। लीडर अर्थात क्या, क्योंकि वर्तमान समय बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर डिस्कशन है कि लीडरशिप क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडरशिप इन वेरी सिंपल वर्ड वुड बी अ पर्सन जो किसी भी परिस्थिति में स्टेबल रह सकता, क्योंकि उनका रोल है औरों को अपने साथ लेकर आगे चलना। लेकिन अगर कोई परिस्थिति आती है जिससे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक टीम है, एक आईटी कंपनी है, एक टीम है, उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, एक मास तक काम करते रहे, कितनी भी साइज हो टीम की, 10 हो, 100 हो, डजंट मैटर। अब एंड डे पर पहुंचकर जब वो प्रोजेक्ट सबमिट करने का टाइम आता तो किसी कारणवश से कोलैप्स हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता है या उसमें कोई बहुत बड़ा एरर आ जाता है। अब उस टीम की हालत क्या होती है, वी जस्ट हैव टू विजुअलाइज दैट सीन कि डे एंड नाइट अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, फिजिकल बॉडी सबको इग्नोर करके हमने बस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर काम किया, सबने मिलजुल कर काम किया, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब उस टीम की हालत क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, क्या हो
1: जाएगा? एक्चुअली ब्लेम गेम,
0: देयर इज अ ब्लेम गेम,
1: ब्लेम गेम, टोटल ब्लेम गेम कि आपके कारण,
0: और सब एक दूसरे की गलती पॉइंट करना शुरू कर देंगे। तब उस समय जो ये था ऐसे वो सारा स्कैटर हो जाएगा और सब अपने को बचाने की कोशिश करेंगे और औरों को ब्लेम करते जाएंगे। उस समय जो वायुमंडल होगा वो बहुत ज्यादा तनाव का हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली डिस्टर्ब्ड, औरों को ब्लेम कर रहे हैं, हर एक दूसरे को नीचे खींच रहा है, अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी गलती नहीं थी। अब इस समय पर एक दूसरे से बात करने का तरीका कैसा हो जाएगा, पूरी भाषा चेंज हो जाएगी, लहजा चेंज हो जाएगा। अब ऐसे वातावरण में वो 10 या 20 लोगों की जो टीम है इसमें हम लीडर किसको कहेंगे?
1: मेरी जो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके इनको एक दोबारा एक बार फिर ये हौसला दे पाए कि हो सकता है,
0: और वो हौसला उसको वर्ड्स से नहीं देना है, बस वो जब अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा, किसी को ब्लेम नहीं करेगा, और जो प्रॉब्लम आई है उसको न देखकर अब सोल्यूशन को ढूंढना शुरू करेगा, एंड विद एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कि नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट दैट मैंने तो किया, इन्होंने नहीं किया, नो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब इसको ठीक कैसे करना है। तो क्या होगा, वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, उनका बात करने का तरीका ठीक रहेगा, उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि ये सब एक रहे, टूट ना जाए एक प्रोजेक्ट के पीछे। जनरली ऑफिस कल्चर में आज क्या है, प्रोजेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड नॉट द टीम. तो आप उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए एक दूसरे को कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट तो शायद पूरा हो जाएगा लेकिन टीम का क्या हुआ, वो तो सारी टूट जाएगी. अब ये जो व्यक्ति होगा जो ये इनर स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा, तो इनर स्टेबिलिटी के कारण वो आउटर भी स्टेबिलिटी को ले आएगा. अब इस केस में अगर आपको प्रमोशन देकर फाइनली किसी को वो पोजीशन वाले लीडर पे लाना पड़ेगा, तो आप उसी व्यक्ति को लाएंगे ना, आप उसको तो नहीं लाएंगे जो कंपटीशन में बस दूसरों को पीछे छोड़ के खुद आगे जाने की कोशिश कर रहा था. नहीं, ये क्वालिटी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय डिग्रीज बहुत है, आज डिग्रीज ज्यादा है, जॉब्स कम है, आईक्यू सबके पास है, लेकिन साथ साथ ईगो भी सबके पास है. और ईगो अर्थात लो ईक्यू, आपका इमोशनल कोशेंट हम में से मेजोरिटी का बहुत लो है. और वर्तमान समय अगर हमें आगे जाना है तो हमें हाई ईक्यू चाहिए, ये इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए. दिस इज द एसेट व्हिच एवरी इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर टुडे. और ये जिसके पास है वो पैसिव नहीं है, वो स्लो नहीं है, he or she will really move ahead.
1: So yeah, that's important. What being said na, ki agar stable hai to passive hai.
0: Create our mindset based on how we feel. Khud kaisa mehsoos kar rahe. Why do I go to work? Why do you go to work? What's the reason?
1: I enjoy.
0: You enjoy. But agar wo enjoyment hi khatam ho jaye? See, I go to work because I enjoy. Ab wo enjoyment fir honi chahiye. Hum ऑफिस क्यों जाते हैं, हम काम इतना मेहनत क्यों करते हैं?
1: हाँ, हमें से ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं.
0: ओके, विच इज फाइन, विच इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन हम फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस, यू नो, फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली. एंड उस हैप्पीनेस में एक एस्पेक्ट होता है मटेरियल कम्फर्ट, और वो मटेरियल कम्फर्ट अर्न करने के लिए आई हैव टू गो टू वर्क. लेकिन उस मटेरियल कम्फर्ट के साथ साथ हैप्पीनेस भी तो मेरे जीवन में चाहिए. आज हम ऑफिस तो जा रहे हैं, मटेरियल कंफर्ट भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की बातों की वजह से और खुद उसको कोप नहीं करने की वजह से हम अपनी हैप्पीनेस गवा भी रहे हैं. और वो अपनी हैप्पीनेस गवा रहे हैं, मतलब टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, और वही टेंशन फिर घर आ रही है. तो घर पर लाना चाहते हैं खुशी, चाहते हैं कि घर का वायुमंडल बहुत खुशी से भरा, लेकिन आज घर का वायुमंडल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है. एंड अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट इज कैरिंग स्ट्रेस फ्रॉम वर्क हो,
1: क्योंकि मैं खुद कैरी कर रहा हूँ और मैं कह ये रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ,
0: एब्सोल्युटली
1: या कर रही हूँ.
0: एंड घर पे अगर कोई हमारे से हमारा टाइम या एनर्जी डिमांड करते हैं तो वी डोंट लाइक इट, बिकॉज वी आर एग्जॉस्टेड, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है. एंड फिर अगर कोई हमें कहे कि आप इतना ज्यादा टाइम उधर स्पेंड करते हैं, तो आप कहते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं. सो वी आर ऑल अ लिटिल कंफ्यूज्ड, क्योंकि कहीं हो सकता है कि मुड़कर आपके बच्चे कल आपको कहे कि मुझे शायद इतना सारा ये नहीं चाहिए था कि आप ये भी देते, ये भी देते, ये सारा सामान भी खरीद देते, लेकिन शायद अगर आप मेरे साथ थोड़ा समय और होते, मे बी दैट इज व्हाट आई वांट.
1: और मे बी यू नो, हम बच्चे को ये भी आइडिया दे रहे हैं, एक रॉन्ग बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं
0: कि जितना
1: पैसा ही हैप्पीनेस है. यू नो, लाइक इफ यू हैव मनी यू आर हैप्पी, सो ही विल आल्सो फील,
0: एंड ही विल आल्सो ग्रो अप इन दैट. एंड हम भी तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की भावना भी हम उसको अभी से ही तो सिखा रहे हैं. एंड वी आर ऑल्सो टीचिंग हिम कि नहीं, आपको ये अचीव ही करना है, इफ यू डोंट अचीव यू आर अ फेलियर. तो वो सारे जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स बने वो फिर हम घर पर भी इम्पोज करते हैं. तो कहीं ना कहीं रुक कर, इट डजेंट मीन कि हम यू नो विदड्रॉ कर जाएं और हम अपना प्रोग्रेस नहीं करें, करियर में आगे नहीं बढ़े, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लेकिन कहीं ना कहीं रुक कर इंट्रोस्पेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई वांट, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, बिकॉज इट्स अ वैल्यूएबल लाइफ, व्हाई नॉट गेट व्हाट आई वांट.
1: सो शिवानी, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो, वी विल कम टू ये मिडिल लेवल वाला जो है, उससे पहले हम फ्रेशर्स की बात करते हैं.
0: ओके,
1: वो फ्रेशर्स जो एक जिंदगी बदल देने की उम्मीद लेकर और इतने सपने लिए एक कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं और इतनी एनर्जी के साथ करते हैं, व्हाट रियली हैपेंस टू देम, यू नो, कि वो मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचते पहुंचते डिप्लीट हो चुके होते हैं. क्या वो विजन लेकर, अगर पॉजिटिविटी लेकर भी पहुंचे थे, गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसका एक हिस्सा बन के फिर डिप्लीट होने लगे.
0: राइट, क्योंकि एक एनर्जी सोर्स हमारे पास है. यहाँ हम जा रहे हैं एक ऐसे वायुमंडल पे जहाँ बहुत लोग हैं उसको खींचने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय आप एक बहुत हाई एनर्जी लेवल के साथ वहां जा रहे हैं और बहुत लोग होंगे जिनको आपके आने से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी, और तब छोटी छोटी बातें हो जाती हैं आपको नीचे खींचने की, आपके अगेंस्ट कुछ के, जो भी छोटी छोटी बातें इस तरह से ऑफिस में हो जाती हैं। अब उस वायुमंडल में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना और अपनी विशेषता को कायम रखना,
1: और फिर रिजेक्शंस जब मिलनी शुरू होती हैं उस हर्ट को, क्योंकि एक एनर्जी लेके जब गए होते हैं, इफ आई कैन एक्चुअली गो बैक टू माय ओन सेल्फ आल्सो, व्हेन वी आर वेरी यंग वी हैव लॉट ऑफ होप, लेकिन पहला रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन एंड देन यू,
0: हमारे पास बहुत एनर्जी है उस समय, हमारे पास बहुत क्रिएटिविटी है, क्योंकि नेगेटिविटी अभी तक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं की ना, तो हमारे पास बहुत क्रिएटिविटी है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, हम बहुत नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। क्या होता है कि जिन्हों को हमारी वजह से इनसिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज को रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, और उसका तरीका होगा हमारे अगेंस्ट कुछ कहना, हमें नीचे खींचना, हमारे आइडियाज को अप्रूव नहीं करना। अब ये सारी बातों जब आएंगी हमारे सामने, इस टाइड के अगेंस्ट खड़े होना, इसके लिए पावर चाहिए। अब ज्यादातर क्या होगा, एक बात आई सहन कर ली, दूसरी आई सहन कर ली, 10 बातें आई सहन कर ली, लेकिन वो 10 बातें सहन करते करते अपनी जो पावर थी वो पूरी तरह से फिनिश हो गई, कि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे नए आइडियाज लाने का कोई फायदा नहीं है, इतनी मेहनत की, कल पूरा प्रोजेक्ट बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई, रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। तो वो नहीं है करते करते धीरे धीरे वो जो विशेषता थी गिव अप कर दिया।
1: तो यहीं से शुरू करते हैं, वो यंगस्टर्स जो कदम रख रहे हैं जो पूरी ऊर्जा के साथ, एक और उनके साथ भी एक माइंडसेट, क्योंकि जिस तरह के बिलीफ लेकर चल रहे हैं कि मुझे दूसरे को रिप्लेस करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, कई बार हम ये लेकर भी अपना मोटो लेकर चल रहे होते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ यू नो माइंडसेट दे शुड
0: हैव। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक ऑफिस है, अगर लेट्स से विल टेक एन एग्जांपल, उसमें 10 लोग हैं से फॉर एग्जांपल, और अगर आज आपको रिक्रूट किया गया है, वो इसीलिए रिक्रूट किया गया है क्योंकि वहां 11 लोगों की जरूरत है, वो इसलिए नहीं रिक्रूट किया गया है कि आपको लाया जाएगा और एक को निकाला जाएगा। सो एक्चुअली देयर इज नो कॉम्पिटिशन, इफ यू गो टू लुक एट इट इन इट्स राइट परस्पेक्टिव, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और जो लोग पहले से 10 लोग वहां थे उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि इनको इसलिए रिक्रूट किया गया क्योंकि 11वें व्यक्ति की जरूरत है। ये नहीं है कि ये काम 10 में ही हो सकता है और ये सोचा जा रहा है कि इनको ले आओ तो यहाँ में से 10 को हटा दो, तो फिर हमारा उनके साथ कॉम्पिटिशन कैसा, ना पुरानों को नयों के साथ, ना नयों को पुराने के साथ। एवरीवन इज यूनिक, everyone is carrying their own energy and everyone has to compete only with themselves.
1: Or in fact the best part what you have said is har koi wahan pe isliye hai kyunki unki zarurat hai.
0: Absolutely. Jab aapko naya recruit kiya gaya to aapko puri tarah se evaluate karke recruit kiya gaya, and because you are very suitable इस पोस्ट के लिए तब आपको रिक्रूट किया गया, तो आपका इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है जो एग्जिस्टिंग है। अब आपको अपने आप की जो क्वालिटी है उसको दिखाना है वहां पे, अपने काम के अंदर दिखाना है, और उसको दिखाने का तरीका ये नहीं होगा कि जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा करके दिखाना है, तो कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन अपनी बेस्ट करके दिखानी है। हो सकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जो बाकी 10 लोग हैं उनका लेवल 70% है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेकिन आप अगर उनके साथ कम्पीट करके करने दिखाना शुरू करें तो आप सिर्फ 75 दिखा दें, लेकिन हो सकता है आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी 90 की थी। लेकिन जब भी हम औरों को देखते हैं, सी अगेन दैट ड्राइविंग वाली स्पीड, अगर एक 70 की स्पीड पर चल रहा है, इफ आई जस्ट वॉन्ट टू गो अहेड आई जस्ट गो अप टू 80, बट एक्चुअली प्रोबेबली आई कैन ड्राइव एट 100। सो इंडिविजुअल स्पीड एक्चुअली हमें उस यात्रा में, जहां तक फोकस की बात है, फोकस सिर्फ स्ट्रेट होना चाहिए, इट शुड नॉट गो हियर एंड देयर। जहां तक काम की बात है, एक दूसरे की तरफ तब देखें जहां सहयोग करने की बात है, लेकिन प्रूव करने के लिए माय बेस्ट।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, नया अपॉइंट जो आया है, जो रेयर एम्प्लॉय आया है, कम्पीट कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की भावना, और जो बाहर ऑलरेडी थे वहां पे वो इनसिक्योर हो रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी और ये जो पूरा एस्पेक्ट है,
0: ये दोनों चीजें हमारी क्रिएटिविटी को फिनिश कर देती है। क्रिएटिविटी मतलब यहाँ क्लैरिटी, क्रिएटिविटी तब होगी यहाँ जब नेगेटिविटी का अंश भी नहीं है. इंट्यूशन, यू नो, नए नए आइडियाज निकालना, इनोवेशन, ये आज इंडस्ट्री की डिमांड है. कुछ नया बताओ, कुछ नया करके दिखाओ. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में भी हर रोज इतना कुछ हो रहा है. एक कंपनी ने एक एड बनाई, लॉन्च किया प्रोडक्ट, तुरंत दूसरी कंपनी जो कॉम्पिटिटर है, अगेन कॉम्पिटिटर, वो उनको भी कुछ लॉन्च करना है. सो देन व्हाट आर दे गोइंग टू टेल देयर पीपल? नया नया, कुछ नया सोचो. अब नया कैसे सोचेंगे जब यहाँ क्लैरिटी है? लेकिन जब ये माइंड इस चीज से भरा हुआ है कि मुझे इससे अच्छा सोचना है, मुझे इससे अच्छा सोचना है, मुझे इससे अच्छा आइडिया देना है, तो ये नेगेटिविटी है. और जहां नेगेटिविटी अंडर करंट चल रही है, वहां क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. नेगेटिविटी एंड क्रिएटिविटी टुगेदर नॉट पॉसिबल. तो अपने आप को अगर प्रूफ करना है, अपनी कैपेसिटी को प्रूफ करना है, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव, यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन, साइलेंट वाटर, बिल्कुल. तो उसमें से वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगी जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. लेकिन ये क्यों, ऐसे कैसे, ये ना कर ले, ये मेरे से आगे ना चला जाए, जब मन में ये सारे थॉट्स आएंगे तो नया आइडिया कहाँ से आएगा?
1: बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात जो है कि आपने जो काम करने गए हो उसका जो अंडरलाइन है, वो जो आपका मन है, वो ये है कि आपको खुशी मिलेगी. तो वो याद रख के आई थिंक अगर हम काम पे जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं पूरा माइंड सेट चेंज हो सकता है. अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, अभी बहुत कुछ हमने पूरा प्रोफेशन में जाना है, एक एक चीज के बारे में बात करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त खत्म हो रहा है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. घर से बाहर जब कदम रखते हैं तो क्या हम कोऑपरेशन को छोड़कर कंपटीशन की भावना को ही लेकर चलेंगे, या फिर जहां हम जा रहे हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हमें अच्छा लगना चाहिए, उसे हम अच्छा लगने की तरफ लेकर जाएंगे और पूरी कोऑपरेशन के साथ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ अपना 100% दे पाने की जो कैपेबिलिटी हम में है वो दे पाएंगे. तो यही सब कुछ हमारी श्रृंखला में आगे भी चलेगा. कोई सवाल है आपके पास, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगली कड़ी में भी फिर चलेंगे आपके ऑफिस में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने इनसिक्योरिटी को या फिर कॉम्पिटिटिव जो भावना हमारे मन में कभी कभी आ जाती है, उसे दूर करके एक बेहतर ऑफिस माहौल तैयार किया जा सकता है. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हार और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। नमस्कार। और अगर हम पूरे सफर को देखते हैं, खुद को पहचानने का जो ये सफर हम तय कर रहे हैं, उसमें हमने बात की थी डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन की वजह क्या है, क्यों हो जाता है डिप्रेशन, भागती दौड़ती जिंदगी में ऐसा क्यों लगने लगता है कि हम सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो हम पूरा सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इस डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। और अगर उन्हें ही हम पॉजिटिव कर लें तो हम डिप्रेशन से बाहर भी आ जाते हैं। हमने एंगर के बारे में जाना, गुस्से के बारे में जाना कि गुस्सा एक हथियार जरूर हो सकता है लेकिन हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। खुशी आंतरिक है, अपने ही अंदर है, खुद उसे वहीं तलाशना है। आज हम बात करते हैं कि खुशी को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका, प्यार को तलाशने का सबसे अच्छा राज क्या है। एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकारना। किसे स्वीकारना है? मुझे खुद को स्वीकारना है या फिर मुझे मेरे आसपास जो लोग हैं, जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकारना है? किस चीज को मुझे स्वीकारना है और किस तरह स्वीकारना है और ये स्वीकारना किस तरह मेरी जिंदगी को बेहतर करेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता है कई बार, और अगर हम देखें तो हम अदरवाइज कहते हैं कि मैं तो सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तो स्वीकार है मुझे, लेकिन क्या हम सचमुच स्वीकारते हैं? स्वीकारना किसे है मुझे?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा कि भी कॉन्फ्लिक्ट है। पहले हम कहते हैं कि मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, परंतु हम करते नहीं है वास्तव में। और सबसे पहले तो हमें अपने आप को स्वीकार करना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो भी मेरी क्वालिटीज है, मेरे में पॉजिटिव चीजें भी है, नेगेटिव भी है, परंतु उसको मैं सचमुच एक्सेप्ट करता हूँ। और आप एक्सेप्ट करेंगे तो पीस ऑफ माइंड होगी और फिर आगे की जर्नी है वो सरल हो सकती है।
1: तो सारी अपनी नेगेटिविटीज और पॉजिटिविटीज की स्ट्रेंथ को लेकर, सारी एनर्जीज को लेकर मुझे सबसे पहला कदम करना है, खुद को स्वीकारना है। इतना आसान है सिस्टर शिवानी खुद को स्वीकारना, क्योंकि खुद से तो हमारा तारुफ ही नहीं हुआ हुआ अभी तक। हमने अपने आप से बातें ही नहीं की हैं अपने। वो एक बात फिर वही आ जाती है कि अंधेरा है अंदर, डर लगता है अंदर झांकते हुए, तो क्या हमने खुद से अभी जाना है? इतना आसान होगा मुझे ये जानना, ये स्वीकारना कि मुझ में भी ये कमियां हैं या मुझ में भी ये ताकत है?
3: एक्चुअली हमारे में क्या कमियां हैं शायद हम सब जानते हैं, मतलब चाहे उसका राइट पर्सपेक्टिव ना हो कि अपनी शक्ति और कमी को नहीं जान पाए, लेकिन हर एक को ये तो पता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं। ज्यादातर हमें कमियां ज्यादा पता है। हम लोग कई बार वर्कशॉप्स में जैसे लोगों का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो बीच से गिव अस योर नेम एंड विद दैट टेल अस वन गुड क्वालिटी, यू नो योर पॉजिटिव क्वालिटी। एंड आप हैरान होंगे कि लोगों को अपनी पॉजिटिव चीज बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो ज्यादातर कहते हैं हमें तो पता नहीं, दूसरे शायद हमारे बारे में बता पाएंगे, या अगर सोचते हैं कि अगर हम ये बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा ये समझते हैं इनके अंदर ये है। लेकिन अगर आप उनको कह दीजिए अपनी वीकनेस बताइए, तो एक नहीं, आप एक मांगेंगे वो चार बता देंगे। तो वी आर अवेयर ऑफ आर वीकनेसेस, it's just that we reject them a lot. We don't like them. It's not that we can like the weakness, lekin ek bar usko accept kar lenge fir usko change karne ka jo process hai wo easier ho jayega.
1: kahin na kahin hum apne aap ko dosh dete rehte
3: hain, matlab victimization bahut ek jo feeling hum apne liye har time create karte rehte hain, you know, self pity ho gayi, victimization ho gayi, ye fir wo transformation ka process नहीं लाने देगी। तो सबसे पहली चीज हमें अपने आप को कि मैं जो हूं, जैसा हूं अभी, आई लाइक माई सेल्फ, एक्सेप्टेंस इज दिस, आई लाइक माई सेल्फ। ज्यादातर हम कहते हैं जब मैं ये कर लूंगा देन आई लाइक माई सेल्फ, जब मैं ऐसा बन जाऊंगा देन आई लाइक माई सेल्फ,
1: मुझे अपनी इस कमी को दूर करना है।
3: कई बार स्थूल अचीवमेंट हो सकती है कि जब मैं इस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाऊंगा देन आई फील गुड, इट्स नॉट ऑल्सो लाइक माई सेल्फ बट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। That is only acceptance.
1: Again, we have an email actually, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल, that I don't like myself, you know. We have this, वीरेंद्र जी हमारे साथ मेल भेजा है उन्होंने चेन्नई से, और वो यही कह रहे हैं कि मैंने MBA किया हुआ है, मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव भी हूँ, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी, मैरिड भी हूँ, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है, बट आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई समवेयर फील कि आई लैक समथिंग, मुझे क्यों अच्छी फीलिंग नहीं होती अपने बारे में, और फिर मैं इसी कारण बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ. मेरे सब लोग मुझसे पूछते भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी, कि क्या हुआ है, आई एम नॉट एबल टू टेल देम दैट आई डोंट लाइक माई सेल्फ. दिस इज अ फीलिंग एक्चुअली जहाँ हम में से सब लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी वाबस्ता होते हैं कि मुझे, मैं अपने आप को अच्छी नहीं लगती हूँ. कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि काम तो करना है, लेकिन ये जो लाइक नहीं करना है अपने आप को, कैसे होगा कि मैं उसे अपने आप को एक्सेप्ट करूं?
2: तो कहेंगे कि मन में सेल्फ एस्टीम नहीं है, ही लैक सेल्फ एस्टीम बेसिकली. और सेल्फ एस्टीम ऐसी चीज है कि जिसमें हमें यह सोचना होगा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी है. कई बार हम खुद नहीं जानते. मैं अपने वर्कशॉप्स में एक छोटी सी गेम कराता हूँ, जो गेम दो लोगों को करनी होती है, जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मे बी पति पत्नी हो सकते हैं, तो कलीग्स हो सकते हैं. उनको ये कहते हैं कि आप अपनी सारी कमजोरियां लिखो, जो भी अपनी अपनी वीकनेस है वो सारी वीकनेस लिखो, 10-12 जितनी भी हो, और अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ लिखो, उसकी सारी अच्छी क्वालिटी लिखो, दोनों वह करेंगे. और फिर जब उसको मैच कराते हैं तो हर बार 100% हर पैर में यह बात होती है कि जिसको हम वीकनेस समझते हैं वही हमारा पार्टनर उसको स्ट्रेंथ समझता है.
1: Wow, that's beautiful. बहुत ही खूबसूरत.
2: मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ. एक कंपनी में ये प्रयोग किया तो उस गेम में देखा कि एक मैनेजर ने लिखा कि भाई मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, तो उसके पार्टनर ने लिखा कि भी इनकी डैशिंग पर्सनालिटी, जहां जाता है अपना काम करके आता है. तो देखो वही बात जो है वह दूसरे शब्दों में उसकी एक स्ट्रेंथ बनी,
1: उनका एग्रेशन जो था वो उनका उसको
2: स्ट्रेंथ लगी उसको. ऐसे एक बार डॉक्टर्स के बीच में हम ये गेम कर रहे थे तो एक डॉक्टर ने लिखा कि मैं सर्जन हूँ परंतु सबमिसिव हूँ, कोई भी मुझे कुछ बोल देता है, आई एम बिट सबमिसिव. तो उसके पार्टनर ने लिखा कि इसमें बहुत ही ह्यूमिलिटी है, इसमें बहुत पोलाइटनेस है. तो देखिए वही बात जो हमने कमजोरी समझी वह सामने वाले उसको स्ट्रेंथ समझ,
1: क्योंकि इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन ही है. अगर मैं उसे अपनी कमजोरी समझ रहा हूँ तो सामने वाले की नजरों में वो मेरी स्ट्रेंथ है.
3: आई थिंक इन दिस केस आई डोंट लाइक माई सेल्फ इन कंपेरिजन विद समबडी एल्स. ये ज्यादातर ऐसे होगा कि आई डोंट लाइक, ऐसे नहीं होगा कि आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई डोंट लाइक माई सेल्फ वेन आई सी यू. मैंने MBA किया लेकिन मैं यही पहुंचू, लेकिन आप कहीं और पहुंचे हुए, देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ. ज्यादातर जो हम अपने आप को नहीं पसंद करते हैं क्योंकि हम औरों को देख रहे हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा है, चाहे वो अचीवमेंट, प्राप्ति या क्वालिटी, यू नो, वैल्यूज, कुछ भी हो, लेकिन दूसरों को देखकर फिर हमें लगता है कि हम जैसे हैं वो ठीक नहीं है. इट ऑलवेज कम्स इन कंपैरिजन विद अदर,
1: इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. सो क्या कहा जाए, हम वीरेंद्र जी को क्या कहें कि वो किस तरह से ये जो अपने आप को कि मैं आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं इसीलिए डिप्रेस्ड
2: फील करता हूं. फ्रॉम नो द साइकोलॉजिकल थिंग्स, मैं समझता हूँ उनको सबसे ज्यादा जरूरत है आध्यात्मिकता की. अगर थोड़ा भी मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें खुद फील होने लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है. जो खुद ही कह रहे हैं कि वे, मैं MBA भी हूँ, बहुत अच्छा है MBA, तो सैलरी भी जरूर अच्छी होगी, नहीं ऐसे बच्चे है, वेल सेट है लाइफ में, तो एक्सटर्नली कोई चीज की कमी नहीं, परंतु कमी वो अंदर में है. तो इसलिए सबसे अच्छा सजेशन है कि थोड़ा भी, इवन रिसर्च स्टडीज हुई है, बोले कुछ भी ना करे, शांति से बैठ करके थोड़ा आध्यात्मिकता के बारे में सोचने लगे,
1: रिफ्लेक्शन
2: अपने आप के बारे में सोच. और धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, से कहेंगे कि भी आप शायद धार्मिक न भी हो फिर भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता भी साइंस है.
1: जैसे एटम को हम आध्यात्मिकता की जैसे ही बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की जैसे ही बात आती है, देयर कम्स एट टाइम्स एक यू नो शील्ड ले आते हैं लोग, एक ऐसे फीलिंग हो जाती है कि इट्स नॉट फॉर मी, यू नो, मैं तो एक MBA हूँ, मैं तो एक IT प्रोफेशनल हूँ, व्हाट स्पिरिचुअलिटी?
3: गेटिंग टू नो योर सेल्फ,
1: दैट्स
3: ऑल. यू नो, उसको जब तक हमने ये सोचा स्पिरिचुअलिटी हमारे, हम जैसे ही स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज करते हैं तो हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट, सी एवरीथिंग इज एन इमेज, हमने ऑलरेडी प्री कंसीव्ड इमेजेस हर चीज की बनाई हुई है. तो जैसे ही अध्यात्म, धर्म, ये कोई भी नाम आता है तो हमारे सामने जो इमेज आती है वो पहले होती है संन्यास, दुनिया को छोड़ देना, वैभव को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, एक ऑरेंज कलर की ड्रेस या शायद एक व्हाइट कलर की ड्रेस, ये इमेज आ जाएगी. एंड देन आई से बट आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, यू नो, बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग के स्पिरिचुअलिटी मतलब दुनिया से कट ऑफ हो जाना, दिस इज माय बिलीफ सिस्टम. यू नो, स्पिरिचुअलिटी मतलब आप एम्बिशियस नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी मतलब आप डिटैच्ड हो जाएंगे अपने परिवार से, आप उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे. ये जो प्री कंसीव्ड फिर अगेन बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं, इससे हमने क्या किया, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से दूर रखना शुरू कर दिया,
1: भागना शुरू कर दिया, बिल्कुल. एक्चुअली
3: और दूसरा बिलीफ सिस्टम स्पिरिचुअलिटी कब है, जब बाकी सब चीजें फिनिश हो जाएंगी, लाइफ की सारी एम्स, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगे, तो इसका मतलब आफ्टर रिटायरमेंट,
1: पहले मैं ये तो कर लूं फिर सोचूंगा कि अध्यात्म की बात.
3: एंड द अदर थिंग इज देयर इज नो टाइम, यू नो, अभी जितनी चीजें हैं वो ही नहीं पूरी हो रही हैं, तो वेयर इज द क्वेश्चन कि आप एक और डायमेंशन मेरे जीवन में ऐड कर दें कि भाई अब आप अध्यात्म के लिए भी टाइम निकाले, आज मरने के लिए फुर्सत नहीं है, यू नो द फ्रेज, तो फिर अध्यात्म के लिए फुर्सत नहीं है. सो ये जो सारी बिलीफ सिस्टम है वो हमें कहीं ना कहीं इससे दूर ले जाती है. एंड इफ यू रियली सी इट इन दिस राइट पर्सपेक्टिव, हम सारा दिन में या सारे जीवन में इतने लोगों से मिलते हैं, स्पिरिचुअलिटी जस्ट मीन्स मीटिंग वन मोर पर्सन, दैट्स ऑल,
1: एंड
3: दैट्स योर सेल्फ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन.
1: ब्यूटिफुल.
3: जब आप जीवन में इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों से टाइम निकालते हैं, क्या आप एक व्यक्ति और के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट जस्ट मीटिंग योर सेल्फ. सो इट्स नॉट, यू नो, एनीथिंग एल्स, इट्स नॉट डिटैचमेंट, इट्स नॉट रिनाउंसिएशन, इट्स जस्ट अपने आप से मिलना. जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उसकी अपनी पहचान और दोस्ती.
1: बहुत सुंदर आपने बात कही, और वीरेंद्र जी से भी हम यही कहना चाहेंगे, आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग, यू नो, कि आंख मिला है जिंदगी, हाथ बढ़ा कर बात कर. तो कहीं ना कहीं ये आंख मिलाना और हाथ मिलाकर बात करना अपने आप से है, पहचान कराना, परिचय करना अपने आप से, दैट्स एक्चुअली ये एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है जिसको हम कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं, और वो सिर्फ बातचीत से, अपने आप से बातचीत करने.
3: एंड द अदर थिंग इज की अवेयरनेस कि मेरे अंदर सारा दिन क्या हो रहा है. स्पिरिचुअलिटी से डिटैच होना इज लाइक कि आपको सारी दुनिया की जैसे देखो घर में जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, किसी के बच्चे एडिक्शन की तरफ चले गए, तो लोग कहते हैं आपको यही नहीं पता चला आपके घर में क्या हो रहा है, आपके यू नो नाक के नीचे ये हो रहा था, या आपके नाक के नीचे से वो चुरा के ले गया, आपको पता ही नहीं चला, दैट मीन्स यू वर स्लीपिंग, यू नो. सो सिमिलरली सारी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज है, अपने अंदर क्या हो रहा है उसके लिए कह रहे हैं टाइम नहीं है, यू नो. और ये नहीं समझ रहे हम कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू गिव माई फुल पोटेंशियल जो मैं बाहर करना चाहती हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग द थिंग विच इज क्लोजेस्ट टू मी, देन ओनली विल आई बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन वट एवर आई डू आउटसाइड. सो स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, जिसे हम कहते भी ना चार पिलर्स है, तो एक टेबल है, वो चार पिलर्स पर खड़ी है, फिजिकल शारीरिक एस्पेक्ट, मानसिक मेंटल, सामाजिक सोशल एंड आध्यात्मिक स्पिरिचुअल. हर एक व्यक्ति की जीवन ये चार पिलर्स पर खड़ी होती है, लेकिन आज क्या हुआ, हम शरीर का बहुत ध्यान रख रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शंस, एवरीथिंग, और ये तीन पिलर्स हमारा इतना टाइम और एनर्जी डिमांड कर रहे हैं कि हमने चौथे एस्पेक्ट की तरफ टाइम नहीं दिया. फॉर द टेबल टू स्टैंड एवरी पिलर विल हैव टू बी इक्वल. जहां एक पिलर भी थोड़ा सा, आप देखो एक पिलर थोड़ा सा भी छोटा होता है तो वो टेबल
1: unstable.
3: तो ऐसा भी नहीं अध्यात्म की तरफ गए तो बस अपने अपना ध्यान नहीं दिया, लोगों से कट ऑफ हो गए, तो फिर वो अध्यात्म वाला पांव बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी पिलर्स छोटे हो जाएंगे. ऑल फोर

0: पहली चीज आपने ये कही कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, मैं जैसा हूं, मुझ में ये कमजोरी भी है, मुझ में ये ताकत भी है, उसके साथ मैं अपने आप को स्वीकार करूं। उसके बाद क्या मैं अपनी कमजोरियों पे काम कर सकती हूँ?
1: बिल्कुल, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक तो ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी क्या है। जैसे भी सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो सबसे पहले होता है टेंशन है, नो आई वॉन्ट चेंज, नो देयर इज अ डिस्टर्बेंस। दूसरा, जब सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो देन व्हाट हैपेंस, तो नथिंग इज इनफ,
2: और चाहिए।
0: एक और बात है, आई कांट चेंज, दिस इज माय बेसिक नेचर, आई एम लाइक दिस।
2: हम एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इस सेंस में,
0: हाँ, आई एम लाइक दिस,
1: नो दैट इज रॉन्ग, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। यहाँ पर जो है कि वे में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो एंग्जाइटी भी आती है कि क्या करूं, कैसे करूं,
2: पीस नहीं रहेगा।
1: हाँ बिल्कुल, पीस आपको नहीं, ऑलवेज यू आर पीसलेस। और अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस से क्या होगा कि भी जैसा है आपने अपनी सिचुएशन को स्वीकार किया तो एक तो आपके थॉट्स कम होंगे। नहीं, आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो विचार हमारे बहुत चल रहे, दिन में 70,000-80,000 थॉट्स चल रहे, एंड दैट इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। और ये होगा कि भी एवरीथिंग इज इनफ। दूसरा, सेल्फ एक्सेप्टेंस से सबसे बड़ी बात है पीस इज नाउ, नो पीस इज हियर। जब एक्सेप्ट नहीं करते तो पीस इज नोवेयर,
0: है ना, शांति नहीं है जिंदगी में, यू नो, कोई शांति नहीं है, कहाँ ढूंढो मुझे शांति चाहिए, तो शांति
1: इसलिए इसलिए अपने आप को, सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करो। और आज मानने भी लगे अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी, न केवल स्पिरिचुअलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी मानने लगे कि आज जो आपकी और मेरी सिचुएशन जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। भले उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है
2: लेकिन अभी वो
1: परफेक्ट,
2: अगेन दैट ड्रामा, अभी जो मेरा सीन चल रहा है दैट इज एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल, ये बिल्कुल कल्याणकारी है, इसमें कुछ अकल्याण नहीं हो रहा है, इसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, द नेक्स्ट मोमेंट कैन बी चेंज्ड, लेकिन ये मोमेंट अभी जैसा है
0: और मेरे पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का,
1: वो फिर होगा,
2: वो तब होगा अगर ये मोमेंट बहुत स्टेबल बीतेगा, यू नो, एक्सेप्टेंस से, तब नेक्स्ट मोमेंट वो मोटिवेशन आएगा उसको चेंज या बेटरमेंट का। लेकिन ये मोमेंट ही जब टर्मोइल में या रिजेक्शन में बीत जाता है तो कोई एनर्जी नहीं रहती है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए भी शक्ति चाहिए।
1: और एक जो बहुत बड़ी बात है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अगर बहुत कुछ पाना है तो ऐसे ही नहीं होगा। आज जो हम समझते हैं हार्ड वर्क से मिल जाए, मैं ये स्ट्रगल करूं, कंपटीशन करूं, मिलेगा आपको, लेकिन जितनी मेहनत की उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको सचमुच क्वांटम जंप लगानी है ना, एक मिली सेकेंड में यहां से और कहीं पहुंच जाना है, तो जो आवश्यकता है कि सुप्रा कॉन्शियस को जगाओ। क्योंकि जो सच्ची पावर है वो सुप्रा कॉन्शियस में है। सुप्रा कॉन्शियस इज इन्फिनिट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, सुप्रा कॉन्शियस इज रियली सुपर इंटेलिजेंट, परंतु वो सोया हुआ है, तो उससे काम लेना हो तो उसको जगाना पड़ेगा। सुप्रा कॉन्शियस तब जागेगा जब आप 100% टोटली विचारों से परे जाएंगे। जब आप कंप्लीटली अपनी सुधबुद्ध को खो देंगे तब सुप्रा कॉन्शियस तक पहुंचते हैं। वह कब संभव है कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, इवन अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, ये प्री रिक्विजिट है। बल उसके बाद और भी स्टेप जरूरी है कि जिसमें सुप्रा कॉन्शियस जागे, परंतु ये सबसे पहला स्टेप है।
2: तो क्वेश्चन से परे हो जाएंगे ना अभी। ज्यादातर जीवन में हर दिन आप एक घंटे को ही चेक कीजिए, कितने क्वेश्चंस, ये क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कैसे हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, यू नो, एवरीथिंग वी नीड टू क्वेश्चन,
0: वी नीड टू नो, यू नो, वी वांट टू नो,
2: क्वेश्चनिंग, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग सिचुएशंस, परिस्थिति को भी जैसी है स्वीकार नहीं कर सकते, क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसे कर दें तो, सो इट्स कंटिन्यूअसली अ क्वेश्चन मार्क दैट इज गोइंग ऑन। और होने से पहले मनन करना फिर भी ठीक है, यू नो, सो दैट आपके पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, लेकिन अब जब एक बात हो चुकी है, खत्म हो गई
0: क्यों है, हुआ?
2: तब उसके ऊपर मनन करना, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा कर देते तो हमें राजयोग में यही

0: सिखाया जाता है जब कुछ हो गया, होने से पहले नहीं, होने से पहले आप उसमें पूरा एफर्ट डालिए, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कीजिए उसकी, लेकिन होने के बाद जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, इवन इफ इट वॉज अ टोटल फेलियर अकॉर्डिंग टू मी, इफ इट वॉज अ टोटल फेलियर, फिर भी उसके बाद फुल स्टॉप वो इजिएस्ट मात्रा है, लेकिन हम वो इजी मात्रा लगाने की बजाय वो टेढ़ी वाली मात्रा लगा देते हैं, और एक बार वो टेढ़ी वाली मात्रा क्वेश्चन मार्क लग जाती है तो वन क्वेश्चन ऑलवेज गेट्स फॉलोड बाय क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस.
1: सो क्वेश्चनिंग इज गुड बट वी हैव टू नो वेयर वी हैव टू मेक दैट फुल स्टॉप. आसान वाली मात्रा
0: जब कुछ हो जाता है जिसके लिए हम कहते हैं ड्रामा हो गया, यू नो नाउ एक्सेप्ट. ये जो हम ज्यादातर करते हैं, हम करने से पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें लेकिन अपना फुल एफर्ट करें, लेकिन एफर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आने वाली है वो जैसी भी रिजल्ट आए, क्योंकि आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग. तो ये जो हम मनन बाद में करते हैं, एक्चुअली हम इवेंट से पहले इतना नहीं करते, उसके बाद ज्यादा करते हैं. तो ये जो बाद वाला मनन है ये शायद बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम.
1: कई बार हम ये कहते हैं कि हमने मनन इसलिए भी किया कि आगे जब कभी ऐसा होगा तो हम तैयार होंगे.
0: नहीं, लेकिन जब आगे परिस्थिति होगी तो सब कुछ बदल चुका होगा तब तक, बिकॉज नो टू टाइम इज द सेम. इवन कल तक थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट. तो कल जब आप कुछ करने जा रहे हैं, थिंक फ्रेश. अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब हम आज एक नई चीज प्लान कर रहे हैं, हम सोचते हैं पिछली बार कैसे किया था, वही वाला मेथड अभी अप्लाई कर दो. एक्चुअली अपनी क्रिएटिविटी को फिनिश कर रहे हैं,
1: इनोवेशन कहीं ना
0: खत्म हो जाती है, इंट्यूशन खत्म हो जाती है. लॉजिक ये कहती है पिछली बार जो मेथड यूज किया था वही वाला अभी यूज करो एंड करते जाओ. जैसे इफ यू you know do what you've always done you will get what you always got. And now we add one more aspect to it. If you think what you always thought then you will do what you always did and then you will get what you always got. So, ab agar aapko kuch different chahiye, ek bigger result chahiye, think different. Don't think what you always thought. So don't really need to learn anything. It's over, finished.
1: Jo hua वो हो गया, खत्म हुआ. दिस इज वॉट अगेन एक्सेप्टेंस इज.
0: ये एक्सेप्टेंस है.
1: एक और बात जो, एक तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कि ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मैं जो हूं जैसा हूं, यहां पर फुल स्टॉप है कि एक्सेप्ट किया कि ये है. इसके बाद आगे कुछ और अपने ऊपर काम करना होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू. सेकेंड इशू इज लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि खुद को ही नहीं कर रहे हैं तो लोगों को तो बिल्कुल ही, सबसे पहले चीज उनको चेंज करने की कोशिश करते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. ये रियलाइजेशन भी है, लेकिन क्या करें?
2: तो बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि औरों को हम चेंज कर नहीं सकते. अपने आप को तो चेंज भी कर सकते कुछ हद तक, औरों को तो हम नहीं कर सकते. इसलिए सबसे अच्छा है कि औरों को भी वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो. और आप ऐसे एक्सेप्ट करेंगे ना तो वहां तक भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे. और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचेगी तो उनमें भी हार्मनी आएगी और वो धीरे धीरे चेंज होंगे. एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है पानी के ऊपर. एक साइंटिस्ट ने क्या किया, पानी के क्रिस्टल्स बनाए. ऐसे पहले तो बॉटल में पानी भरा और उस पर लिखा अलग अलग, एक पर लिखा आई लव यू, दूसरे पे लिखा आई किल यू, और फिर उसके उसको बर्फ बना दिया, क्रिस्टल्स बनाए और उसकी एमआरआई ली, जिसे एमआरआई लेते. तो सचमुच देखा गया कि जिसपे लिखा था आई किल यू तो वहां वो शेप्स बन ही नहीं रहे थे. जो वाइब है वो नजदीक नजदीक आ रहे एटम्स परंतु शेप्स नहीं बन रहे, परंतु तो जिस पर लिखा था आई लव यू उसके बहुत ही अच्छे शेप्स बन रहे,
1: बॉन्डिंग हो गई.
2: हाँ, और सचमुच वो अच्छे
1: उसकी बॉन्डिंग हो गई, तभी तो आइस में
2: कन्वर्ट हुआ. कहा नो वाटर आल्सो लिसन्स टू यू. नहीं, आपके जो विचार है वो पानी पर भी प्रभाव डाल रहे, तो मानव पर तो जरूर डालेंगे. नहीं, उससे अनेक गुना ज्यादा डालेंगे.
1: हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में करते हैं, हमारे आसपास के पूरे माहौल पे, एनर्जी पे.
0: एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम द वर्ड आत्मा. आत्मा जो स्फीयर अपने आसपास क्रिएट कर रही है, जो एनर्जी हम भेज रहे हैं वो एक वातावरण क्रिएट कर रही है, दैट्स एटमॉस्फेयर. वो हम हमारे हाथ में, हम किस तरह का एटमॉस्फेयर अपने चारों तरफ क्रिएट करना चाहते हैं.
2: तो इसके कारण लोगों को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ये तो फिर वो चेंज भी होंगे.
1: ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम चेंज ही करना चाहते हैं, अपने से ज्यादा औरों को चेंज करना चाहते हैं. इसके ऊपर अगली कड़ी में हम जरूर बातचीत करेंगे. और आज जो एक्सेप्टेंस को लेके पूरा एक सिनेरियो सामने आया कि हम किस तरह से खुद को एक्सेप्ट करके जिस सिचुएशन में जहां है वहीं उस पल को, आप कह रहे हैं कि जो अभी जो है दैट इज परफेक्ट एंड इट फिनिशेज ऑफ, टुमारो या अगला जो पल है, अगला लम्हा एक नया लम्हा है, एक नई कहानी, एक नया ड्रामा गढ़ा जाएगा। तो डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ सामने आ रहा है, थैंक यू सो मच। जिंदगी एक नाटक है, जिंदगी एक रंगमंच है, ये सुनते आ रहे हैं हम, लेकिन सचमुच ये ड्रामा रोज रचते हैं हम, लेकिन इस ड्रामे को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, और इसी में ये जो पूरी हमारी जर्नी है, इसमें हमने जब एक्सेप्टेंस की बात की, आज खुद को स्वीकारने की बात की, आज जैसे हम हैं, जहां हैं उसे स्वीकारते हैं और उसके बाद खुद पर काम करेंगे। अगली कड़ी में किस तरह से हम अपनों को, दूसरों को स्वीकार सकते हैं, कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करें, ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप हमें फोन द्वारा या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ आप दीजिए इजाजत, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणे।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी। ये बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी भी इसमें सम्मिलित हो गए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरम्भ कर दिया। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता उन्हें महात्मा गांधी कहने लगी। महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करवाया। उन्होंने विश्व भर में अंग्रेजों के अत्याचारों और दमन नीति के विरुद्ध वातावरण तैयार किया। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति इस धरती पर युगों के बाद जन्म लेते हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ही कार्य नहीं किया बल्कि देश के निर्धनों की स्थिति सुधारने के प्रयास भी किए। छुआछूत की समस्या का हल करने के लिए उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात भगवान के लोगों की संज्ञा दी। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया और हिंदू मुसलमानों को एक समान समझा। उनके विचारों में सभी धर्म एक ईश्वर को पाने के अलग अलग साधन थे। 30 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए महात्मा गांधी शहीद हो गए। महात्मा गांधी के निधन पर सारा देश रो पड़ा था। आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है, परंतु सारा विश्व उनकी विचारधारा को आज के युग के लिए सबसे उपयुक्त मान रहा है।
2: अरे गजबीय काका, जल्दी से 2 थाली खाना लगा दो। अरे बहुत तेज भूख लगी है।
3: हाँ बेटा हाँ, बस अभी लो। क्या बात है, आजकल बहुत घुमाई फिराई चल रही है।
4: अरे हाँ काका, कॉलेज की छुट्टियाँ लगी तो सुबह से ही घूमने निकल पड़े। ए रोहित, तेरा पिछला हिसाब बाकी था ना, इस बार बिल तू देगा भैया।
2: अरे दे दूंगा ना यार, क्यों टेंशन लेता है। काका ये रेडियो पर कौन सा गाना आ रहा है।
3: अरे बेटा ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है। इस भजन का उन पर गहरा प्रभाव रहा। पता है हमारे पिताजी ने भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया था।
2: सत्याग्रह? काका ये सत्याग्रह क्या होता है।
4: काका आज तो आप सत्याग्रह के बारे में बता ही दो और इसको गांधी जी के बारे में बता दो।
2: हाँ बताओ ना काका।

0: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता ने देश को तोड़ दिया था। विषमताओं ने भारत में पनपना आरंभ कर दिया। वो युग भारत में अराजकता का युग था। 2 अक्टूबर 1869 का वो दिन कोई आम दिन न था। इस दिन एक नई क्रांति का सूत्रपात होना था। इसी दिन गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर के एक धार्मिक परिवार में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ।
1: माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सह सवेरे कर आऊंगा। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, रघुपति राघव गाऊं, रघुपति राघव गाऊं।
0: यही मोहनदास समूचे विश्व में महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। एक धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण मोहनदास में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का स्वतः विकास होने लगा।

0: मनु, ओ बेटा मनु, अरे कहाँ चला गया मनु?
1: हाँ आया बा।
0: भाभी बता रही थी कि बच्चों के साथ खेल रहा था।
1: हाँ बा, हम आँख में चाली खेल रहे थे।
0: ओहो, अरे बेटा तू क्यों नहीं समझता, उसके साथ खेलने से, उसको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है।
1: धर्म भ्रष्ट? पर बात तूने ही तो बताया था कि राम भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। अपने धर्म में अछूतों को ना छूने की बात कहाँ लिखी है बात?

0: पाठशाला नहीं चलना क्या?
1: अभी आया। अच्छा बा, मैं चलता हूँ।
2: ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना।
3: पाठशाला में उस दिन शिक्षा विभाग के अंग्रेजी निरीक्षक जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आने वाले थे।
4: बच्चों, आज हमारी पाठशाला में शिक्षा विभाग के अंग्रेजी अफसर आने वाले हैं। वो जो पूछे उसका सही सही जवाब देना, कोई शरारत नहीं होना चाहिए।
5: जी माता।
6: जी गुड मॉर्निंग।
7: हम इन लोगों का डिक्टेशन टेस्ट लेना मांगता है, कोई प्रॉब्लम?
6: जी नहीं सर।
7: गुड क्लास, लेट्स सी आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। हम जो भी बोलेगा आप लोग अपना अपना पाटी में लिखना मांगता है।
5: जी मांगता।
7: गुड, देन राइट इन इंग्लिश। डॉग, टेबल, कैट, आउल एंड कैटल।

0: इट्स टाइम ओवर नाउ, ऑल ऑफ यू अपना अपना पार्टी दिखाओ. Correct. Good. Good, good, good, good, good, good. Oh, very good, very good. Oh, nice, very nice. Oh. Hey, you. नाम क्या है तुम्हारा?
1: ये मोहनदास.
0: पूरा क्लास में इसी तुम्हारा स्पेलिंग्स गलत है. तुमको केटल लिखना भी नहीं बनता? बैठ जाओ अपनी जगह.
2: सर, सर ये पढ़ाई में जरा कमजोर है.
0: ओह, आई सी. ओके टीचर, अब हम जाना मांगता है. हम दोबारा आएगा.
2: जी सर.
0: गुड डे
2: सर.
3: मोहन, मैं तुम्हें बार बार बाजू वाले छात्र की पट्टी में झांककर शब्द के हिज्जे सुधारने का इशारा करता रहा, पर तुम तो टस से मस न हुए.
1: लेकिन माँ साहब, नकल करना तो चोरी है और चोरी करना तो पाप है ना?
4: मोहनदास ने अपने सिद्धांत बचपन में ही बना लिए थे. उनकी बातों से सभी चकित रह जाते. जब गांधी जी केवल 13 वर्ष के थे, उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया. एक ही उम्र के होने के कारण दोनों साथ खेला करते. मैट्रिक पास करने के बाद मोहनदास का नाम भावनगर के सामलदास कॉलेज में लिखाया गया.
5: माँ, मैं पास हो गया. काका, मैं पास हो गया.
6: शाबाश मोहन बेटा, जीते रहो, भाभी बधाई हो. तो मोहन बेटा, बता आगे क्या पढ़ने का विचार है?
5: काका, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ.
6: डॉक्टर?
7: छी, ये काम तुझसे ना होगा.
6: अरे तू मुर्दे कैसे चीरेगा?
5: फिर
6: देख बेटा, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर का दीवान बने, और इसके लिए कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है.
5: कानून का?
6: हाँ. अच्छा बता, कानून पढ़ने विलायत जाएगा?
5: विलायत? हाँ, मैं कानून पढ़ूंगा, विलायत जाऊंगा.
7: मेरा मनु इतने सालों तक मेरे आंखों से दूर रहेगा, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? विलायत जाकर लोग बिगड़ जाते हैं, कहीं ये मांस मदिरा का सेवन करने लग गया तो.
6: भाभी, मोहन पर विश्वास रखो, उसे हमारी मर्यादाओं का भान है. मोहन, तू तो विलायत जाने की तैयारी कर.
5: बात केवल 3 वर्षों की तो बात है, और रही बात मेरे बिगड़ने की, तो मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिन बातों से तुम डरती हो ना, उन्हें मैं कभी नहीं करूंगा, और अपने कुल की मर्यादा का मैं सदैव ध्यान रखूंगा.
4: इस तरह मोहनदास चल पड़े लंदन की ओर. लंदन में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहना शुरू किया. लंदन की कपकपाती सर्दी भी उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से डिगा न सकी. उन्होंने मांस मदिरा का सेवन जीवन पर्यंत नहीं किया. लंदन में मिलने वाली नित नई चुनौतियों ने उनके व्यक्तित्व को नया रुख दिया. मोहनदास अब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगे थे. विलायत में उन्हें स्वदेश की रह रहकर याद सताती, और वो दिन आ ही गया जब मोहनदास करमचंद गांधी की भारत वापसी हुई. गांधी जी ने बंबई आकर वकालत शुरू कर दी. एक बार किसी ने उन्हें गरीब स्त्री मणिबाई का मुकदमा दे दिया.
6: मणिबाई वल्द केशुभाई, हाजिर हो.
8: मुकदमे का प्रोसीजर शुरू किया जाए. मणिबाई के मुकदमे की पैरवी करेंगे बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी.
5: थैंक यू मिलॉर्ड. मैं कहना चाहूंगा कि मेरी मुवक्किल मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल मणिबाई, मुवक्किल मणि, मुवक्किल मणि, आई एम सॉरी मिलॉर्ड, मैं कुछ देर का ब्रेक चाहूंगा.
8: इट्स ओके मिस्टर गांधी, अदालत 10 मिनट के बाद कंटिन्यू किया जाएगा.
5: मणि भाई, मुझे क्षमा करना, मुझ में ये केस लड़ने की हिम्मत नहीं है. ये रही तुम्हारी फीस, तुम कोई दूसरा वकील कर लो.
4: गांधी जी के लिए उनका यह पहला केस किसी बड़े झटके से कम न था। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक स्वयं पर भरोसा न हो जाए वे कोई केस नहीं लड़ेंगे। बंबई में गांधी जी की वकालत चलने वाली न थी, इसलिए उन्होंने राजकोट जाना तय किया। राजकोट में वो सिर्फ अर्जी दावा लिखने का काम किया करते। यहां उनकी वकालत ठीक ठाक चलने लगी। इसी बीच गांधी जी को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसके अनुसार उन्हें दक्षिण अफ्रीका एक दीवानी मुकदमे की पैरवी करने जाना था। दक्षिण अफ्रीका में उस समय भारतीयों को तुच्छ समझा जाता। उन्हें वहां तिरस्कार पूर्वक काला कुली कहकर बुलाया जाता। जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे
2: ये ट्रेन आपको सीधे प्रिटोरिया पहुंचा देगी। मिस्टर गांधी, ये रहा आपके पहले दर्जे का टिकट।
5: धन्यवाद सेठ जी, मैं प्रिटोरिया पहुंचकर मामले को समझ लूंगा और आपके वकील से भी बात कर लूंगा। आप विश्वास रखें, निर्णय आशा के अनुरूप ही होगा।
2: धन्यवाद, अलविदा।
5: अलविदा। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी विच स्टेशन इज दिस?
9: या, इट्स मैसबर्ग।
5: ओह, थैंक यू।
9: Are you Anandil?
5: Yes.
9: How you came here? Get lost. Immediately move to third class. That is the only place you coolies deserve.
5: But I have ticket of first class.
9: First class? Leave or you will be thrown out of here.
5: I won't.
9: You bloody?
5: What are you doing?
9: I won't leave you. You all Indian coolies, you will have to submit your fingerprints in police station.
10: But what is our fault?
9: Your fault is that you are an Indian.
4: गांधी जी ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका आना जाना लगा रहा। वहां गांधी जी के आह्वान पर भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था।
5: अब अफ्रीका में रंगभेद और नहीं चलेगा। भारतीयों, अब जागने का समय हो गया है। रंगभेद के खिलाफ हमें सत्याग्रह छेड़ना होगा। बुरे कानून के सामने ना झुकना ही सत्याग्रह है। अब अंग्रेजी अत्याचार और ना चलेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं?

0: 1915 में गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत आ गए। इधर गांधी देश के कोने कोने में घूमकर भारतीय जनता से जागृति का आह्वान कर रहे थे और उधर अंग्रेजी राज अपने रंग दिखा रहा था।
1: आज की ताजा खबर जलियांवाला बाग में डायन ने निर्दोषों को भूना। आज की ताजा खबर हजारों लोग मारे गए हत्यारा डायन निर्दोष साबित। रोलेट एक्ट पारित हुआ। आज की ताजा खबर अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार। आज की ताजा खबर जलियांवाला बाग में।
0: इसी समय गांधी जी ने गुजरात के एक गाँव में हाथ से चलने वाला चरखा खोज निकाला। बाद में यही चरखा असहयोग आंदोलन का प्रमुख हथियार बना।
2: महात्मा गांधी अमर रहे।
3: बिना संघर्ष किए स्वराज की मंजिल तय नहीं हो सकेगी। हमें असहयोग आंदोलन छेड़ना होगा। मैं भारतीय जनता से आह्वान करता हूँ, वे सरकारी पदों, सरकारी शिक्षण संस्थानों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, खादी अपनाएं और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दें। वंदे मातरम।

0: महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की।
1: असहयोग आंदोलन जोर शोर से शुरू हुआ। भारतीयों के मन में बसे आक्रोश को अब स्वर मिल चुका था। आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया।
0: महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की।
2: सर सर, जगह जगह सभाएं हो रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है।
3: भेज दो सबको जेल में।
2: सर, जेलों में और जगह नहीं है। जेलें आंदोलनकारियों से भरी जा चुकी हैं और विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है।
3: Who is this?
1: असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। शहर शहर, गांव गांव सभाएं होती, जोशीले भाषण दिए जाते। सभी कुछ भारतीयों के अनुकूल चल रहा था कि चौरी चौरा की घटना ने समूचे आंदोलन को झंझोर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। सारे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। गांधी जी को यंग इंडिया में छपे एक लेख के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, पर अंग्रेजी सरकार उन्हें अधिक दिनों तक कैद न रख सकी। गांधी जी के जेल से छूटते ही प्रदर्शनों, विरोध सभाओं में सक्रियता आ गई। 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने भारत से सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा आरंभ की।
0: महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय।
4: अंग्रेजी कानून का सभी जगह विरोध किया जाए, इसकी शुरुआत हम नमक कानून तोड़कर करेंगे।
0: महात्मा गांधी की जय।

0: अब अंग्रेजों का भारत में टिकना मुश्किल हो गया था। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल भेज दिया गया। गांधी जी शीघ्र ही आजाद हो गए। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने बंगाल की यात्रा की। अंग्रेजों पर अब दबाव बढ़ता जा रहा था और 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी के सूरज का उदय हुआ। अंग्रेज जाते जाते देश को दो धड़ों में बांट गए। इस घटना ने गांधी जी को गहरा आघात दिया। 1948 जनवरी की 30 तारीख थी। रोज की तरह लोग बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन लोगों में नाथुराम गोडसे भी शामिल था।
1: अरे आज गांधी जी अभी तक नहीं आए?
2: गांधी जी तो कभी देर नहीं करते। जरा गौर से देखो, ये तुम्हारी घड़ी तो खराब नहीं है?
1: अरे लो, गांधी जी आ गए।

0: उस दिन भारत को रोशन करने वाली रोशनी सदा के लिए बुझ गई। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महात्मा जी का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा।

0: हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और चोट से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां,
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकत. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
4: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
5: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बीइंग शक्ति. सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर.
6: ओम शांति.
5: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
6: थैंक यू सो मच.
5: हाउ डू यू लाइक द टाइटल?
6: वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल.
5: क्योंकि लेडीज का नाम आता है ना शक्ति, वुमन एम्पावरमेंट, शक्ति.
6: यस, बट एक्चुअली जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, परमात्मा हमें सिखाते हैं, ये नर हो या नारी हो, क्योंकि नर और नारी तो शरीर के रूप से है ना.
5: एक सेकंड, मैं समझा नहीं. नर नारी शरीर के रूप से मतलब
6: द कॉस्ट्यूम. द कॉस्ट्यूम, वेदर आई एम अ मेल और अ फीमेल, इज बेस्ड ऑन माई कॉस्ट्यूम, नो, द बॉडी. तो जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि नारी एम्पावरमेंट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? द बींग, द पर्सन, नॉट द बॉडी. ये है कि जब एक आत्मा नारी का शरीर लेती है, एंड यू नो, जो एक सोशल कंडीशनिंग बनती है, लड़की है, कन्या है, बेटी है, और दूसरी तरफ है बेटा है, लड़का है, लेकिन दोनों केस में है क्या? एक आत्मा है जिसने यहाँ एक लड़की के शरीर में, यहाँ एक लड़के के शरीर में प्रवेश किया, लेकिन सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटल अपब्रिंगिंग, वो छोटी छोटी चीजें करता है कि लड़कों को ऐसे होना चाहिए, लड़की को ऐसे होना चाहिए, लड़की को थोड़ा शांत रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, लड़का शुड बी मोर आउट गोइंग. तो अब समाज ने धीरे धीरे क्या कहा कि नारी का उत्थान या नारी एम्पावरमेंट, और द फीमेल ऑल्सो, द फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो शुड कम आउट इन द सेम वे. लेकिन परमात्मा कहते हैं नर और नारी दोनों, क्योंकि शरीर की एम्पावरमेंट नहीं, आत्मा की एम्पावरमेंट है. So it's not about women empowerment, it's about soul empowerment.
5: और ये कब कहा था? और आज लोग बोलते हैं मॉडर्न जमाने में नर और नारी एक समान,
6: एक समान है.
5: और परमात्मा ने कब से बोला?
6: 1936 से, जब परमात्मा का अवतरण होकर ये कार्य शुरू हुआ, तो सबसे पहले परमात्मा ने आगे बहनों को रखा. अब तो आज देखो ब्रह्मा कुमारी इसमें भाई बहने सब इक्वल है, इक्वल इन द सेंस, इक्वल इन नंबर्स, इक्वल इन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि कई बार बहुत लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज मतलब यहाँ सिर्फ बहनें आती हैं, सेंटर को सिर्फ बहनें संभालती हैं, मेडिटेशन सीखने भी क्या सिर्फ बहनें आती हैं. तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसको ब्रह्मा कुमारीज क्यों बोलते हैं, यू नो, व्हाई डज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
5: क्यों बोलते हैं वैसे, सीरियसली मुझे भी पूछना था.
6: हाँ, क्योंकि उससे फिर कई बार मैसेज जाता है कि इट्स ओनली फॉर वुमेन, ओनली फॉर सिस्टर्स. लेकिन 1936 में जब ये कार्य शुरू हुआ, उस समय वुमेन डिंट हैव दैट काइंड ऑफ पोजिशन इन सोसाइटी जो आज है. तो उस समय परमात्मा ने नारी की, बहनों की वो क्वालिटीज को देखकर, क्वालिटी कौन सी? नर्चरिंग, यू नो, एक माता के अंदर, एक कन्या के अंदर वो नर्चर करने की क्वालिटी होती है. तो परमात्मा ने कहा बहनों के द्वारा आत्माओं की जो नर्चरिंग होनी है, वो परमात्मा बहनों के द्वारा कराएगा, क्योंकि बहनों के अंदर वो प्यार देने की, नर्चर करने की प्योरिटी की
5: शक्ति है,
6: प्योरिटी की शक्ति है. लेकिन कार्य शुरू हुआ बहनों के द्वारा, लेकिन कार्य दोनों के लिए था, मतलब कार्य आत्मा के लिए था, हर आत्मा का. लेकिन इंस्ट्रूमेंट उस टाइम, निमित्त जिसको हम कहेंगे, बहनों को रखा, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के नाम में आया ब्रह्मा कुमारीज. But it's always has been and always is and always will be for every soul of the world. अर्थ एम्पावरमेंट ऑफ द सोल, आत्मा का सशक्तिकरण, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। और इसीलिए ये सीरीज का नाम ही है बीइंग शक्ति, मतलब बीइंग जो है मैं आत्मा, वो बीइंग आत्मा जो है वो शक्ति स्वरूप है। क्योंकि कितनी बार सारा दिन में हम अपने आप को थोड़ा सा उतना शक्तिशाली नहीं पाते जितना हम होना चाहते।
5: हमेशा मेरा तो यही प्रॉब्लम शुरू से ही था, बचपन में तो कोई काम होता तो डैडी करे, बड़ा भाई करे, दोस्त करे, फिर बड़े तो टीचर से पूछो, फिर गुरुओं के पास जाओ, फिर कोई हाथ देखने वाले के पास, मतलब ऑलवेज शक्ति तो मैं दूसरों में ही देखता था ना।
6: हमारे अंदर भी शक्ति है। आप देखो, आप अगर अपने जीवन काल को देखें तो हम देखते हैं हमने अपने जीवन में कितना कुछ अचीव किया। हमें लगता है आई हैव द पावर, आई कुड डू दिस, आई कुड डू दिस। इट्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द सोल दैट वी हैव अचीव्ड सो मच इन द वर्ल्ड। आज हर इन्वेंशन है, हर टेक्नोलॉजी है, किसी की थॉट से स्टार्ट हुई थी। वो किसी की थॉट ने कमाल करके दिखाया दुनिया के अंदर। तो पावर तो है, बाह्य चीजें करने की शक्ति, इवन शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। आज आप जो चाहे वो उठा सकते हैं, जितना चाहे चल सकते हैं, जो काम करना चाहे कर सकते हैं, जो अचीव करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन किसी ने आके धीरे से एक वर्ड भी कह दिया जो हमें ठीक नहीं लगा तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक हमारे को आज ज्यादा कुछ चीज होने की जरूरत नहीं है डिस्टर्ब होने के लिए।
5: शूटिंग में मुझे याद है जब मेरी कोस्टार थी, सिर्फ कैमरामैन ने उसको इतना ही बोल दिया, क्या मेकअप किया तूने, किसने किया, ये कितना गंदा है। वो रो पड़ी, आधे दिन की शूटिंग कैंसिल, इतना रोई, इतना रोई, इतना हर्ट हो गई।
6: अब हम किसी और की बात कर रहे हैं ना, अब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने जीवन को भी नहीं, अपने कल के दिन को देखते हैं सिर्फ, कि कल सारा दिन में कौन सी बातें हुई थी, किसने क्या क्या कहा था, या कौन सी सिचुएशन ऐसी आई थी जो मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई थी।
5: मेरी हुई ना,
6: आपकी हुई कल?
5: हाँ, किसी ने मुझे लड्डू पेश किया। हाँ। मैं खा रहा हूँ और उसी ने दिया और मुझसे कहते आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे भाई, आप मीठा भी खाते हो, अरे मैं कोई बीमार, दे भी रही है, बोल भी रही है, और मुझे अंदर से इतना गुस्सा आया। फिर मैंने उसको डांटा। हाँ। मैंने बोला आज के बाद मेरे साथ खाने की बात मत करना, एक तो आप लेके आए हो मुझे, मुंह में डाल रहा हूँ तो मुझे हेल्थ का ख्याल भी रखना।
6: अब आप देखो, सिर्फ इतनी सी सिचुएशन को देखते हैं,
5: परहेज का वर्ड बोल रहे हैं,
6: कोई बात नहीं, इतनी सी सिचुएशन को देखते हैं कि हम कुछ बहुत अच्छा प्रसाद कहे या मीठा कहे, हम वो खा रहे हैं, सिचुएशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई क्राइसिस नहीं है। सी दिस इज व्हाट इट इज, वी डोंट नीड अ क्राइसिस और अ चैलेंज टू गेट डिस्टर्ब्ड। कोई सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, किसी ने प्यार से आके मिठाई दी, हम प्यार से खा रहे हैं, सामने वाले ने, और इस केस में तो सामने वाले ने कुछ रूडली या गलत भी नहीं, बहुत प्यार से एंड आउट ऑफ कंसर्न बोला।
5: प्लीज, ये प्यार और कंसर्न नहीं, मेरे हिसाब से कम अकल है,
6: ये प्यार और कंसर्न नहीं है।
5: नहीं, किसी को भी आप मीठा देके, मिठाई खिला के और बोलते हो कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना भाई साहब, परहेज आप छोड़ दिए क्या?
6: सपोज वो बात ही गलत है, ठीक है,
5: ठीक है, अग्री।
6: अगर अभी हम इंटेंशन पे भी नहीं जाते कि उसके इंटेंशन तो एक्चुअली हेल्थ,
5: लेकिन
6: के
5: मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ।
6: हाँ, तो लेट्स से बात ही गलत है, क्योंकि आपके नजरिए से बात गलत है, उनके नजरिए से तो बात भी सही थी, क्योंकि आजकल लोग कम मीठा खाते हैं और शायद उनको ये पता हो कि कभी आपकी तबीयत
5: तो मतलब ना, लाया क्यों?
6: अच्छा,
5: ये भी बात है ना,
6: ये भी बात,
5: आप समझे नहीं ना, आप तो वन साइडेड बोल रहे हो।
6: नहीं नहीं, आपके सी,
5: मैं डिस्टर्ब हुआ? हाँ। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ।
6: नाउ माय स्टेट ऑफ बीइंग, माय स्टेट ऑफ माइंड वाज एट दैट मोमेंट नॉट इन माय कंट्रोल।
5: ओके,
6: हम नॉर्मल बैठे हैं, हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट,
5: आपने बहुत स्ट्रांग बोल दिया।
6: नहीं नहीं, सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी, मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी, और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी, इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया, इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माय वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया.
5: क्या
6: कर दिया? मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड,
5: यस,
6: फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड.
5: काफी देर तक
6: डिस्टर्ब्ड. सो अप्रोक्सीमेटली कितनी देर तक डिस्टर्ब्ड?
5: एक घंटा.
6: मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है.
5: कर दिया.
6: और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी.
5: हाँ, वो पॉइंट ऑफ
6: है ना. सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर. ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी. मतलब माई माइंड, दिस इज, ये हमारा एक्सरे है.
5: मैं खाना खाते समय वो दोबारा आई तो फिर मैंने खाना एकदम मेरे हाथ से खाना छूट गया था. मतलब फिर आगे कुछ बोलेगी डिनर.
6: सही,
5: लंच पे इसने ये बोला था डिनर में.
6: तो फिर एक घंटा कहाँ हुआ लंच और डिनर के बीच?
5: तो बहुत
6: याद तो नेक्स्ट डे भी है, लेकिन एक्शन जो चेंज हुआ वो डिनर पे भी चेंज हो गया ना.
5: हाँ.
6: वो डिनर पे भी चेंज हो गया. तो लंच के टाइम डिस्टर्ब्ड माइंड, फीलिंग, वर्ड, एक्शन, रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड.
5: रिलेशनशिप होती तो बोलती तो लगता है मेरी माँ होती.
6: रिलेशनशिप जरूरी नहीं है ना, माँ है या वाइफ है या बहन है. रिलेशनशिप मतलब आत्मा और आत्मा के बीच का एनर्जी एक्सचेंज तो डिस्टर्ब हो गया ना.
5: हाँ.
6: आत्मा और आत्मा, आपका और उनके बीच का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना. सी, अगर आप और मैं अभी बैठे हैं, मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज कौन सा चल रहा है? स्मूथ. द मिनट दोनों में से एक जना भी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर ये समझते हैं, लेट्स से आई एम दैट पर्सन, मैंने वो लाइन कही, ठीक है, अब आपने ये थॉट क्रिएट करनी शुरू की, आप डिस्टर्ब हो गए. डिस्टर्ब होते समय आपने ये थॉट क्रिएट की कि आपकी डिस्टर्बेंस का कारण मैं हूँ. सो हु इज द कॉज ऑफ योर पेन?
5: यू.
6: मी. सो इफ आई एम द कॉज ऑफ योर पेन, आपकी मेरे प्रति सोच कैसी चलेगी? अच्छी चली नहीं सकती. नॉट गुड. इन फैक्ट इट कुड बी एंगर, इट कुड बी हेटरेड समटाइम्स. अब वो सारी वाइब्रेशन कहाँ आएगी? यहाँ आएगी. यहाँ आएगी, थॉट से थॉट तो कनेक्ट होगी, यहाँ डिस्टर्बेंस शुरू होगी. तो आपका वर्ल्ड डिस्टर्ब हुआ, उसकी वाइब्रेशन मेरे पास आई, मेरे मन की स्थिति का भी कंट्रोल मेरे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेरे मन की स्थिति भी डिस्टर्ब हुई, तो ये रिश्ता क्या हो गया? डिस्टर्ब. दिस इज द पावर ऑफ वन सेंटेंस. कि एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए. एक घंटे के लिए
5: मेरे थॉट्स कितने गए उधर?
6: आप सोचो कितने गए होंगे अप्रोक्सीमेटली.
5: काउंट नहीं कर सकते.
6: काउंट नहीं कर सकते ना.
5: मैंने कितना सोचा, मैंने बोला उसका दिमाग ठीक नहीं है कि मैं कोई आदमी खाता है मुंह में से जा रहा है और आप उसको बोल दो यार ना मुझे डायबिटीज है, ना मैं बीमार हूं, ना मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है, ना मैंने तुमसे कभी, आई डिडंट इवन गिव यू दैट काइंड ऑफ परमिशन कि आप मुझसे ऐसी बात करो.
6: लॉजिक कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी. क्या आप कम्फर्टेबल थे उस एक घंटे?
5: बिल्कुल नहीं था.
6: कम्फर्टेबल नहीं थे ना.
5: उसके बाद रात को डिनर पे भी नहीं था.
6: अच्छा, एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा.
5: ये तो कौन सोचता है वो टाइम पे?
6: सोचते नहीं हम, अवेयर नहीं है, लेकिन पड़ा.
5: वो अब इस वक्त आपसे बात करते हुए अब समझ में आया,
6: लेकिन पड़ा,
5: शायद पड़ा होगा.
6: शायद कैसे पड़ा? पड़ता है व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट. जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है. जस्ट द ब्रेन. ओके, 10,000 crore सेल्स. एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more सेल्स इन द बॉडी.
5: अच्छा,
6: ठीक है. तो 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन
5: इंटू 10,000.
6: दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क. जैसे हम कहेंगे ना कई नेटवर्क होता है, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस. अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा. तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है,
5: ब्रेन फिर केमिकल छोड़ता
6: है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है. और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर.
5: उस समय याद नहीं रहता
6: ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना. बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं. ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस. अब ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए.
5: ये बट इसको बहुत नॉर्मल माना जाता था और लोग डरते भी थे. उसका उसकी भी शक्ति थी, पावर था,
6: पावर ऑफ
5: एंगर.
6: अच्छा, पावर ऑफ एंगर,
5: ऑफकोर्स.
6: हाँ,
5: यारे गुस्से वाला इसे दूर रहो,
6: वो दूसरे लोग
5: यारे गुस्से वाला इसको मत छेड़ो, इसके साथ चीटिंग मत करो.
6: इस लाइन को भी ले लेते हैं. सपोज मैं ये कहूँ कि आप गुस्से वाले हैं, लेट्स से पावर ऑफ एंगर है ना, लेट्स से आप गुस्सा करते हैं तो मैं डर जाती हूँ. ठीक है, एंड अब मैं ये कहती हूँ ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, तो मैं तो बच गई. लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे?
5: नहीं, मैं इसके फायदे बता रहा हूँ. पावर ऑफ
6: एंगर कैसा हुआ, किसका फायदा हुआ?
5: मेरा हुआ, कम से कम 10 लोग चीट तो नहीं करते मुझे.
6: 10 लोग आपको चीट नहीं करते, परफेक्ट. लेकिन आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं?
5: इसमें चीटिंग क्या है? इसमें वो नेचुरल नॉर्मल में एंगरी हो,
6: अपने मन पर नुकसान. चीटिंग क्या होती है? किसी को चीट करना क्या होता है? कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे. अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना.
5: तो यू मीन टू से ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन
6: शरीर
5: है?
6: ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है,
5: ये तो चीटिंग से भी बुरा है.
6: ये तो चीटिंग से भी बुरा है. दूसरा, अगर चीट करता भी, अगर मैं आपको चीट करूंगी
5: के लिए करता हूँ,
6: तो ये किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, धोखा, इतना ही तो चीट कर सकते हैं. सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? तो दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है. द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन. आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से.
5: ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा आपका, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ.
6: वी हैव टू लिव विद आर सेल्फ. हम बाकियों से तो कितनी देर रहते हैं, और चूज भी कर सकते हैं ना हमें. देखो, दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं. मुझे इनसे बात करनी, इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस. लेकिन अपने आप के साथ,
5: अगर यही पॉइंट कल जरा जो मेरा प्रॉब्लम था उस समय, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ, जो अगर आपने लाइन बोली, मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए था? अपने आप से बात करनी चाहिए थी कि मैं हैव टू लिव माई सेल्फ विद माई सेल्फ, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा.
6: आई हैव टू ओनली अंडरस्टैंड कि उस एक घंटे में क्या क्या हो गया. किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा. आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को, राइट? तो अगर हम अभी सिर्फ रिवाइंड करें उस सीन को, किसी की एक लाइन, मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, डोमिनेंट थॉट ड्यूरिंग द डे जो ज्यादा चलेगी,
5: तो वो नुकसान हुआ, हुआ अलग, नींद का अलग।
6: नींद तो इसीलिए अच्छी नहीं,
5: वो भी नींद का भी नुकसान,
6: नींद का तो होगा।
5: तो जो आपने पहले कहा था केमिकल्स छोड़ेगा ब्रेन की वजह से, बॉडी के अंदर इतना नुकसान होता है, प्लस फिर नींद का नुकसान।
6: नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आपको, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन,
5: उसको समाधान, उसको वो नहीं मिलता ना,
6: सोल्यूशन
5: नहीं मिला।
6: इट्स लाइक आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। अगर आप आंसर दिए बिना ही सो गए, तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी। मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था।
5: 10-15 दिन पुरानी बात है, कुछ पथभेड़ा से लोग आए थे गौशाला से, तो उन्होंने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को बोला कि बेटा हम आपके लिए एक अच्छी गौ माता की एक मूर्ति आपके लिए जरूर लाएंगे। तो वो बोला और चले गए वो लोग, फिर 7-8 दिन नहीं आए, और बोला था किसी के हाथ भेज देंगे। नेक्स्ट डे जो भी आए, मेरी गौ माता की मूर्ति।
6: अच्छा।
5: मेरी गौ माता, मतलब आप जो कह रहे हैं रात को भी याद रहा, दिन को भी, उसके अंदर वो थॉट उस टाइम से लेके जब तक वो आई नहीं मूर्ति, तब तक वो चलता ही रहा। तो जब छोटे से बच्चे का 2 साल के ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब इसे प्रूफ जो आप बोल रहे हैं 100% राइट है।
6: छोटे से बच्चा नहीं है ना, आत्मा है अंदर, मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है, तो वो 5 दिन नहीं, 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी। कितना इम्पोर्टेंट होता है मन को समाधान देके साइलेंट करना, साइलेंस कर देना माइंड के क्वेश्चंस को, नहीं तो वो तो कंटिन्यूसली चल। एंड दैट इज व्हाई द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज सो मच। इफेक्ट ऑन द बॉडी सिर्फ उस 1 घंटे में नहीं पड़ा ना, इफेक्ट ऑन द बॉडी पड़ता रहा, क्योंकि मन की वो सोच तो चलती रही। अच्छा, ये करते करते 1 घंटे में जब हम टर्बुलेंट हो गए, इसको हम कहेंगे टर्बुलेंट एनर्जी, डिस्टर्ब्ड। अब हम ये देखें, कैन आई कॉल माई सेल्फ पावरफुल?
5: टर्बुलेंस पे पावर नहीं होता है।
6: पावर किस में होती है? अगर आप अभी आए और मुझे हिलाएं इधर, ठीक है, आप आए और पूरी तरह से इसको हिलाया, इफ आई एम वीक तो आपने हिलाया तो मैं तो कुर्सी से गिर जाना, कि मेरे अंदर पावर नहीं है अपनी चीज को, अपनी जगह को, अपनी सीट को संभालने की। आप आए, हिलाया, मैं गिर गई। लेकिन अगर आप अपने आप पर, मैंने वर्क किया एंड मेरी स्ट्रेंथ डेवलप हुई, वक्त अगर कोई आया, किसी ने एक लाइन बोली और हम पूरी तरह से हिल गए अंदर, हमारा तो हर चीज हिल गई पूरी अंदर, तो ये किसकी पावर है? हमारी पावर या उस एक लाइन की पावर? कौन पावरफुल था? कौन पावरफुल था इसमें?
5: ये तो बहुत सोच में डाल दिया आपने। यानी कि फिर जो स्टाफ वगैरह भी मुझे हिला देते हैं तो फिर मैं उनसे भी कमजोर हूँ?
6: सही,
5: गाड़ी साफ नहीं की, सुबह उठ के जाओ।
6: हम उस स्टाफ से कमजोर नहीं है, क्योंकि आपका स्टाफ भी तो कोई एक लाइन सुनने के बाद वो भी डिस्टर्ब हो जाता
5: है। बुरा ये हो रहा है फील सोच के कि मैं ही कमजोर हूँ, तो ये तो मेरा ईगो हर्ट हो रहा है।
6: ईगो हर्ट हो रहा है मतलब कि हमें ये रियलाइजेशन आ रही है कि हमारा अपने ऊपर उतना संयम, उतना कंट्रोल, उतनी पावर नहीं है। बदन
5: ये लाइन तो उससे भी बुरी है, वो खाने पे परहेज करो, क्योंकि हमारे ऊपर खुद पे पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, मैं कमजोर हूँ, मतलब तो ये तो और मुझे डिप्रेशन आ जाएगा।
6: सी सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, ठीक है, देन आई हैव थ्री ऑप्शंस। एक, आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, I'll start working on it today.
5: Awareness.
6: I'll start working on it today. And अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर, एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
5: सिस्टर, नया रियलाइजेशन आज ये हुई है कि ताकत और शक्ति का मीनिंग कुछ और ही है, और मैं आज तक ये समझता था ताकत और शक्ति मीन्स मैन पावर, फिजिकल पावर, मनी पावर, ये सारी बातें। तो इसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं सिस्टर, और अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करते हैं।
6: डेफिनेटली, अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today. Om Shanti.
5: Om Shanti. Thank you so much, sister. Thank you.
7: Gender is based on the costume we take, male or female. But the being is a soul which does not have a gender. Spiritual empowerment is for the soul, irrespective of the gender of the costume. When we are emotionally weak, we can get disturbed by one sentence of another person. Our thoughts get disturbed, then feelings disturbed, words and behavior get disturbed, our relationship, which is our energy exchange with them, gets disturbed. And this disturbed energy also has an effect on our body. All this happens for a few minutes or hours or days. We get disturbed with others' behavior, but we need to always remember that I have to live with myself. others can move away from our anger or hatred, but we cannot move away from the effect of our disturbed energy.
6: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति हूँ, एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज का हमारा विषय है 5 विकार ही नरक के द्वार है। तो अब हमें ये समझना है कि ये 5 विकार हैं क्या और ये नरक के द्वार कैसे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने के लिए भेजा है। हर दिन के लिए हमें लगभग 86,400 सांस दिए हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि इन सांसों को हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। हम इनका मूल्य ना समझ ऐसे ही बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। क्या स्वयं व स्वर्ग सर्व के कल्याणों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन फेफड़ों में ले जाते हैं। फेफड़े जो है इस ऑक्सीजन द्वारा उनकी सफाई करते हैं। फिर नाड़ियां जो है खून को सारे शरीर में प्रवाहित करती है। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं तो हमारे सांस धीमे चलते हैं और ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंत तक पहुंचाते हैं और उससे खून की पूरी तरह साफ होकर शरीर में प्रवाहित होता है। यही कारण है कि देवताएं जो हैं वो दीर्घायु होते हैं। इसके विपरीत जब देह अभिमान में किसी भी प्रकार के विकार के वशीभूत होते हैं तो हमारे सांस तेज चलते हैं, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंत तक नहीं पहुंचा पाते। परिणाम स्वरूप खून की सफाई ना होना शरीर में रोगों का कारण बनता है। वैसे भी देह अभिमान में विकारों का जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है और इनके जो बाल बच्चे हैं, हाँ, वो हम लोग विकारों के वश श्वास की गति तेज होने के कारण जो 86,400 सांस हमें पूरे दिन के लिए मिले हैं उनसे अधिक सांस हम ले रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप अपनी आयु कम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि द्वापर युग के बाद मनुष्य का शरीर रोगी और आयु कम होती जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है पांच विकार ही नर्क के द्वार हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये पांच विकार जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी के कारण स्थिति काबू में नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त आज हम देखते हैं कि इन्हीं विकारों के कारण घर घर में महाभारत लगा हुआ है, अदालतों में मुकदमों की भरमार है, जेलों में अपराधियों से भी परेशानियां हैं और भरी पड़ी है जेलें। इन्हीं विकारों के कारण सरकार को अनुशासन बनाए रखने और शासन चलाने के लिए पुलिस बल पर भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा है, तब भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। बलात्कार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि इन विकारों के कारण ही दुनिया में व्यापक है। यहाँ पे हमें देखना है खुशी ही हमारे जीवन में अगर असली यही खुराक है तो इसे हमें कैसे धारण करना है। हाँ, द्वापर युग से जब आत्मा जो है आत्म अभिमानी स्थिति से गिर कर वे अभिमान बनी तो उसने अपनी पहचान खो दी। इससे आत्मा का जो पहला गुण ज्ञान स्वरूप विस्मित होकर अज्ञानता उसमें आ गई। अज्ञानता में स्त्री पुरुष जो हैं, उनमें जो उनके भान जो है देह का आकर्षण शुरू हुआ और आत्मा ने अपना दूसरा गुण पवित्रता खो दी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बिना पवित्रता के आत्मा में सुख शांति कैसे उत्पन्न हो? सुख शांति के बिना आत्मा शक्तिहीन बन जाती है और शक्तिहीन आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है और आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार जन्म ले लेते हैं। ये विकार ही आत्मा से कर्म इंद्रियों द्वारा विकर्म अर्थात पाप कर्म करवा देते हैं जो दुख का कारण बनते हैं। कमजोर आत्मा का जो है कर्म इंद्रियों पर अंकुश नहीं रहता। कलयुग के अंत तक इन विकारों का इतना बोलबाला बढ़ जाता है कि आत्मा बेबस होकर हताश और निराश हो जाती है। संसार जो है विकारों के कारण नरक बन जाता है। आत्मा भौतिक पदार्थों में खुशहाली खोजती है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास कितने भी भौतिक पदार्थ क्यों न हो, यदि उसका मन किसी विकार के वश में है तो वह कभी खुश नहीं हो सकता। खुशी असली खुराक है जिसके लिए वह व्याकुल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इन पांच विकारों से छुटकारा चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में जो फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है पांच विकारी नर के द्वार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं पर असीम कृपा है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम के समय पर हमारे परम रक्षक परम पिता परमात्मा शिव अपने कल्प पूर्व किए वायदे के अनुसार निराकारी दुनिया परम धाम से साकार ब्रह्मातन का आधार लेकर अवतरित होते हैं। इन विकारों की जय से हम आत्माओं को छुड़ाने के लिए हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और राजयोग सिखाकर हमारे 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करवाते हैं और पावन बनाकर वापस परम धाम ले चलते हैं। हमें ईश्वरीय ज्ञान देकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की विधि बताकर आने वाले सतयुग यानी कि स्वर्णिम युग स्वर्ग के योग्य बनाते हैं। जो आत्माएं अवतरित हुए परमात्मा को पहचान कर उसकी श्रीमत पर चल पावन और शक्तिशाली बनती है, वही परम धाम जाकर फिर सतयुग यानी कि स्वर्णिम युग में आकर स्वर्ग का राज्य भाग्य अपने पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त करेगी। जो आत्माएं पावन नहीं बनेगी वे चाहे गृह युद्ध चाहे प्राकृतिक आपदाएं और चाहे आणविक युद्ध द्वारा शरीर छोड़ने पर विवश होगी और उन्हें अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित धर्म राजपुरी में करना पड़ेगा। फिर वे परम धाम में विश्रांत अवस्था में रहेगी अपने अगले कल्प के अभिनय के समय तक। वे आत्माएं स्वर्ग का सुख नहीं ले पाएगी। परमपिता परमात्मा की इस समय हम आत्माओं पर असीम कृपा श्रीमद् के रूप में हुई है, तो समझदार बन इसका पूरा पूरा लाभ ले, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फ

प्यार जो जाना है।

शमा मुस्कुरा कर जला, रश्क से कोई बुझ बुझ के जलने लगा। क्यों वो कोई आने को है। आहा, वाह वाह वाह।

घुस भर दिया अयो, घुस भर दिया मेरी चाहत में।

लता किसी तारीफ के नहीं बल्कि परस्तिश के काबिल हैं। उनकी आवाज सुनने के बाद कुछ ऐसा आलमतारी हो जाता है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। यूं समझिए

जैसे कोई दरगाह या मंदिर में जाए तो वहां पहुंचकर इबादत के लिए खुद ब खुद सर झुक जाता है और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं।

खटुआ बन के गुलगुले जल के बुलबुले बन के गुलगुले जल के बुलबुले यार चुलबुले सुन रे पगले बोले बार बार बोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू धोले तू

चाचा अपना लोहा सच्चा चाचा भेद के धुंधली शाम के लोहा शाम को भी चमकाए बन के गुलगुले गल के बुलबुले चाद चुलबुले सुन रे पगले तोले तू आज अपने दिल के।